एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पे हम आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, सक संबद 1948, भाद्र माह की तिथि 19, तदनुसार 11 सितंबर ईस्वी सन 2026। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 28 सेकंड हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा। सुप्रभात, नमस्कार।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में 6 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिन के सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश शामिल हैं। इनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोबो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकन हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रुसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में शामिल होंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेइरा कल रात नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई अन्य देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें कर सकते हैं। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, 12 खंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सामान्य रूप से चलेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि शनिवार को होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के

0: पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। दोनों के बीच सामाजिक विकास, सिंचाई, सहकारिता, प्राकृतिक खेती, मोटे अनाज और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य साझेदारी को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। श्री नड्डा ने तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर लगातार काम कर रहा है। सत्र में भारत को संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना आवश्यक है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत निर्माण के मामले में लापरवाही बरतने पर भवन विभाग के 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में 1 सहायक अभियंता और 2 कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। The 18th BRICS summit will get underway at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow, with the national capital putting its finishing touches in place for the grand event. The two-day summit will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. The theme of India's Chairship 2026 is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. World leaders including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, Iran President Masoud Pezeshkian, Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan and Prime Minister of Ethiopia Abiy Ahmed Ali will participate in the summit. Brazil will be represented by Foreign Affairs Minister Mauro Vieira. Saudi Arabia's Minister of Foreign Affairs Prince Faisal bin Farhan Al Saud will also participate in the summit. Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim and Vietnamese Prime Minister Le Minh Hung are the other heads of state who will attend the summit. United Nations Secretary General Antonio Guterres, Director General of WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, and President of New Development Bank Dilma Rousseff are among the heads of international organizations who will participate in the event. Prime Minister Narendra Modi is likely to hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin today. The President of Russia and Foreign Minister of Brazil arrived in the national capital last night to participate in the summit. The President of South Africa is set to arrive this morning. Presidents of Iran, Indonesia, Egypt, Philippines and Burundi, Crown Prince of Abu Dhabi and Prime Ministers of Malaysia and Ethiopia are scheduled to arrive later today. Prime Minister Narendra Modi will have a series of bilateral meetings on the sidelines of the summit. In view of the upcoming BRICS summit, Delhi Traffic Police has informed that traffic diversions and regulated movement will be in place across key routes in Delhi today from 2 p.m. to 8:30 p.m. During this period, Sardar Patel Marg, Teen Murti Marg, 30 January Marg, Rajesh Pilot Marg, Subramaniam Bharti Marg, Mathura Road, Motilal Nehru Marg, Dr. Zakir Hussain Marg, Africa Avenue Road, Shantipath, Janpath, Ashoka Road, Barakamba Road, Niti Marg, Panchil Marg, Kamal Aturtak Marg, Press Enclave Road and Lala Lajpat Rai Marg, along with connecting roads, will be affected. Meanwhile, Delhi Metro has informed that all metro stations will remain open until further notice with regard to multiple queries received on the closure in view of the BRICS summit. Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of International Space Summit at Paris in France yesterday.
2: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
1: Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has described the parliamentary form of democracy as the best form of governance in the world. He was addressing students of Jawahar Navodaya Vidyalaya after presenting awards of 27th National Youth Parliament Competition 2025-26 at GMC Balyogi Auditorium in Parliament House. In cricket, India thrashed Bangladesh by 40 runs in the first semi-final of the Women's Asia Cup 2026 at the Dubai International Cricket Stadium, securing their place in the final. And that is the end of this news bulletin.
3: अभी आप सुन रहे थे समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से. क्षमा करें, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से. हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से FM के 101.7 MHz पे. और अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान. आज के गायक कलाकार हैं रविंद्र साठे और साथी संगीतकार हैं सतीश भाटिया.

दल बल समेत भरत के आगमन के समाचार से निषाद राज को आशंका होती है। क्या कारण है जो भरत वन में जा रहे हैं? यदि उनके मन में कपट भाव न होता तो साथ में इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों चलते? निषाद राज ने सेवकों तथा कुटुंबियों को सभी नावों को कब्जे में करके पानी में डुबो देने तथा सभी घाट रोक लेने के लिए सावधान कर दिया। कहा, सब लोग भरत से युद्ध में लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं स्वयं भी स्वामी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देकर 14 भुवनों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। निषाद राज की ललकार सुनकर निषादों की एक छोटी मोटी सेना तुरंत खड़ी हो गई। सभी शूरवीरों ने कमर में छोटे छोटे तरकस बांध धनुष पर वाण चढ़ा लिए। रण के लिए ढोल बजा ही था कि बाईं ओर से छींक सुनकर एक वृद्ध अनुभवी निषाद के मन में विचार आया कि भरत से मिल लेना चाहिए, शकुन शुभ है, अतः युद्ध नहीं होगा। भरत कदाचित राम को लिवाने जा रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। हम आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पे। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सबसे पहले आइए सुनते हैं हरिओम शरण की आवाज़ में ये भक्ति वंदना।

हरि ओम शरण और साथियों की गाय इस भक्ति गीत के साथ ही श्रोताओं कार्यक्रम समर्पण अभय पर हम समाप्त करते हैं।

हम आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पे। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद सुबह के 6:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत में आनंद मोहन पाठक को। फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायबासा के साथ हम होंगे आपके साथ सुबह के 7:00। समाचार प्रभात में क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुबह के 8:30 पर। पर आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कुरमाली लोकगीत लालू महतो और साथियों के स्वर में। कार्यक्रम विविधा के साथ हम होंगे आपके साथ सुबह के 9:00। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा, इस विषय पर जानकारी देंगी डॉक्टर शशि लता। सुबह 9:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन आप सुनेंगे। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण हम करेंगे सुबह 10:00। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे NCERT। पूर्वाहन की 10:30 पर हम आपको शामिल करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रमों में। हमारी शाम की सभा आरंभ होगी 5:02 पर कार्यक्रम विवरण के साथ। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता शाम के 5:05 पर आप सुनेंगे। आज इस कार्यक्रम में एक ही गीतकार को आप सुन सकते हैं। कार्यक्रम खेती गृहस्थी आप सुनेंगे शाम के 5:30 पर। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर चर्चा होगी। मछली पालन में ध्यान देने योग्य बातों पर जानकारी देंगी नीलम सरोज एक्का और साथी। साथ ही सुनेंगे इस कार्यक्रम में लोक गीत। शाम 6:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से मुख्य समाचार। शाम 6:02 पर क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अकड़ा आप सुनेंगे। खेती बाड़ी के अलावे बकरी पालन से लाभ पर जानकारी देंगे कांटेराम गुइया। साथ ही इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोकगीत। कार्यक्रम नन्ही दुनिया आप सुनेंगे शाम के 6:30 पर। शाम 6:55 पर हम आपको शामिल करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र के रांची केंद्र से, जहां से आप शाम 7:00 सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद हम आपको सुनवाएंगे शाम के 7:15 पर। शाम के 7:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट मैच 2026 के अंतर्गत पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले दूसरा सेमीफाइनल क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण आप सुनेंगे समापन तक। रात्रि 8:00 सुनेंगे फिल्म संगीत फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। यदि
मैच जारी रहा तो मैच सुनेंगे, अन्यथा आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा। शाम संध्या 8:45 पर सुनेंगे समाचार संध्या में, क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और रात्रि 9:15 पर हम आपको शामिल करेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र के कार्यक्रमों में। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। सभा समापन की घोषणा हम करेंगे रात्रि के 11:45 पर। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.7 MHz पे।

प्रस्तुत है सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज आप सुनेंगे आनंद मोहन पाठक के गाए चंद गीत। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले ये गीत।

अमरता है जीवन का हास, मृत्यु जीवन का चरम विकास। महादेवी वर्मा की ये अनमोल विचार के साथ कार्यक्रम जोहार चायबासा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ राधा, नमस्कार। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं देशभक्ति गीत। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, जिसे हमने लिया है फिल्म जागृति से। कवि प्रदीप की रचना है, संगीत दिया है हेमंत कुमार ने।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायबासा में, और अब सुनते हैं फिल्म दर्द का रिश्ता का ये गीत हरिहरन और साथियों की आवाज़ों में। गीत रचना आनंद बख्शी की है, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

दर्द का रिश्ता। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत हरिहरन और साथियों के स्वर में। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। और अब कार्यक्रम का ये अगला गीत किशोर कुमार की आवाज़ है। फिल्म का नाम है कलाकार। इंदिवर की रचना है, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: और आप सुनते हैं फिल्म सावन को आने दो का ये गीत यशोदास की आवाज़ है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म सावन को आने दो। इस फिल्म का गीत यशोदास की आवाज़ थी, इंदिवर की रचना, संगीत दिया था राज कमल ने। आप सुन रहे हैं श्रोताओं आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायवासा उपकार। इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं मन्ना डे के स्वर में। इंदिवर की रचना है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

फिल्म हीरा और पत्थर। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। अनजान के बोल और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। और अब इस कार्यक्रम का हम ये अगला गीत सुनवा रहे हैं, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, जिसे हमने लिया है फिल्म वरदान से। बर्मा मल्लिक की रचना, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म द ग्रेट ग्लैमर का ये सुंदर सा गीत। आनंद बख्शी की रचना थी, संगीत दिया था आर जी बर्मन ने। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं महेंद्र कपूर के स्वर में हमराज फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। साहिर की रचना है, संगीत दिया है रवि ने।

हीर रांझा, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। कैफी आजमी की रचना थी, संगीत दिया था मदन मोहन ने। और अब कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दीवाना का गीत। मुकेश की आवाज़ है, हसरत जयपुरी की रचना है, संगीत दिया है शंकर जय किशन ने।

फिल्म दीवाना का गीत अभी आप सुन रहे थे। मुकेश की आवाज़ थी, हसरत जयपुरी की रचना, संगीत दिया था शंकर जय किशन ने। इसी के साथ हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायबासा यहीं पर समाप्त होता है। अब राधा को इस कार्यक्रम से इजाज़त दीजिए, पुनः होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

हम आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात में क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि। अमरीकी ट्रंप प्रशासन ने नौकरी जाने के बाद H-1B कर्मचारियों के लिए 60 दिन की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की दोबारा हुई परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की। और भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिवसीय इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन हिस्सा लेंगे। अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद सम्मेलन में शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रियसिस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पहुंचने पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और रूस के बीच लंबे समय से विशेष रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मजबूत और बहुआयामी संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की भी संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: ब्रिक्स समूह का गठन सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर हुआ था। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया। वहीं सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ब्रिक का विस्तार हुआ और इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। दक्षिण अफ्रीका ने अप्रैल 2011 में चीन के सान्या में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया। जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्ण सदस्य बनने के साथ ब्रिक्स का और विस्तार हुआ। भारत ने इस वर्ष 1 जनवरी को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। यह चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले भारत ने 2012, 2016 और 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। एक दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के नेता, वैश्विक निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन ब्रिक्स व्यापार परिषद द्वारा फिक्की, CII और एसोचैम के सहयोग से किया जा रहा है। ये सम्मेलन 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित होने वाला प्रमुख कारोबारी कार्यक्रम है। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस इनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज से दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के दो दिन के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति सिलवासा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राजकीय महाविद्यालय में सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे। वे सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर और नमो आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान सहित प्रमुख संस्थानों का भी दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति दमन में नमो अस्पताल भी जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना बेहद जरूरी है।
2: अब सभी भूमि के रिकॉर्ड डिजिटाइज किए जा रहे हैं और अब ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया से कोई भी उनको आसानी से प्राप्त कर सकता है। रजिस्ट्रार जो ऑफिस थे उनको भी पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां नागरिकों को बैठने का स्थान होगा, लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। आसानी से पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा वो कहीं से भी अपने रिकॉर्ड्स को प्राप्त कर सकेंगे।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूखा प्रभावित इलाकों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, बेहतर नीतियों और बाजार सहयोग के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया है। नई दिल्ली में ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि उचित वैज्ञानिक उपायों, नीतियों और बाजार सहयोग से सूखे क्षेत्रों को भारत के लिए ताकत का स्रोत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि व्यवस्था में बदलाव का मुख्य उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि किसानों की आजीविका और समृद्धि में सुधार होना चाहिए।
2: हमें यह तय करना होगा कि 2047 तक ड्राई लैंड में पानी की उत्पादकता कितनी बढ़ानी है, मिट्टी का स्वास्थ्य कितना सुधारना है, दलहन और तिलहन का उत्पादन कैसे बढ़े, आयात निर्भरता भी घटाना है, किसान की आय बढ़ाना है और जलवायु सहनशीलता को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का सातवां संस्करण आज मुंबई में संपन्न हो रहा है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: चार दिवसीय ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में नीति निर्माता

0: नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों ने भाग लिया। सम्मेलन में फिनटेक के भविष्य पर व्यापक चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करेंगे। कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष सुहिनकांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और टेक्नोलॉजी पर आयोजित सत्रों को संबोधित किया था। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख आधार बताया है। ये बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। मुद्रा कोष के संचार विभाग के निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसकी मुख्य वजह सेवाओं और निर्यात में हुई बढ़ोतरी है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B कर्मचारियों और कई अन्य रोजगार आधारित वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद भी अमेरिका में 60 दिन रहने की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। गृह सुरक्षा विभाग का ये प्रस्ताव आज फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होगा। एक रिपोर्ट।
5: इस बदलाव के बाद नौकरी जाने पर नई नौकरी तलाशने या वीजा की दूसरी व्यवस्था करने के लिए मिलने वाला समय काफी कम हो सकता है। ये प्रस्ताव E1, E2, E3, H1B, H1B1, L1, O1 और TN जैसी वीजा श्रेणियों और उनके आश्रितों पर लागू होगा। अगर ये प्रस्ताव अंतिम रूप लेता है तो लोगों की नौकरी या वीजा से जुड़ी पात्र गतिविधि समाप्त होने के बाद उन्हें तुरंत अमेरिका छोड़ना होगा या उन्हें वहां रहने के लिए कोई दूसरी कानूनी अनुमति लेनी होगी। विभाग के अनुसार प्रस्ताव का उद्देश्य पहले की व्यवस्था को बहाल करना है। इसके तहत प्रायोजक नियोक्ता की नौकरी खत्म होते ही कर्मचारी को अमेरिका छोड़ना होता था। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 की अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंग्रेजी और वाणिज्य की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा कल आयोजित की गई थी। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। भारत के 150 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश 109 रन ही बना सकी। शेफाली वर्मा को 64 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। केरलम के कई हिस्सों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पथनमथिट्टा, कोट्टयम, एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पथनमथिट्टा, एर्नाकुलम, इडुक्की और पलक्कड जिलों में कल भी येलो अलर्ट जारी रहेगा। इस बीच कल रात 11 बजे से केरलम तट पर ऊंची लहरों के कारण तटीय कटाव की आशंका को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी दिन के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल तक उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने, बिजली कड़कने और तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण

0: प्रतियोगिता शुरू करने को मंजूरी दी है। इसके तहत दिल्ली सरकार के खेल केंद्रों और स्टेडियम में नियमित प्रशिक्षण लेने वाले पात्र खिलाड़ियों को हर महीने 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट एट AIR News हिंदी और पब्लिक पर एट AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद फरहत। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विदेशी मेहमानों का राजधानी दिल्ली में आगमन और रोशनी से जगमगाता भारत मंडपम आज सभी समाचार पत्रों में है। हिंदुस्तान लिखता है, ब्रिक्स के लिए आज से दिल्ली किले में तब्दील, पुतिन मोदी की मुलाकात आज। राजस्थान पत्रिका ने प्रधानमंत्री मोदी का चित्र साझा करते हुए लिखा है, बढ़ता दायरा, बदलता विश्व, अक्षर से महाशक्ति बनने का सफर, ग्लोबल पावर का नया ध्रुव ब्रिक्स। अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत सुरक्षित और सतत अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। जनसत्ता की खबर है, लोकसत्य लिखता है, प्रधानमंत्री मोदी का अंतरिक्ष में सहयोग को प्राथमिकता देने का आह्वान। अगस्त में बाजार 2% गिरा, फिर भी रिकॉर्ड 32,000 करोड़ SIP। दैनिक भास्कर ने यह खबर आंकड़ों सहित प्रकाशित की है। शहरों से ज्यादा गांवों में बिक रहे दोपहिया, 55% पहुंची हिस्सेदारी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में छोटी बाइक पहली पसंद, वहीं महाराष्ट्र और बिहार में बड़े इंजन पर जोर, दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है। दैनिक जागरण ने श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कश्मीरी कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां देने का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, जन्नते कश्मीर में 4 दिन तक चला बॉलीवुड के दिग्गजों का मेला, बॉलीवुड का वादा, कश्मीर को फिर बनाएंगे फिल्मों की जन्नत।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि के बाद भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की दोबारा हुई परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस: 18th BRICS summit to begin at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow. Russian President Vladimir Putin arrives in New Delhi to attend the summit. IMF describes India a key engine of global growth after the country's economy expanded 7.8% in first quarter of current fiscal. Trump administration proposes scrapping 60-day grace period for laid-off H-1B workers in US. National Testing Agency releases provisional answer keys for retest of English, Commerce and Sociology papers of UGC NET June 2026. And in cricket, India beat Bangladesh by 40 runs in first semi-final of Women's Asia Cup 2026 in Dubai. And the news in detail. The 18th BRICS summit will get underway at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow, with the national capital putting its finishing touches in place for the grand event. The two-day summit will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. The theme of India's chairship 2026 is Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability. World leaders, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, Iran President Masoud Pezeshkian, Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and Prime Minister of Ethiopia Abiy Ahmed Ali will participate in the summit. Brazil will be represented by Foreign Affairs Minister Mauro Vieira. Saudi Arabia's Minister of Foreign Affairs, Prince Faisal bin Farhan Al Saud, will

0: was silver and one bronze on the opening day of the event at Changwon in South Korea yesterday. The Indian women's team of Moona Agarwal, Avni Lekhara and Millie Shah clinched gold in the R2 10-meter air rifle standing SH1 team event. Moona Agarwal also won silver in the individual event, while Avni Lekhara got bronze. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjeet Kaur.
1: Thank you, Shagun. The Asian Age headlines, PM backs safe space for benefits for all humanity at Paris summit, lauds ISRO and scientists, invites world to join India's space research, the paper adds. Indian space station by 2035, moon landing by 2040, says Modi. India turns diplomatic hotspot as BRICS leaders to share stage is a front page headline in the Tribune. The paper adds the national capital is set to become the center of global diplomacy. And finally, the Pioneer informs an ensemble of over 100 artists drawn from India and other member countries of BRICS is set to perform at a gala dinner that Prime Minister Narendra Modi will host for various world leaders on the opening day of the group's summit. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Sarabjeet. And now before we end the bulletin, the headlines once again. 18th BRICS summit to begin at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow. Russian President Vladimir Putin arrives in New Delhi to attend the summit. IMF describes India as a key engine of global growth after the country's economy expanded 7.8% in first quarter of current fiscal. Trump administration proposes scrapping 60-day grace period for laid-off H-1B workers in U.S. National Testing Agency releases provisional answer keys for retest of English, Commerce and Sociology papers of UGC NET June 2026. And in cricket, India beat Bangladesh by 40 runs in first semi-final of Women's Asia Cup 2026 in Dubai. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी का रांची केंद्र है. कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार.
3: वेक्टर जनित रोग मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें. अपने घर के आसपास सफाई रखें. जल जमाव न होने दें. पानी के बर्तनों को ढक कर रखें. पूरे आस्तीन के कपड़े पहने और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं.
4: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं. अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं. मुफ्त जांच और उपचार कराएं.
3: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित.
5: बस पोती का जन्म ठीक से हो गया. चलो सब घर चलते.
6: सुनिए, डॉक्टर साहब ने अस्पताल में दो रात रुकने को बोला था.
5: नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं.
6: अरे देख के, हाय गिर गए.
7: अच्छा मलहम लगाओ, पट्टी करो और एक्सरे करो जल्दी.
8: देखा आपने, कोई भी गड़बड़ होने पर यहाँ तुरंत इलाज हो जाता है. प्रसव के बाद के 48 घंटे माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसलिए अस्पताल में दो रात रुकना जरूरी है. माँ और बच्चे की जान को लेकर चांस क्यों लेना है.
9: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी.
10: क्या बात है सुनीता, बहुत परेशान लग रही है.
11: बहन, मेरी बिटिया का बुखार उतर ही नहीं रहा और आज गांव का चिकित्सा केंद्र भी बंद है.
10: अरे बहन परेशान मत हो, 104 नंबर डायल कर जहां तुझे मिलेगी प्रशिक्षित सलाहकारों से चिकित्सा सलाह.
11: बहन, पर इतनी रात में कौन बात करेगा इस नंबर पर?
10: अरे झारखंड सरकार की ये 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली है.
12: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार. नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा. पहले मुख्य समाचार. जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दो इंटरवेंशन एप्लीकेशन दाखिल. 16 सितंबर को होगी सुनवाई. बिना सूचना केबल इंटरनेट तार काटने के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त. बीएसएनएल के सीजीएम को 14 सितंबर तक बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश. रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में
13: सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को लेकर हुई अहम बैठक, प्रधानमंत्री के जन्मदिन से शुरू होने वाले सेवा माह की बनी पूरी रणनीति। मौसम विभाग ने रांची, गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा सहित कई जिलों के लिए आज भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील। और रांची के मोराबादी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में CISCE राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता का भव्य आगाज, 11 राज्यों की बालिका टीमें दिखा रही हैं दम। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित धांधली की CBI जांच की मांग अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। JPSC JSSC रिफॉर्म मंच ने सर्वोच्च न्यायालय में 2 इंटरवेंशन एप्लीकेशन दाखिल की है। इस संवेदनशील मामले की सुनवाई 16 सितंबर को निर्धारित की गई है। मंच का कहना है कि वे लाखों छात्रों का पक्ष शीर्ष अदालत में मजबूती से रखेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने झारखंड समेत 4 हाई कोर्ट में नई नियुक्तियों की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने झारखंड हाई कोर्ट के लिए जुडिशियल ऑफिसर मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा के नाम मंजूर किए हैं। इसके अलावा दिल्ली के लिए 8 और कर्नाटक के लिए 3 नामों का प्रस्ताव है। राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी और अधिसूचना के बाद यह नियुक्तियां प्रभावी होंगी। रांची में बिना सूचना इंटरनेट काटे जाने पर झारखंड हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश MS सोनक की खंडपीठ ने सभी ऑपरेटरों से कनेक्शन बहाली की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने BSNL के मुख्य महाप्रबंधक को 14 सितंबर तक बिना शर्त लिखित माफी मांगने और सेवाएं तुरंत चालू करने की का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हालिया श्रीलंका यात्रा क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद ऐतिहासिक रही है। लगभग 38 वर्षों में किसी भारतीय रक्षा मंत्री का यह पहला श्रीलंका दौरा है, जिसमें रक्षा उपकरण और सैन्य प्रशिक्षण को लेकर 3 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आकाशवाणी से बातचीत में रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने कहा कि यह दौरा भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और सागर विजन को मजबूत करता है।
14: भारत एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते भारत ने उनको जबरदस्त सहायता की, तो ऐसे संदर्भ में जब हम देखते हैं कि अपने रक्षा मंत्री जी जब गए तो उन्होंने कुछ डिफेंस MOU पर दस्तखत किए और जो कैपेसिटी और जो कैपेबिलिटी हमने अपने L-70 को दी वही उनको देने की कोशिश की है। जैसे हम लोगों ने उसको ड्रोन के लिए अपग्रेड किया है। श्रीलंकन एयरफोर्स ने भी अपने एयर डिफेंस के लिए इन गन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं।
13: भाजपा प्रदेश कार्यालय में सेवा संकल्प अभियान को लेकर अहम बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू होने वाले सेवा माह की तैयारियों पर रणनीति बनी। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से हर बूथ पर व्यापक अभियान चलाने का आह्वान किया।
15: युवा मोर्चा देश भर में एक यात्रा निकाल रहा है, उनके जन क्षेत्र से उनके कर्म क्षेत्र, गुजरात से वाराणसी और एक वाराणसी से गुजरात तक, इस प्रकार की एक यात्रा आयोजित की जा रही है, बाइक यात्रा। ये झारखंड के भी 4 जिलों में आने वाली है, जो हम अपना गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, रिसद जिलों में ये यात्रा आएगी। युवा मोर्चा उसका नेतृत्व करेगा, उसका स्वागत करेगा।
13: आगामी त्योहारों को लेकर रांची जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। DC मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में गणेश चतुर्थी, करम और दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए 5 बड़े निर्देश जारी किए गए। DC ने स्पष्ट किया कि पंडाल निर्माण से लेकर विसर्जन तक सुरक्षा मानकों में लापरवाही बरतने वालों पर सीधी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने प्रसिद्ध बेतला नेशनल पार्क की प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध वन्य जीवों की तारीफ की है। क्षेत्र के दौरे पर आए भाजपा नेता ने कहा कि बेतला झारखंड की अनमोल धरोहर और समृद्ध जैव विविधता का केंद्र है।
16: यहाँ हर पत्ते पर झारखंड का सूरत और सौंदरता इतिहास लिखा है। राजा मेदिनी का ये पवित्र स्थल है और यहाँ पर हर चीज मन को मोहने वाला है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करें, इसकी प्रेरणा ये स्थल देता है।
13: साहिबगंज के उधवा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी में अवैध रूप से मछली पकड़ने से रोकने पर ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम पर हिंसक हमला कर दिया। इस झड़प में 5 से अधिक वनकर्मी घायल हुए हैं। रेंजर पंचम दुबे ने बताया कि उग्र भीड़ ने वन विभाग के लोहिया भवन गेस्ट हाउस में घुसकर सीसीटीवी कैमरे, खिड़कियां और गाड़ियां तोड़ दी।
17: रामसर साइड झील में मछली का शिकार करना तो बिल्कुल अवैध है। कर्मचारी त्वरित कार्रवाई करते हुए रामसर झील गए और वहां जाने के बाद वहां अपराधी को जाल सहित बंदी बना करके लेकर के अपने रेस्ट हाउस में पहुंचे। इसी बीच गांव के सैकड़ों लोग रेस्ट हाउस पर आक्रमण कर लिए मुदाले छुड़ाने के लिए।
13: धनबाद के BCCL एरिया 3 के गोविंदपुर रेलवे साइडिंग के पास CISF ने अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने आम बागान और सिलेक्टर बस्ती क्षेत्र में विशेष छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान कोयले की तस्करी में इस्तेमाल की जा रही अवैध कोयला लदी 5 मोटरसाइकिलें जब्त की गईं। सुरक्षा बल इस मामले की जांच कर रहा है। मौसम विभाग ने आज रांची के अलावा गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा जिलों के लिए भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम में सुरक्षित स्थानों पर रहने और पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे शरण न लेने की अपील की है। रांची के मोराबादी स्थित जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में CISCE नेशनल हॉकी टूर्नामेंट का भव्य आगाज हो गया है। इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता का उद्घाटन कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया। मौके पर उन्होंने कहा कि बच्चों के पूर्ण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल गतिविधियां भी बेहद जरूरी हैं।
18: CSE बोर्ड हमेशा करिकुलम को हमेशा क्लासरूम और फील्ड लर्निंग के लिए डेवलप किया जाता है। जो बच्चों को आप देख रहे हैं, ये खिलाड़ी आज यहाँ नेशनल लेवल खेल रहे हैं। हम लोग इनके लिए आशा कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये लोग देश के लिए भी खेले, और ये संभव है क्योंकि बच्चों की मेहनत भी है और सभी विद्यालय के प्रिंसिपल्स और स्कूल्स ने बहुत अच्छे से तैयारी किया रखा है।
13: अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने IRCTC मामले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर आरोप तय होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, CGL गड़बड़ी मामले में बोकारो के DPRO और APRO से पूछताछ, दस्तावेज वेरीफाई कराए। हिंदुस्तान ने लिखा है, झारखंड पात्रता परीक्षा दोबारा कराने का आदेश। प्रभात खबर के शब्द हैं, NGT की रोक के बाद भी उठ रहा अवैध बालू, 440 घाटों में से 14 ही चालू, इससे बढ़ रहा अवैध कारोबार। दैनिक जागरण लिखता है, NIA की छापेमारी में मिले 1 करोड़ के गहने, 15 लाख नकद। और अब अंत में मुख्य समाचार। JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 इंटरवेंशन एप्लीकेशन दाखिल, 16 सितंबर को होगी सुनवाई। बिना सूचना केबल इंटरनेट तार काटने के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, BSNL के CGM को 14 सितंबर तक बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को लेकर हुई अहम बैठक। प्रधानमंत्री के जन्मदिन से शुरू होने वाले सेवा माह की बनी पूरी रणनीति। मौसम विभाग ने रांची, गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा सहित कई जिलों के लिए आज भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया। और रांची के मोराबादी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में CISCE राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता का भव्य आगाज। 11 राज्यों की बालिका टीमें दिखा रही हैं दम। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
19: अरे पोस्टमैन साहब, आप तो पढ़े लिखे हो, बच्चों के टीकाकरण के बारे में कुछ जानकारी दो ना हमको।
20: अरे भोला, इसके लिए अपने निकटतम सहिया या एएनएम दीदी से संपर्क करो।
19: अच्छा,
20: इतना ही नहीं, गर्भवती महिला की जांच और देखभाल, खेल मनोरंजन की जानकारी, परिवार नियोजन की सलाह जैसी बहुत सी जानकारियां अब झारखंड सरकार उपलब्ध करा रही है।
21: अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम सहिया या एएनएम दीदी से संपर्क करें।
22: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
23: बच्चों के विकास के लिए विटामिन ए है बहुत जरूरी।
24: विटामिन ए बच्चों को बनाता है तंदुरुस्त, दूर करता है शरीर की कमजोरी।
23: हरी पत्तेदार साग सब्जियाँ, दूध और दूध से बने उत्पाद, पीले फल, मांसाहारी भोजन, ये है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत।
24: तो अपने बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए 6 माह के बाद बच्चे को विटामिन

0: ए युक्त भोजन खिलाए।
1: साथ ही 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को 6 माह के अंतराल पर विटामिन ए की खुराक पिलाएं।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पे। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कुरमाली लोकगीत रीना महतो और साथियों के स्वर में।

आप सुन रहे हैं श्रोताओ लोकगीतों का कार्यक्रम में कुर्मारी लोकगीत रीना महतो और साथियों के स्वर में।

रीना महतो और साथियों के गाए इस कुरमाली लोकगीत के साथ ही हमारा लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक हम अब यहीं पे संपन्न करते हैं।

हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पे। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

कार्यक्रम विविधा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। कार्यक्रम के साथ मैं हूँ राधा, नमस्कार। कैसे हैं श्रोताओं? हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप स्वस्थ हैं। स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहना जरूरी है, सेहत का ख्याल रखना जरूरी है, तभी तो स्वस्थ रहेंगे हम। क्योंकि हम जब स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा हर कार्य हम अच्छी तरह से कर पाएंगे, चाहे वो परिवार की देखरेख हो, चाहे कोई भी कार्य हम भली भांति कर पाएंगे। अभी मौसम में उतार चढ़ाव हो रहे हैं, ऐसे में हमें एहतियात बरतने की निहायत ही आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है हमें एहतियात बरतने की। खान पान से लेकर, रहन सहन से लेकर, हर एक चीज़ को हमें एकदम बारीकी से करनी है, देखना है कि हम कैसे बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से हम स्वस्थ रह सकते हैं, हमारे परिवार के सदस्य को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हमारी होनी चाहिए, या हम सबों का ये कोशिश हम सभी करें कि बाज़ार का जो तली भुनी चीज़ें है या जो और भी चीज़ें जो खाना है वो हम ना खाकर घर में ही पकाएं, खाएं, मौसमी साग सब्जियों का सेवन करें और भोजन में सलाद को रखें। साथ ही साथ अभी जैसे कभी धूप, कभी छांव, कभी बारिश, इस तरह से जो हो रहा है, तो इसके लिए हमें बारिश के पानी से हम भीगने से बचे, है ना, ये इस तरह की छोटी मोटी जो बातें हैं उसका हमें ख्याल रखना बहुत ज़रूरी। और अभी इन दिनों आँख आ रहे हैं, यानी आँखों से संबंधित जो परेशानियाँ हैं, जो बीमारियाँ हैं वो है, तो ज़्यादातर आँखों में खिरकिरी आना, लाल हो जाना, पानी आना, ये सब एक कारण है कि हम गंदे हाथों से अपने आँखों को छू लेते हैं, या बहुत देर, ज़्यादा देर तक हम मोबाइल देख रहे हैं, कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा

0: राहत देनी होगी, है ना, आँखों में। तो थोड़े से इस तरह से हमें थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखना है, जब आपका मोबाइल से हुआ, कंप्यूटर से हुआ, है ना, किसी भी चीज़ में हम यदि एक ध्यान उसमें टकटकी लगाए रहेंगे तो ऑटोमेटिक परेशानी आएगी ना। थोड़ी बहुत उसमें दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो श्रोताओं, छोटी छोटी बातें हैं जिस पर हम सभी को ध्यान देना ज़रूरी होता है। अभी मौसम में उतार चढ़ाव होने के कारण कभी बुखार, सर्दी, खांसी, अभी मुझे ही लीजिए, मैं क्या करूं, क्या कहूं, मतलब बेटे ने एकदम ठंडा फ्रिज से निकाल कर ही कोल्ड ड्रिंक्स, यानी कि वो एनर्जी ड्रिंक जिसको हम कहते हैं, उसको निकाल के ग्लास में दे दिया। और माना पियो, नॉर्मल है, मैं पी ली, इतना ठंडा, मुझे ठंड लग गई। तो ठंड लगने से जुकाम, गले में दर्द, खराश, तो ऐसा ना हो। हम लोग कभी भी फ्रिज से डायरेक्ट निकाल के चीज़ों को हम सेवन नहीं करें, नहीं करना चाहिए। हाँ, बच्चे को मालूम नहीं था कि इसमें बहुत ज़्यादा ठंड है और माँ को ठंड लग जाएगी। सो मैंने क्या कहूँ, मैं भी ले ली, और इस तरह से भी जुकाम है, गले में दर्द है, खराश है। तो इस तरह से हम सबों को बचना है। कभी भी हम लोग फ्रिज से डायरेक्ट चीज़ों को ला करके निकाल करके नहीं खाना, उसको कुछ देर तक, 5-10 मिनट तक उसे नॉर्मल वे में रखना है। उसके बाद यदि कोई तरी तरकारी आप हम रखे हैं तो उसको पहले कुछ मिनट तक, ना कि सेकेंड, मिनट तक हम उसको नॉर्मल वे में रखें, फिर गर्म करें, फिर हम सेवन करें। डायरेक्ट यदि हम सेवन करते तो बुखार आने का ही आएगा ही, है ना, तो शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, ना सेहत पर प्रभाव पड़ेगा ही। तो इसका हमें ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है श्रोताओं। तो छोटी छोटी बातें हैं जिस पर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, बातें तो बहुत सारी हैं, आज हम आपको एक बहुत ही सुंदर वार्ता सुनवाएंगे, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा। और इससे पहले ये वार्ता सुने, इससे पहले आइए हम सुनते हैं ये संदेश।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत, भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक-एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: सेना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है कार्यक्रम विविधा में। और अब आइए सुनते हैं वार्ता आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा। इस विषय पे जानकारी दे रही हैं डॉक्टर शशि लता।
3: श्रोताओं, आप सबों को मेरा भावभरा नमस्कार। मैं हूँ कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा स्नातकोत्तर हिंदी विभाग की सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर शशि लता। आज का विषय बड़ा ही भाव प्रवण है। मीरा और महादेवी दोनों ही अपने युग की प्रतिनिधि कवयित्री रही हैं। हिंदी साहित्य का भक्ति काल तो स्वर्ण युग ही था। एक से बढ़कर एक कवियों का आविर्भाव इस काल में हुआ। सूर तुलसी जैसे दो दैदीप्यमान नक्षत्र साहित्याकाश में चमकते रहे। मीरा भी इसी श्रेणी में आती है। मीरा का संपूर्ण साहित्य अनुपम और विलक्षण है। उसका भाव पक्ष मार्मिक है और कला पक्ष आकर्षक है। मीरा की पीयूष वर्षिणी वाणी ने साहित्य शब्द को सार्थक करते हुए जनता को जिस रस से आप्लावित किया है, उसे अन्य कवि करने में सफल नहीं हुए हैं। मीरा के लिए कृष्ण प्रेम दीवानी, मरुस्थल की मंदाकिनी आदि अनेक आकर्षक विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। मीरा के भजनों और मीराबाई का भजन रे मन परसी हरि के चरण महात्मा गांधी को अतिशय प्रिय था। मीराबाई की भक्ति में श्रद्धा के साथ प्रेम का योग ही नहीं, प्रेम की अधिकता भी है। मीरा ने कृष्ण को अपना इष्ट देव नहीं पति स्वीकार किया है। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। मीरा ने कृष्ण को अपना पति ही घोषित नहीं किया, अपितु ऐसे अनेक क्रियाकलापों का वर्णन किया है जो पति पत्नी के मध्य ही संभव है। मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, गिरिधर महारो साचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। श्री कृष्ण के प्रति मीरा का पति भाव स्वाभाविक था। मीरा जब बालिका थी तब उन्हें एक साधु ने कृष्ण की मूर्ति दी थी। बालिका मीरा उस मूर्ति को सदा अपने साथ रखती थी। एक बार मीरा अपनी माता के साथ किसी विवाह में गई थी तो वहां स्त्रियां चर्चा करने लगी कि यह इसका दूल्हा है। मीरा ने अपनी बाल सुलभ जिज्ञासा प्रकट की, मेरा दूल्हा कौन है? माताजी ने हंसी में कह दिया, यह कृष्ण ही तेरा दूल्हा है। युवती होने पर मीरा भगवान कृष्ण को अपना पति समझने लगी और उन्हीं की भक्ति में लीन रहने लगी। जब मीरा का विवाह हुआ तो उन्हें बहुत असुविधा हुई। वे तो कृष्ण को अपना पति समझती थीं। मीरा ने अपने पति भोजराज के प्रति किसी प्रकार दाम्पत्य भाव का निर्वाह किया। भोजराज की मृत्यु के पश्चात मीरा का श्री कृष्ण प्रेम और अपने आप को श्री कृष्ण की पत्नी समझने का भाव पुनः प्रबल हो उठा। श्री कृष्ण के प्रति मीरा का पति भाव कवि कल्पना नहीं वास्तविकता थी। मीरा ने कृष्ण को पाने के लिए राज परिवार की सभी मर्यादाओं को त्याग दिया। कृष्ण की मूर्ति के सामने नृत्य करती और कृष्ण भक्त साधुओं की संगति में रहने में भी मीरा ने संकोच नहीं किया। मीरा ने स्वयं स्वीकार किया है, पग घुंघरू बांधी मीरा ना चीरे, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल ना सिरे। मीरा के देवर राणा जी ने परिवार की मर्यादा नष्ट करने के कारण मीरा को जहर का प्याला भेजा। मीरा ने उस प्याला को पीते ही अमृत तो पा लिया और वह जहर मीरा के लिए अमृत बन गया। मीरा को फिर मारने के अनेक प्रयास हुए। राणा ने सांप का पिटारा भेजा और उस पिटारा में हाथ डालते ही वह कृष्ण की मूर्ति बन गई। तो इस तरह से मीरा को बहुत तरह से प्रयास किया गया मारने का, लेकिन मीरा हर समय श्री कृष्ण की कृपा से बचती चली गई। और इस तरह से मीरा ने अपने कृष्ण विराम में अनेक तरह से अपने शब्दों में इसे विरह को व्यक्त किया है। हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरे मेरा दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने की जिन लाई होई। कृष्ण के प्रति मीरा की जो भक्ति भावना है वह अनन्य है। कृष्ण के प्रति मीरा के प्रेम में पूरी तन्मयता है। कृष्ण के अतिरिक्त तीनों लोकों में मीरा का कोई नहीं था। मीरा अपने प्रिय पति कृष्ण के भक्तों को देखकर प्रसन्न हो जाती थी और संसार की मोह माया में पड़े हुए पुरुषों को देखकर रोने लगती थी। जिस प्रकार पति और पति के परिवारजन पत्नी को अच्छे लगते हैं, उसी प्रकार मीरा को कृष्ण और कृष्ण के भक्त बहुत प्रिय थे। मीरा ने आंसुओं से सींच कर प्रेम की बेल बोई थी। मीरा ने कृष्ण के प्रेम में वियोग का अनुभव किया था। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई साधो सकल लोक जोई। भगत देखी राजी भई, जगत देखी रोई, अश्वन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। मीरा ने कृष्ण के मिलन का चाहे काल्पनिक अनुभव कर लिया हो, पर मीरा के विरह में जो प्रत्यक्ष अनुभूति है वह वास्तविक है। मीरा अंततः मनुष्य ही थी और उनसे दिव्य शक्ति और गोलोकवासी श्री कृष्ण का शारीरिक मिलन किसी प्रकार संभव नहीं था। यही कारण है कि मीरा के काव्य में वियोग पक्ष बहुत प्रबल है। मीरा की कठिनाई तो यह थी कि अपनी विरह व्यथा किसी को सुनाकर अपना मन हल्का भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि व्यथा को सुनकर सभी मीरा की हंसी उड़ाते थे। कृष्ण के वियोग में मीरा को एक एक रात मानो 6 महीने की जान पड़ती थी। दरस बिन दुख न लागे नयन, सब सुनत मेरी छतियां कांपे, मीठो लागे बैन। तो इस तरह से मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता प्रदर्शित की है। मीरा की वेदना के पीछे एक कुचले हुए स्वप्न की और प्रेम दग्ध हृदय की विकलता है। एक वेदना में मीरा की जो पार्थिव यथार्थता है उसे हम देख सकते हैं। मीरा ने कृष्ण के लिए उसी तीव्र वेदना का अनुभव किया है जिस तरह से एक प्रेमिका अपने हाड़ मांस के प्रेमी करती है। अस्पष्ट है कि जब किसी अशरीरी अतीन्द्रिय प्रियतम के लिए यह यातना भोगी जाएगी तो उसमें दिव्यता होगी ही। इस प्रकार मीरा के

मसृण अभिव्यक्ति है। महादेवी के काव्य का मूल स्वर वेदना है, क्योंकि जीवन में वेदना और वियोग का साक्षात्कार इन्होंने किया था। और इस तरह से महादेवी ने अपनी वेदना प्रियता के दो मुख्य कारण बतलाए हैं। एक तो बचपन से अत्यधिक प्यार दुलार होने के कारण अज्ञात दुख के प्रति इनकी स्वाभाविक अनुरक्ति हुई, और दूसरा बौद्ध दर्शन के प्रभाव से करुणावाद का भी इन पर असर आया था। मीरा का काव्य एक चिरंतन और असीम प्रिय के प्रति निवेदित है, जिसमें अशेष कोमलता है। सारी प्रकृति उसकी प्रतीक्षा में निस्तब्ध सजगता से खड़ी है। आसन्न मिलन और आसन्न विरह के दो ध्रुवों में दोलायित जीवन की धूप छां इनके काव्य की विशेषता है। चिरंतन, प्रिय के मिलन और विरह की आंख मिचौनी ही उनके संपूर्ण काव्य में व्याप्त है। एक ओर प्रियतम के प्रति उनकी जिज्ञासा प्रकट होती है, सुरभि वन जो थपकियां देता मुझे नींद के उच्छ्वास सा, वह कौन है? यह जिज्ञासा भाव क्रमशः सघन होकर के याचना, आग्रह और मोह में परिणत हो जाता है। जो तुम आ जाते एक बार, इस अभिलाषा में अपूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति और विरह और करुणा का एक साथ सम्मिलन और प्रेम का चरम उत्कर्ष उनके आंसुओं में व्यक्त होता है। मेरे बिखरे प्राणों में सारी करुणा ढुलका दो, मेरी छोटी सीमा में अपना अस्तित्व मिटा दो। इस प्रकार सीमा की व्याकुलता असीम के लिए बढ़ती ही चली जाती है। संपूर्ण जीवन ही विरह की वर्षा से सजल और सरस बन जाता है। मीरा के समान ही महादेवी के जीवन में भी दुखों का पहाड़ टूटता रहा। महादेवी का संपूर्ण जीवन ही दुख में रहा। इन्होंने दुखों की अभिव्यक्ति अनेक तरह से काव्यों में की है। मैं नीर भरी दुख की बदली, अस्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली। इस विरह वेदना का विस्तार महादेवी के पूरे काव्य में मिलता है। उन्होंने मिलन के क्षणों में भी विरह की उपासना की है, क्योंकि उन्होंने पीड़ा में परमात्मा को और फिर परमात्मा में पीड़ा को ढूंढने का प्रयास किया है। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। महादेवी ने वेदना को अपने काव्य का मूल स्वर बताया है। वेदना दुख मूलक अवश्य है, किंतु प्रत्येक स्थिति में वह दुखात्मक नहीं होती। काव्य के जीवन की वही भावना अभिव्यक्त होती है जो कवि को प्रिय होती है। अप्रिय को काव्य में स्थान नहीं है। वेदना भी प्रिय लगने पर ही काव्य का स्वरूप धारण करती है। कवयित्री ने दुखवाद को अपनाकर काव्य विषय बनाकर सुखवाद से बैर नहीं ठाना है, बल्कि सुखवाद का उल्लास प्राप्ति के लिए ही उन्होंने वेदना से मैत्री स्थापित की है। इस वेदना में सीमा और असीम का द्वंद्व मुखर हुआ है। सीमा ही लघुता का बंधन है, अनादि तू मत घड़ियां गीन। मैं दृग के अक्षय कोशों से तुझ में भरती हूँ आंसू जल, सजल सजल मेरे दीपक जल। महादेवी के रहस्यवाद की अंतिम परिणति मिलन में होती है। ऐसे अवसर पर आत्मा की परमात्मा से अपनी एकता आभास होता है, और वह हर्ष पूर्वक कहती है, बीन भी हूं मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूं, मुझमें तुम मुझमें प्रिय फिर परिचय क्या। महादेवी की कविताओं में एक से बढ़कर एक सुखात्मक और दुखात्मक अनुभूतियां पाई जाती हैं। आधुनिक हिंदी काव्य में समर्पण और विसर्जन की राग में प्रतिमा के रूप में महादेवी की प्रतिष्ठा हुई है। उनके काव्य में प्रकृति

0: सौंदर्य, भाव सौंदर्य, अलौकिक सौंदर्य तथा अरूप सौंदर्य की गीति में ही छाया दृष्टिगोचर होती है। महादेवी के काव्य में राग कौशल के साथ साथ बुद्धि कौशल भी दिखाई देती है। समालोचकों ने महादेवी को आधुनिक मीरा की संज्ञा दी है, परंतु विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि महादेवी में कला गीत की सुरुचि है तो मीरा में लोक गीत की सुवास है। महादेवी के हाथों ने 100 हाथों का श्रृंगार है तो मीरा के काव्य में एक अल्हड़ वियोगिनी का उन्मुक्त उन्माद है। महादेवी में जितना विन्यास है उतना आवेश नहीं है। महादेवी में जो वेदना है उससे कहीं ज्यादा अश्रु कण है। उनमें चंदन की अगर सुगंध है तो वेदना की सजावट भी है। इसलिए प्रेम दीवानी मीरा के दर्द को न जानने वाले अनजाने लोग महादेवी की वेदना को विवेचन और विश्लेषण से समझ लेते हैं, परंतु मीरा की वेदना को तो एक घायल प्राणी ही समझ सकता है। फिर भी छायावादी काव्य के इतिहास में महादेवी का जो अस्तित्व है, महादेवी की जो गरिमा है, वह अक्षुण है। महादेवी सचमुच आधुनिक युग की मीरा है।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता आधुनिक युग की मीरा। वार्ताकार थी डॉक्टर शशिलता, पूर्व प्रोफेसर हिंदी विभाग कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा। और अब एक मीरा की रचना सुनते हैं गरिमा शेरशाह मंडल की आवाज़ में।

गरिमा शिष्या मंडल के गाए इस गीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा अभी पे हम संपन्न करते हैं। इस कार्यक्रम से राधा को दीजिए इजाजत, अगले कार्यक्रम में

हम आकाशवाणी के चायबासा केंद्र से बोल रहे हैं। FM के 101.7 मेगा हर्ज पे सुबह के 9:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: इस विराम के बाद पुनः एक बार स्वागत है आपका कार्यक्रम रस रंजन में, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म यस बॉस का ये गीत। कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाज़ें हैं, जावेद अख्तर की रचना, संगीत दिया है जतिन ललित ने।

थे फिल्म सलामी का गीत। कुमार सानू की आवाज़ थी, समीर की रचना थी, संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में फिल्म हैप्पी न्यू ईयर का ये गीत।

और अब कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म नाजायज का ये गीत सोनू निगम की आवाज़ में।

हम आकाशवाणी के चायवासा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बज रहे हैं। सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार। नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, बेबी आराध्या साहू जी ने सुविचार भेजा है। वो लिखते हैं, दांत चाहे कितनी भी बार जीभ को काटें, फिर भी वे दोनों साथ रहते हैं और साथ काम करते हैं। यही क्षमाशीलता और भाईचारे की भावना है। धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन। ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज ढाक से। अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी और पोटियागला दुर्ग से संजय कुमार साहू जी। सभी श्रोताओं को आभार खूबसूरत संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, प्रेरक प्रसंगों के सप्ताह के अंतिम दिन हम लेकर आ रहे हैं एक और अद्भुत प्रेरक प्रसंग। आज हम जानेंगे एक ऐसे महान विद्वान और शिक्षाविद के बारे में जिसने गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। इस महान समाज सुधारक और विद्वान को इतिहास ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से बड़े सम्मान के साथ याद करता है। पहले जानते हैं कैसा था उनका बचपन। जरा सोचिए श्रोताओ, एक बालक पढ़ना चाहता है लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है। उसके घर में न पर्याप्त रोशनी है, न पढ़ने की सुविधाएं हैं और न ही कोई आरामदायक वातावरण। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि वो पढ़ते कैसे थे। कहा जाता है कि वो कई बार सड़क पर लगे गैस के लैंप की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करते थे, जो आज हम सोच भी नहीं सकते कि कोई विद्यार्थी सड़क की रोशनी में बैठकर घंटों पढ़ाई कर लेगा। श्रोताओं, उस युवक के मन में एक सपना था, ज्ञान प्राप्त करना। उनके पिता ठाकुरदास बंदोपाध्याय बहुत कम आय पर काम करते थे। परिवार के पास बहुत अधिक साधन नहीं थे। ईश्वर चंद्र को बचपन से ही समझ में आ गया था कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी परिस्थितियों से शिकायत नहीं बल्कि संघर्ष करना होगा। उनके सामने दो रास्ते थे, या तो परिस्थितियों को दोष दें या मेहनत करें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। वे पढ़ते रहे, संस्कृत का अध्ययन करते रहे, लगातार मेहनत की। उनकी प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि आगे चलकर उन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली, अर्थात विद्या का सागर। ये जानना रोचक होगा कि उनका मूल नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था, लेकिन बाद में सम्मान के साथ उन्हें विद्यासागर कहा जाने लगा। एक सड़क के लैंप के नीचे पढ़ने वाला बालक विद्यासागर बन गया। और सबसे अधिक प्रेरित करने वाली बात, उन्होंने अपनी शिक्षा को केवल अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अपने ज्ञान का इस्तेमाल उन्होंने समाज सुधार और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किया। आइए श्रोताओं, जरा विचार करें, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या हो सकती है। मेरी नज़र में तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, सुविधाओं की कमी को बहाना मत बनाइए। दूसरी, लगातार मेहनत कीजिए। और तीसरी, सफल होने के बाद दूसरों को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। देखिए, आज हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, ऑनलाइन पुस्तकालय हैं, यूट्यूब पर हजारों शैक्षिक वीडियो हैं और पढ़ने के लिए अनेक साधन हैं। मैं तो कहूँगी कि आज हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं उतनी पहले शायद कभी नहीं थी। फिर भी हम कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरे पास वातावरण नहीं है, इत्यादि इत्यादि। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का व्यक्तित्व तो हमें प्रेरणा देता है कि कभी कभी साधन कम हो सकते हैं लेकिन संकल्प बड़ा हो सकता है। तो श्रोताओं, हमारा आज का प्रेरक प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से, प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिता का नाम क्या था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिता का नाम क्या था। आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को लगातार फॉलो कीजिए। NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT Books PDF। और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है शो ऑफ क्लाउड्स। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची के बारे में बताया गया है कि जब वो आकाश में बादलों को देखती है तो उनमें उसे सुंदर सुंदर छवियां नजर आती हैं। कार्यक्रम प्रोत्साहित करता है कि बच्चे कल्पनाशील बने।
3: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
4: वी आर फाइन सर।
5: आई एम फाइन।
6: आई एम गुड सर।
3: फाइन, गुड। ओके, सो टेल मी, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट?
5: आई लाइक प्लेइंग सर।
7: आई लाइक पेंटिंग सर।
3: वेरी गुड। Anyone else?
8: Sir, I like singing.
9: I like playing with my pets.
3: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
4: Yes, sir.
7: We like.
3: Lovely butterflies?
4: Yes, sir.
3: And lovely colorful chirping birds?
4: Yes, sir. We like it.
3: That's very nice, children.
7: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
3: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
4: Yes, sir.
3: The rivers, the mountains, and the green trees.
4: Yes, sir.
3: Okay. So let me tell you the story of a sweet child like you.
4: Like us?
3: Would you like to listen?
4: Yes, sir.
7: We love to listen the story.
3: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
4: Okay, sir.
3: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me. Okay?
4: Okay, sir. We love to recite it.
3: As I lie on my back, looking up at the sky, I see a big white bear.
4: Looking down at me.
3: As I lie on my back.
4: Looking up at the sky.
3: I see a ship sailing.
4: On a white sea.
3: As I lie on my back. Looking up at the sky. I see an elephant.
4: Waving its trunk at me.
3: As I lie on my back. Looking up at the sky. Oh, it's fun to me.
4: Oh, it's fun to me.
3: To see whatever I want to see. So, children, you have recited so well. Have you ever noticed the clouds?
4: Yes, sir.
7: They are beautiful.
6: They are very big.
8: They change the shapes.
3: Wonderful. You have very rightly said. So now listen to the same poem in a song. Would you like to listen to this song?
4: Yes, sir.
3: So kids, here comes the song, As I Lie. What?
4: As

0: you like the song?
1: Yes, sir, it was lovely.
0: So, children, here is something to do for you, okay?
1: Okay, sir.
0: Sit outside your home or go to any park and see the clouds go by. And tell your friends what you have observed.
1: Okay, sir, it will be so lovely.
2: It will be good.
0: Yes, and one thing more. Notice the colors of the clouds and you will find that the clouds also have different colors from time to time.
1: Yes, sir.
3: I have seen rainbow.
4: It has 7 colors.
0: So, children, whenever you see the clouds, they have different
1: shapes.
0: Yes, shapes. And they have different
1: colors.
0: Very nice.
5: Show of clouds. You were just listening to this program. Program coordinator, Professor Rajendra Pal. Technical coordinator, Butty Langlingdo. Child singer, Angel. Child artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound recordist, Mayank Kumar. Assistance in production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIETNCERT, New Delhi, India.
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
7: मेरा नाम साक्षी है। मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी। उसने अचानक से ब्रेक मारा। और उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
8: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
6: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम होमी व्यारावाला। इस कार्यक्रम में भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला के जीवन और एक सफल महिला पत्रकार के रूप में उनकी भूमिका और योगदान के बारे में बताया गया है।

0: अरे आज तो यहाँ बहुत भीड़ जमा है।
1: मैं तो इसे अहोभागी कहूँगा कि आज हम हिज होलीनेस दलाई लामा की साक्षात दर्शन करेंगे।
2: सही कहा भाई, मेरी भी बड़ी इच्छा थी उन्हें देखने की। हाँ।
1: अरे देखो देखो उनका कारवां बिल्कुल निकट आ पहुंचा।
2: ओफो, इस तरफ तो मीडिया वालों की बड़ी भीड़ है।
1: अरे कोई बात नहीं, आओ ना, कोशिश करते हैं। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, पत्रकारों की भीड़ में साड़ी पहने हुए एक लड़की। अब कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं?
2: हाँ भाई, मैं भी ऐसे ही देख रहा हूँ भाई, ये तो बड़ी अजीब बात है।
1: हाँ,
2: और देखो देखो उसने कैमरा भी टांग रखा है।
1: अरे हाँ,
2: किसी औरत का भीड़ भाड़ में यहाँ वहाँ घूमना,
1: अरे कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। अरे भाई, औरत तो घर की शोभा होती है, शोभा। पता नहीं कैसा समय आ गया है।
2: मालूम
1: नहीं, ये दिन भी देखना था। चलो चलते। अरे
2: चलो चलो,
1: नजदीक आ गए।
2: आगे आगे
1: आ जाओ, आ जाओ, चलो।
3: साथियों, ये समय था 1959 का, जब दलाई लामा पहली बार भारत की यात्रा पर सिक्किम आए थे। उनके अभिनंदन में भारी भीड़ जमा थी।
4: उसी भीड़ में शामिल थी एक लड़की जो हाथ में एक भारी कैमरा लिए दलाई लामा की फोटो खींच रही थी। कैमरे का वजन लगभग 9 किलो था, जिसके बाहरी हिस्से में लकड़ी का कवर था। इतना ही नहीं, उस लड़की ने अपने कंधे पर एक कैमरे का फ्लैश भी टांग रखा था। ये लड़की कोई और नहीं, होमी व्यारा वाला थी, जिसे दिल्ली से विशेष रूप से इस मौके की फोटो खींचने के लिए बुलाया गया था।
3: 21वीं सदी में शायद महिलाओं को कैमरे के साथ देखना बेहद आम बात लगे, लेकिन आज से 70-80 साल पहले ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसी बात को लेकर उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था।
5: 1 दिनों लोग बहुत रूढ़िवादी हुआ करते थे। वो नहीं चाहते थे कि महिलाएं इधर उधर घूमें। जब उन्होंने मुझे साड़ी में कैमरे के साथ घूमते हुए देखा तो उन्हें बहुत ही अटपटा सा लगा, और उन्हें शुरू शुरू में तो ऐसा भी लगा कि मैं कैमरा लेकर सिर्फ उन्हें बेवकूफ बना रही हूं।
4: होमी व्यारावाला का जन्म गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में दिसंबर 1913 को हुआ था। उनका परिवार गुजरात में सूरत के निकट व्यारा में रहा करता था, संभवतः इसलिए उन्हें व्यारावाला के नाम से जाना गया।
3: उनके पिता पारसी उर्दू थिएटर के मशहूर अभिनेता थे, इसलिए घर पर माहौल भी थोड़ा खुलेपन का था। परिवार स्वतंत्र विचारों वाला था। रंगमंच पर कार्य करने के कारण ये व्यारावाला परिवार की पहुंच से बहुत दूर नहीं था।
6: आज कितना मुबारक दिन है, हम सब की दिली ख्वाहिश पूरी होने जा रही।
4: समय बदला और उनका परिवार गुजरात से बंबई यानी मुंबई आ गया। उनकी स्कूली शिक्षा बंबई में हुई। पढ़ाई में वो बहुत अच्छी थी, लेकिन शौकिया फोटोग्राफी भी करती थी।
3: लेकिन फोटोग्राफर बनना उनका लक्ष्य नहीं था, वो डॉक्टर बनना चाहती थी। एक रात की बात है।
7: होमी, ओ होमी।
8: जी माँ, आती हूँ।
7: अरे बेटा, अभी तक तुम सोई नहीं,
8: क्या बात है माँ?
7: अरे कोई बात नहीं बेटी, रात का 1 बज रहा है, मैंने तुम्हारे कमरे में बत्ती जलती हुई

0: लड़का देखकर तुम्हारे हाथ पीले कर देंगे हम। और तुम्हारी चिंता तो वो करेगा। हाँ,
1: अरे नहीं माँ, अभी नहीं करनी है मुझे शादी। और भला मेरे भविष्य की चिंता कोई और क्यों करेगा?
0: अरे
1: मैं खुद क्यों नहीं कर सकती? और माँ, मैं तो डॉक्टर बनूंगी।
0: क्या कहा? डॉक्टर? तो डॉक्टर बनेगी?
1: माँ सुनो तो एक बार मेरी बात।
0: मैंने सब सुन लिया होमी, और मुझे कुछ नहीं सुनना। बात समझ में आई तुम्हें?
1: माँ एक बार बात तो पूरी सुन लो।
0: कुछ नहीं होमी, बस करो।
1: माँ सुनो तो। अरे
2: तो सुना आपने, होमी ने बहुत बाद में दिए गए एक इंटरव्यू में इस घटना का वर्णन करते हुए कहा था,
3: मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मैं फोटोग्राफर बनूंगी। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेरे जीवन में केवल एक यही समय था जब मेरी माँ ने मुझे कुछ करने से मना किया। उन्होंने देर रात की शिफ्ट में डॉक्टरों को देखा था और वो नहीं चाहती थी कि मैं इस तरह के पेशे में रहूं। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि प्रेस फोटोग्राफी इससे भी बदतर होगी।
4: घर से अनुमति न मिलने के बाद उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने डॉक्टर बनने का अपना इरादा बदल दिया, लेकिन एक बात थी जिस पर वो दृढ़ निश्चय के साथ अडिग रहीं।
2: और वो बात थी एक नारी होकर अपनी जगह खुद बनाने की, अपना भविष्य स्वयं गढ़ने की और अपनी उड़ान का आसमान स्वयं तैयार करने की। उन्होंने फैसला किया कि वो फोटोग्राफी को अपना पेशा बनाएंगी। प्रशिक्षण लेने के लिए उन्होंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया।
4: कला की पृष्ठभूमि और कैमरे के थोड़े बहुत ज्ञान के कारण जल्दी ही वो एक कुशल फोटोग्राफर बन गई। अब उन्हें साइकिल पर बैठकर पीठ पर कैमरा लादे बंबई की सड़कों पर देखा जा सकता था। इस दौरान उन्होंने बंबई के मेहनतकश मजदूरों, निर्धन वर्ग के बच्चों और स्त्रियों के बहुत सारे चित्र खींचे। इन चित्रों को काफी प्रशंसा भी मिली।
2: एक दिन की बात है, कक्षा समाप्त हुई थी और छात्र घर जाने की तैयारी में थे। होमी भी कक्षा से निकलकर संस्थान के मुख्य गेट की ओर जा रही थी।
1: सर, मैं अंदर आ सकती हूँ?
5: अरे होमी, आओ आओ आओ, अंदर आओ अंदर आओ, बैठो यहाँ बैठो।
1: जी जी सर, धन्यवाद।
5: होमी जरा इसे देखो।
1: जी।
5: ये आज का समाचार पत्र है। जरा यहाँ देखो, इस पृष्ठ पर जरा पहचानो तो, किसकी फोटो है ये?
1: सर, ये तो मेरी खींची हुई फोटो है।
5: बिल्कुल। हाँ उमी, इसे राज्य भर से आई 100 से भी अधिक तस्वीरों की प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला है। लोगों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है। देखो देखो यहाँ क्या लिखा है।
1: जी।
5: देखो पढ़ो। होमी व्यारावाला की इस फोटो ने मेहनतकश मजदूरों की दुर्दशा को बड़ी बारीकी से उकेरा है। और ये लिखा है, ये फोटो हमारे समाज के लिए एक आईना है। बधाई हो होमी, हमें तुम पर फख्र है।
1: धन्यवाद सर।
2: फिर भला क्या था, पूरे राज्य में होमी की ख्याति बढ़ गई। कॉलेज में होमी को छात्र एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। अब उन्हें कई समाचार पत्रों से काम भी मिलने लगा था। कॉलेज में ही उनकी भेंट हुई सहपाठी मानेकशा जमशेद जी से, जो एक बेहद होनहार छायाकार थे और स्वतंत्र छायाकार के रूप में भी बॉम्बे के कई समाचार पत्रों के लिए काम करते थे।
4: मानेकशा स्वयं उन दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया में फोटो जर्नलिस्ट के रूप में काम करते थे। मानेकशा ने उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया। आठ महाविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद 1938 में होमी व्यारावाला ने फोटोग्राफी की दुनिया में एक पेशावर की तरह प्रवेश किया। बतौर फोटो जर्नलिस्ट होमी की पहली तस्वीर द बॉम्बे क्रॉनिकल में प्रकाशित हुई। इस दौरान उन्हें एक तस्वीर के लिए ₹1 बतौर पारिश्रमिक मिलता था।
2: 1942 में ब्रिटिश सूचना सेवा के लिए फोटोग्राफर के रूप में काम करने के लिए व्यारावाला युगल को दिल्ली आने का निमंत्रण मिला। दिल्ली आते ही होमी के काम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान

0: बननी शुरू हो गई।
1: होमी व्यारावाला एक समर्पित और प्रतिभाशाली फोटो पत्रकार थी, जिन्हें अक्सर अपने कैमरे को अपनी पीठ पर बांधे हुए राजधानी दिल्ली में साइकिल चलाते हुए देखा जाता था। दिन की रोशनी के दौरान वो लो एंगल शॉट तथा छवियों के विस्तार के लिए बैक लाइट का उपयोग करती थी, जिससे विषय वस्तु की गहराई और ऊंचाई को दर्शाया जा सके। इन दिनों की कंप्यूटर जनित डिजिटल फोटोग्राफी के हमारे जमाने में ये बातें भले ही बेहद साधारण लगें, लेकिन उन दिनों इन बातों का विशेष महत्व था। उन्हीं के शब्दों में,
2: जब मैं कैमरा टांगकर साइकिल पर निकलती थी तो मुझे देखने के लिए विशेषकर महिलाओं और बच्चियों की भीड़ जमा हो जाया करती थी। उनकी आंखों में एक चमक होती थी, मानो वो मुझ में अपना भविष्य देखने की कोशिश कर रही हों।
0: कोई भी घटना हो, वो मौके पर सबसे पहले पहुंचने वाले पत्रकारों में से एक थी। अब समय आ गया था छायांकन पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महिला के रूप में इतिहास रचने का।
1: वो समय था जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था, स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारियां हो रही थी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की लहर देश के गांव-गांव तक फैल गई थी। बड़े बड़े जुलूसों में, धरना प्रदर्शनों में, हिंसक आंदोलनों में एक महिला का बतौर फोटो पत्रकार उपस्थित रहना और घटनाओं की तस्वीर खींचना कोई आसान बात नहीं थी।
2: जब भी मैं किसी मौके पर कैमरे के साथ पहुंचती थी, मुझे प्रोत्साहन अक्सर नहीं मिलता था। पुरुष प्रधान पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महिला के लिए अपनी जगह बनाना बहुत कठिन था। कई बार मेरा मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन बात तब बन जाती थी जब मैं अपना परिचय देती थी। लोग मेरे काम के कारण नाम से परिचित थे, नाम बताने पर मुझे सम्मान भी मिलता था।
0: ऐसे समय में होमी व्यारावाला का एक फोटोग्राफर बनना एक बहुत ही बड़ी बात थी। होमी व्यारावाला ने अगस्त 1947 को लाल किले पर पहली बार फहराए गए झंडे, भारत से लॉर्ड माउंटबेटन के डिपार्चर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री की अंतिम यात्रा की भी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। इन तस्वीरों की पूरे विश्व में प्रशंसा हुई और इन्हें बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चरम उत्कर्ष के दिनों उनके द्वारा खींची गई अधिकांश तस्वीरों को दुर्लभतम कृतियों की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा लगता है मानो उनके कैमरे ने इतिहास को सजीव कर दिया है।
1: होमी ने बतौर फोटो जर्नलिस्ट अपने करियर की शुरुआत 1930 में की थी। वो 1970 तक इस क्षेत्र में सक्रिय रहीं। 40 वर्षों के इस सफर के दौरान उन्होंने देश विदेश में खूब नाम कमाया। 1970 में अपने पति की मृत्यु के बाद होमी व्यारावाला ने अपने पेशे से संन्यास ले लिया। होमी की विशिष्ट उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 2011 में उन्हें भारत की पहली महिला छाया पत्रकार के रूप में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सन 2012 में 99 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया।
0: गूगल ने उनकी विरासत का सम्मान करते हुए उनके जन्म के 104 साल पूरे होने पर अपने डूडल के साथ उन्हें सम्मानित किया। गूगल ने भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें लेंस के साथ पहली भारतीय महिला यानी फर्स्ट इंडियन लेडी विद द लेंस के रूप में सम्मान दिया।
1: स्त्री अस्मिता के विमर्श पर किसी ज्योतिर्मय प्रेरणा स्तंभ के रूप में अडिग खड़ी भारत की इस पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला को हमारा शत शत नमन।
3: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपके मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे NCERT। इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। अब अगले कार्यक्रम के लिए हम चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र।

0: जोहार रांची कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती है आपकी ये दोस्त रचना और मेरे साथ है
1: विनीता।
0: आप सभी को हमारा नमस्कार जोहार। विनीता आपको भी जोहार।
1: आपको भी रचना जोहार।
0: हाँ, हम देखिए हम कार्यक्रम की शुरुआत जो करते हैं ना एक अच्छे विचार के साथ करते हैं, क्योंकि विचार अच्छे होने चाहिए तभी आपका जो पूरा दिन है या जीवन अच्छा, है अच्छा
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल। और अगर अच्छे बातों से अच्छी बातों से अगर हम प्रोग्राम की या दिन की शुरुआत करेंगे तो जाहिर सी बात है दिन अच्छा होगा, हमारा मन अच्छा होगा, है ना।
0: तो दोस्तों मानव जीवन आकांक्षाओं और स्वप्नों का अनवरत प्रवाह है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में अनेक लक्ष्य निर्धारित कर उनको पूरा करने के लिए प्रयासरत रहता है और कई बार बहुत प्रयास करने के बाद भी मन मुताबिक सफलता प्राप्त नहीं हो पाती और ऐसे क्षणों में मनुष्य निराशा, हताशा, कुंठा और आत्मसंशय के भंवर में उलझ जाता है।
1: जी हाँ, ऐसे समय में मनुष्य पर ये भुला देता है कि प्रत्येक असफलता भी किसी महान उपलब्धि की प्रस्तावना हो सकती है। कई बार नियति हमारी सीमित इच्छाओं को इसलिए अधूरा छोड़ देती है क्योंकि वो हमारे लिए कुछ बेहतर तैयार कर रही होती। वैसे भी कहा जाता है ना कि कुछ अगर हो रहा है तो वो हमारी इच्छा के लिए ही हो रहा है।
0: हाँ, जब जीवन में कोई इच्छा अधूरी रह जाए तब उसे दुर्भाग्य का प्रतीक मानकर निराश होने के स्थान पर आत्ममंथन करना चाहिए और संभव है कि बंद हुआ एक द्वार भविष्य में अनंत संभावनाओं का प्रवेश द्वार सिद्ध हो। नीति की इच्छा का प्रत्येक निर्णय तत्काल समय में समझ तो नहीं आता किंतु समय बीतने पर वही जो है बहुत बड़ी उपलब्धि का प्रमुख आधार बन जाता है।
1: यही कारण है कि धैर्यवान व्यक्ति परिस्थितियों से पराजित नहीं होता बल्कि उन्हें सफलता का साधन बना लेता है। अतः आवश्यक है कि मनुष्य प्रतिकूलताओं के मध्य भी आशा का दीप प्रज्वलित रखे, धैर्य धारण कर कर्म में निरंतरता बनाए रखे। जो व्यक्ति इस बात पर विश्वास रखता है उसे सफलता मिलती ही मिलती है ना।
0: और वही अंततः अपने सपनों को पाने में सफल भी होता है।

0: जी हाँ बिल्कुल, दिल है छोटा सा और छोटी सी आशा, आशाएं तो सबकी होती है, छोटी हो चाहे बड़ी,
1: बड़ी हो बिल्कुल
0: और आशा होनी भी चाहिए, तभी तो आप जीवन में आगे भी बढ़
1: बढ़
0: पाइएगा।
1: पाएंगे।
0: और अब आगे बातें करते विनीता,
1: मौसम की सबसे जरूरी
0: जरूरी बात है कि मौसम की, क्योंकि मौसम का हाल तो सभी देख ही
1: देख
0: रहे
1: ही रहा,
0: हैं।
1: जिस तरह से रंग रूप बदल रहे हैं ना, उससे थोड़ी सी घबराहट तो होती ही है। वैसे ये रंग रूप हमारी ही वजह से बदल रहे हैं, हम इनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो वो भी हमें पनिश ही
0: हाँ,
1: कर रहे हैं, है ना।
0: प्रकृति के साथ आप खिलवाड़ कीजिएगा तो उसका तो आप ही जो है, आप ही को उसका खामियाजा देना
1: भुगतना
0: पड़ेगा।
1: पड़ेगा।
0: और वैसे भी अभी देख रहे हैं कि बारिश इतनी हो रही है, कहीं बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है तो बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है, जैसे ही हमारे पड़ोसी देश में ऐसा हो रहा
1: हो
0: है,
1: रहा है।
0: जो अभी है बहुत दुखदाई है वो। और हमारे साथ साथ हमारे बिहार में भी जो है, वहां पे भी बाढ़ आ जाती है, जब पानी बढ़ जाता है या पानी कहीं से छोड़ दिया जाता है तो वहां भी बाढ़ की स्थिति पनप
1: पनप
0: जाती
1: जाती है
0: है।
1: और बताया जा रहा है कि वहां भी खतरे के निशान पे पहुंच चुका है। तो इन सब को देखकर हमें तो यही समझना चाहिए कि अब हमें बस करना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर अब हम नहीं सुधरे ना, तो शायद प्रकृति हमें इस बात के लिए माफ नहीं करेगी।
0: हाँ, वो बात भी है।
1: बिल्कुल।
0: देखिए, इसके लिए हमें ही प्रयास करने होंगे। हम जो इतने सारे पेड़ काट देते हैं या कहीं भी गंदगी फेंक देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो वो प्रकृति ही को ही हम गंदा करते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: नहीं, ये नहीं बोल रही कि आप आगे मत बढ़ो, पेड़ काटने पड़े तो अगर आप एक काट रहे हो तो कम से कम
0: दस
1: पांच
0: लगाओ।
1: लगाओ। मैं तो ये
0: हाँ
1: बोल रही हूँ, पांच लगाओ। कोई भी आप बर्थडे या एनिवर्सरी मनाते हैं तो गिफ्ट से अच्छा है कि आप दो पौधे लगा दो, वो आप आने वाली पीढ़ी के लिए भी अच्छा करेंगे, है ना।
0: बिल्कुल। हम तो अभी जो स्थिति झेल रहे हैं वो झेल ही रहे हैं, लेकिन हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए हम क्या छोड़कर जा
1: क्या
0: रहे
1: छोड़कर
0: हैं।
1: जा रहे हैं। तो ये तो हो गई मौसम की बातें, और अब रांची के मौसम की बातें भी कर लेते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि अभी 2 दिनों तक बारिश की
0: बारिश की
1: संभावना
0: संभावना
1: है,
0: है तेज कर।
1: वज्रपात की भी संभावना है, तो येलो अलर्ट जारी किया गया है।
0: बिल्कुल, और इस मौसम में आप संभल कर रहे हैं, येलो अलर्ट जारी किया गया, तो आप कहीं बाहर निकल रहे हैं तो पूरी सावधानी बरतें, या जब
1: बिल्कुल
0: गर्जना हो रही है तो ऐसी जगहों पर ना खड़े हों जहां पर तारे लटकी हो या वज्रपात होने की संभावना हो।
1: संभावना हो। बिल्कुल। और अगर आप बाहर निकल भी रहे और भीग गए तो घर आकर तुरंत कपड़े बदल लें, हाथ पैरों को साफ कर लें साफ पानी से, और साथ ही साफ सफाई का खास ख्याल रखें। क्यों रचना,
0: बिल्कुल सही कहा, ये तो
1: क्योंकि
0: जरूरी है।
1: बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बीमारियों का हाल भी देख ही रहे हैं। डेंगू और स्वाइन फ्लू ने जिस कदर
0: पैर
1: अपने
0: पसारे हैं
1: बिल्कुल
0: यहाँ पे, और वो बहुत खतरनाक है, इसलिए हमको सफाई का ध्यान तो
1: हर
0: देना ही
1: रोज इनकी
0: चाहिए।
1: तादाद बढ़ रही है, तो आप थोड़ा ख्याल रखें, साफ सफाई का ख्याल रखें, आसपास पानी जमा ना होने दें, मच्छरों से बचें, और सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें ताकि आप बीमारियों से बच सके, है ना।
0: बिल्कुल। और वैसे भी देखो, बारिश तो हो ही रही है, कभी धूप हो रही है कभी बारिश हो रही है, तो इन रिमझिम फुहारों का जो है
1: मजा
0: आनंद आप
1: लीजिए
0: लेते रहिए।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: तो संदेश के बाद फिर से स्वागत है हमारे श्रोताओं का कार्यक्रम जोहार रांची में। तो अब बातें विनीता
3: इतिहास की बिल्कुल, क्योंकि आज के दिन हुई घटनाओं को जानना भी तो जरूरी है।
2: क्योंकि जो भी आज के दिन घटित होगा वो कल को जाकर इतिहास बन
3: जाता है, और इतिहास को अगर हम साथ लेकर चलेंगे तो आगे बढ़ सकेंगे, है ना। तो चलिए बताते हैं क्या क्या खास घटनाएं हुई थी आज।
2: तो आज ही के दिन यानी 11 सितंबर 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कट्टरता, सहिष्णुता और सभी धर्मों में निहित सच्चाई पर ऐतिहासिक भाषण दिया था।
3: और 1906 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया था, और 1941 में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का निर्माण शुरू हुआ था।
2: और 1951 की बात करें तो 11 सितंबर 1951 को इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला बनी फ्लोरेंस चैडविक, उन्हें इंग्लैंड से फ्रांस पहुंचने में 16 घंटे और 19 मिनट लगे।
3: और 1961 में आज के दिन विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना हुई थी, और 1996 में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी।
2: 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर व पेंटागन पर आतंकवादी हमले में 6000 से अधिक लोग मारे गए थे।
3: और 2006 में पेस और डेम की जोड़ी ने अमेरिकी ओपन का युगल खिताब जीता, और 2006 में ही आज ही के दिन स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर को लगातार तीसरी बार अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब मिला था।
2: और 2007 में यरूशलेम से सटे डेविड शहर में लगभग 2000 साल पुरानी सुरंग का पता लगा था। तो बातें हम आगे और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक गीत।

0: बातें हो रही थी इतिहास की, तो अब इतिहास में हम बातें करते हैं जिनका आज निधन हुआ है और जन्म भी हुआ है। तो पहले निधन की बातें कर लेते हैं। तो 11 सितंबर 1948 को ब्रिटिशकालीन भारत के प्रमुख नेता और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिना का निधन हुआ था।
1: हिंदी भाषा की कवयित्री महादेवी वर्मा का निधन भी आज ही के दिन 1987 को हुआ था। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है।
0: और 1956 में महादेवी वर्मा को पद्म भूषण और 1988 में उन्हें मरणोपरांत भारत सरकार की पद्म विभूषण उपाधि से सम्मानित किया गया था।
1: और अब उनकी बातें भी करते हैं जिन्होंने आज के दिन इस दुनिया में कदम रखा। तो आज ही के दिन 1895 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध गांधीवादी नेता विनोबा भावे का जन्म हुआ था। उनका मूल नाम विनायक नरहरी भावे था।
0: और भारतीय क्रिकेटर लाला अमरनाथ का जन्म आज ही के दिन 1911 को हुआ था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से पहला शतक जमाया था। वे भारत के पहले ऑलराउंडर थे जिन्होंने बल्ले के अलावा गेंद से भी अपने विरोधियों की नाक में दम किया। उन्हें भारत सरकार द्वारा सन 1991 में खेल के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
1: और आज ही के दिन दक्षिण भारतीय अभिनेत्री श्रेया शरण का जन्म भी हुआ था 1982 को।
0: और वो तमिल तेलुगु के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी काफी सक्रिय हैं। और इनकी मूवी जो है वो दृश्यम तो हमने देखी है, और तड़का मूवी जो आई थी उनकी वो भी नाना पाटेकर के साथ काफी अच्छी मूवी थी। तो सुनते हैं उसी फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत।

0: हमारे नेक्स्ट कॉलर को। हेलो,
1: हेलो,
0: आपका नाम?
1: तुकाराम।
0: कन्फेशन या कन्फ्यूजन?
1: कन्फ्यूजन।
0: क्या कन्फ्यूजन है?
1: कल रात मुझे किसी ने कहा कि मेरी आवाज बड़ी सेक्सी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, थिंक माई वॉइस इज सेक्सी।
0: जिसने आपको सेक्सी कहा

0: इस खूबसूरत गीत के बाद अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ घूमने की बातें कर लेते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि घूमना फिरना भी जरूरी है, है ना?
0: हाँ, घूमना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम एक ही रूटीन में बंद जाते हैं, कहीं कुछ कर नहीं पाते हैं, तो अपने आप में एक खींच सी होने लगती है ना कि सारा समय उसी काम में लगे।
1: हाँ, और अभी क्या हो गया है ना कि हर किसी का लाइफ एक रूटीन में चल रहा है, तो अगर थोड़ा सा उससे निकलना है तो कहीं घूम कर आएंगे तो आपका मन भी फ्रेश होगा और साथ ही इसका असर आपके हेल्थ पर भी पड़ेगा, है ना?
0: और आप जो है पूरे जोश के साथ दोबारा से फिर से उसी काम में लग
1: जाएंगे। तो आज कहाँ घुमाने ले चल रही है रचना?
0: तो चलिए आज बातें करते हैं हम ओली की। तो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित ओली एक ऐसा पर्वतीय स्थल है जहाँ प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है। समुद्र तल से लगभग 2.5 से 3 हजार मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये स्थल आज भले ही देश के प्रमुख स्कीइंग स्थलों में गिना जाता है, लेकिन इसकी पहचान केवल बर्फ तक सीमित नहीं है
1: बल्कि ग्रीष्म ऋतु में हरे भरे बिल्कुल, और वर्षा में बादलों की अटकेलियां, शरद ऋतु में स्वच्छ नीला आकाश, यानी कि इसे हर मौसम में आप देख सकते हैं, वहां जा सकते हैं। ये हर मौसम में अपना अलग ही रूप दिखाता है ये जगह।
0: बिल्कुल, तो जोशी मठ ओली का प्रवेश द्वार है। यहां से ओली जाने के दो मार्ग हैं, एक सड़क मार्ग और दूसरा रोप वे।
1: बिल्कुल, और चलिए हम बताते हैं कि यहाँ आप किन किन जगहों पे जा सकते हैं, यानी घूमने वाली जगहों
0: जगह बहुत सारी हैं, तो हम बता देते हैं थोड़ा थोड़ा करके।
1: तो यहाँ पे एक है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ये उद्यान कई दुर्लभ वन्य जीवों का घर है। यहाँ हिम तेंदुए, हिमालयी भालू, एशियाई काले भालू और देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। उद्यान में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की भी भरमार है, जो प्राकृतिक सुंदरता को काफी बढ़ा देता है।
0: और एक कृत्रिम झील का भी यहाँ पर निर्माण किया गया है, जो स्कीइंग ढलानों पर कृत्रिम हिम तैयार करने के उद्देश्य से किया गया था। और यहाँ के शांत जल में प्रतिबिंबित हिमालय का दृश्य अत्यंत मनोहारी लगता है। और ये झील बर्फ बनाने वाली मशीनों के लिए जलाशय का काम करती है।
1: बिल्कुल, साथ ही यहाँ है नरसिंह मंदिर। ये मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह को समर्पित है। इसकी भव्य वास्तुकला आप देख सकते हैं, जो हमारा ध्यान यहाँ आकर्षित करती है। बारीक नकाशी और मूर्तियों से सुशोभित इस मंदिर की पत्थर की दीवारें और लकड़ी के खंभे सदियों पुरानी कारीगरी की झलक दिखाते हैं। इन पर की गई ये नकाशी हिंदू पौराणिक कथाओं के साथ साथ मंदिर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की कहानी भी बताती है।
0: बिल्कुल, और एक और झील है यहाँ पर जो है चिनाब झील। ये एक छोटी क्रिस्टलीय पानी की झील है। ये शांत झील हरे भरे जंगल और ओक तथा देवदार के पेड़ों से घिरी हुई है, और यहाँ ट्रेकिंग भी की जा सकती है।
1: बिल्कुल, और अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ कैसे जाएं, है ना?
0: वो तो, जो सबसे जरूरी है।
1: बिल्कुल, तो देहरादून का जॉली ग्रैंड हवाई अड्डा यहाँ का, और साथ ही नजदीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार रेलवे स्टेशन है, जहाँ से आप यहाँ जा सकते हैं। हरिद्वार से ओली के लिए बस या फिर जोशीमठ तक किराए पर टैक्सी भी ले सकते हैं, और ये ऋषिकेश और हरिद्वार से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, इसलिए आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। और दिल्ली से भी आप जा सकते हैं, वहां से भी आपको बस मिल सकते हैं। तो आप सड़क या फिर
0: जैसी आपकी सुविधा हो आप वैसे जा सकते हैं।
1: और साथ ही यहाँ रहने का भी अच्छा प्रबंध है, बजट के हिसाब से भी यहाँ गेस्ट हाउस होटल आपको मिल जाएंगे।
0: बिल्कुल, तो आप भी जरूर जाएं, एक बार जरूर जाने का प्लान करें अगर आप कहीं जाना चाह रहे हैं। तो ओली बादलों के पार बसा हुआ हिमालय का आंगन, और जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप वहाँ जाकर यही बोलेंगे ये कहाँ आ गए हैं हम।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन।

सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

0: यूं ही साथ साथ चलते।
1: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।
0: ये कहां

0: देखिए विनीता, घूमने की बातें तो हमने कर ली और अब साथ में हम बातें कर लेते हैं सेहत की भी, क्योंकि अब अच्छी सेहत रहेगी तभी तो आप
1: घूम
0: घूम पाएंगे
1: पाएंगे
0: ना। हाँ
1: बिल्कुल सही कह रही। तो सेहत का तो खास ख्याल रखना चाहिए,
0: बहुत
1: क्योंकि एक
0: जरूरी
1: वही
0: है।
1: चीज है जिसके चलते हम किसी भी चीज में सफलता पा सकते
0: हाँ,
1: हैं।
0: और अगर आपकी तबीयत ठीक रहेगी, सेहत ठीक रहेगी, तो आप जो है हर चीज में खुश रहेंगे, आपको खुशी मिलेगी। आप कोई भी काम जो करेंगे वो पूरे दिल
1: दिल
0: से
1: से
0: मन से
1: करेंगे
0: करेंगे, और
1: और
0: घूमेंगे भी तो पूरे मन
1: मन
0: से।
1: से घूमेंगे, और अभी का जो माहौल चल रहा है उसमें अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई ऐसी बीमारियां हैं जो धीरे धीरे अपना असर छोड़ना शुरू कर देती है और जो हमें बाद में पता चलता है। तो शुरू से ही थोड़ी सी सावधानी रखें, थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ये तो सही है कि हमारा शरीर हमें इशारे तो जरूर
0: जोर
1: करता
0: देता
1: है
0: है, सही बात है।
1: कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहें, है
0: और
1: ना।
0: जो कि मतलब हमको संकेत तो देता है हमारा शरीर, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण कि वो समस्या अगर आगे बढ़कर गंभीर हो
1: गंभीर हो
0: सकती
1: जाती
0: है।
1: है, और आज के समय में कोई भी बीमारी किसी भी उम्र की मोहताज नहीं है। हर उम्र में कोई भी बीमारी किसी को भी हो जा रही है, ये तो हम सब देख रहे हैं।
0: हाँ,
1: पहले डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब हम सोचते थे कि एक उम्र आने के
0: बाद
1: बाद,
0: होती है।
1: लेकिन अभी देखिए बच्चों को भी डायबिटीज हो रही है।
0: हाँ,
1: तो थोड़ा सा ख्याल रखें, और ये क्यों हो रहा है ये हम सब जानते हैं, ये सिर्फ हमारे डेली रूटीन खाने पीने
0: खाने
1: की
0: पीने के वजह
1: आदत,
0: से।
1: इन सब की वजह से हो रहा है।
0: और इसी में जो है ना विनीता, आजकल जो एक बहुत बढ़कर भी उभर रहा है, जिसे हम कहते हैं कि फैटी लीवर,
1: बिल्कुल।
0: ये भी एक गंभीर समस्या के रूप में अभी उभर रही है। जैसे कि अगर आप युवा हैं और मोटापे जैसी समस्याओं से बचे हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और आज के समय में फैटी लीवर और प्री डायबिटीज बेहद शांत तरीके से बीमारी की नींव तैयार कर देते हैं। लक्षण स्पष्ट नहीं होने से लोग इससे बेखबर बने रहते हैं।
1: बिल्कुल, वही हमने कहा ना कि पता नहीं चलता कि वो बीमारी हमें कहाँ तक खोखला कर रही है, जब बहुत देर हो चुकी होती है तब पता चलता है। तो इससे अच्छा है ना कि हम थोड़ी सी सावधानी रखें, क्योंकि ये फैटी लीवर थोड़ा लेट होने पर ही पता चलता है ना।
0: हाँ, क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण जो है वो सामने दिखते नहीं है, इसलिए हमें पता ही नहीं चल पाता कि ये हम फैटी लीवर से ग्रसित हो रहे हैं।
1: और जैसा कि रचना ने बताया कि मोटापे की वजह से भी ये बढ़ता है, और
0: जिनको डायबिटीज है या कोई अन्य बीमारी हुई
1: बीमारियां
0: है, तो
1: हैं।
0: उनको जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल है या ब्लड प्रेशर हाई है, तो उससे भी फैटी लीवर की समस्या हो सकती है।
1: बिल्कुल, और इसके कुछ लक्षण हैं तो जो कि अगर हम ध्यान रखें तो शायद हमें पता चल जाए। शुरुआत में ये लक्षण उतना नहीं पता चलता है, लेकिन ये जब थोड़ा बढ़ता है तो पता चलने लगता है। इसमें लगातार थकान महसूस होना, पेट में खासकर बाई ओर खिंचाव या दर्द महसूस होना, खाना खाने के बाद पेट फूलना या भारी लगना, ये सब इसके लक्षण हैं।
0: ये सब लक्षण हैं, तो इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम इन जैसे हम बोलते हैं ना, भोजन के बाद हमारा पेट फूल रहा है या भारी महसूस हो रहा है, तो हम उसको बहुत
1: कॉमनली,
0: नॉर्मली
1: हाँ
0: लेते हैं,
1: नॉर्मली ले लेते
0: उसमें
1: हैं।
0: सोचते नहीं कि हमको ये बीमारी भी हो सकती है। लेकिन नहीं, अगर आपको ऐसे लक्षण सामने आ रहे हैं, आपको लगातार ऐसी हो रही है समस्या, तो आप जरूर से
1: डॉक्टर से
0: डॉक्टर
1: मिले,
0: डॉक्टर से
1: बिल्कुल।
0: परामर्श करें।
1: और अगर इन सब से बचना है तो कुछ अपने जीवन शैली में सुधार लाएं। सबसे पहले तो अगर आपका वजन ज्यादा है या आपका शरीर ऐसा है कि वजन तुरंत बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, स्वस्थ भोजन, और साथ ही सबसे जरूरी है कि एक्सरसाइज जरूर करें, है ना। क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर सुबह आपको समय ना भी मिले तो शाम के समय भी आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से शरीर में बीमारियों का घर जल्दी नहीं बनता है। साथ ही नियमित स्वास्थ्य जांच,
0: हाँ, ये बहुत
1: ये
0: जरूरी
1: सबसे
0: है।
1: जरूरी है। 3 महीने या 6 महीने पे आप डॉक्टर से पूछ लें कि कितने महीने पे जरूरी है, आप टेस्ट जरूर करवाते रहें।
0: हाँ, आजकल तो ये जरूरी भी हो गया है कि आपको नियमित अपनी जांच कराती रहनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और जैसा कि हमने कहा कि थोड़ा सा आप ख्याल रखें, तो साथ ही स्वस्थ आहार की आदत डालें, भोजन में फल सब्जियां फाइबर शामिल करें, हेल्दी नट्स भी आप शामिल करिए, चीनी रिफाइंड कार्ब्स जंक और अल्ट्रा मतलब पैकेट फूड से आप बचिए।
0: हाँ बिल्कुल। और सप्ताह में जैसे 15 मिनट जो है व्यायाम जरूर करें, और पैदल भी चलें। आप जैसे साइकिल भी चला सकते हैं। कुछ लोग जो होते हैं व्यायाम के लिए साइकिल को अच्छा मानते हैं, तो वो बहुत ही एक अच्छी एक्सरसाइज है, उससे आपके पूरी शरीर की एक्सरसाइज एक साथ हो
1: बिल्कुल,
0: जाती है,
1: और साथ ही 7-8 घंटे की अच्छी नींद जरूर लें,
0: जो कि बहुत जरूरी
1: बहुत
0: है।
1: जरूरी है, ये आपको टेंशन या तनाव को काबू करने में मदद देगी।
0: क्योंकि इसका जो ताल्लुक है ना, नींद का ताल्लुक जो है तनाव का, ये फैटी लिवर से भी हो सकता है। तनाव और नींद नहीं होने से आपको ये समस्या, क्योंकि जो है लीवर की समस्या बढ़ती है, कॉर्टिसोल यानी तनाव जो हार्मोनल एक होता है उससे बढ़ते हैं तो तनाव भी बढ़ता है, उससे आपका मेटाबॉलिज्म बाधित होता है जिससे आपको नींद खराब होने की समस्या होती है, तो उससे जो है वो फैटी लिवर की शिकायत होने की समस्या भी हो जाती है।
1: तो है तो छोटी छोटी बातें, तो आप बस ख्याल रखें और
0: हाँ,
1: हंसते मुस्कुराते
0: जैसे कि
1: रहें।
0: हमने कहा कि इसमें आपको जंक फूड या वो चीजें नहीं लेनी है जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है जिन्हें चीनी की मात्रा अधिक होती है, वो चीजें आप कम खाएं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
1: घर
0: और
1: का हेल्दी खाना खाएं और मन हो तो महीने में एक आध बार खा सकते हैं, उससे
0: हाँ,
1: कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर हो
0: वो
1: सकता
0: कहते हैं ना कि हम हमेशा कि जितना खाते हैं उतना हमको जलाना भी चाहिए, यानी कि
1: बिल्कुल।
0: आप खाते हैं तो अगर आपको उतनी ही उसको कैलोरीज बर्न भी करनी पड़ेगी, तो आप अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखें और साथ ही इस गीत को का भी आप आनंद लें।

0: अब बातें हम कर लेते हैं खेल की भी। तो खेल में हम बता दें कि ईशान किशन की कप्तानी में पूर्व क्षेत्र ने 13 साल बाद जीत लिया है दिलीप ट्रॉफी खिताब। ईशान किशन की कप्तानी वाले पूर्व क्षेत्र ने कल दक्षिण क्षेत्र को हराकर 13 साल बाद दिलीप ट्रॉफी का खिताब जीता था।
1: बिल्कुल। और आक्रामक बल्लेबाज सैफ अली शर्मा के शानदार अर्धशतक और स्पिनरों की गेंदबाजी के दम पर भारत ने गुरुवार को बांग्लादेश को 40 रन से हराकर महिला एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है।
0: तो ये तो बहुत ही गर्व की बात है।
1: बिल्कुल,
0: इनको बहुत सारी बधाई हमारी तरफ
1: हाँ।
0: से। और मेजबान भारत ने विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज स्टेज 3 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 पदक जीते। इनमें 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल हैं। हालांकि पदक तालिका में भारत चेक गणराज्य के बाद दूसरे स्थान पर रहा, क्योंकि चेक गणराज्य ने 5 स्वर्ण पदक जीते। चीन 2 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। और एक और खबर है हमारी भारत की बेटियों के बारे में।
1: बिल्कुल, भारत की बेटियों ने हॉकी के मैदान में गुरुवार को ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए जूनियर एशिया कप में प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 19-0 से रौंद डाला। इस विशाल जीत के साथ ही भारतीय महिला हॉकी टीम ने टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भी प्रवेश कर लिया है।
0: बिल्कुल, 18 पेनल्टी कॉर्नर और 1 पेनल्टी स्ट्रोक मिला भारतीय टीम को। और गोल दागकर पूजा मलिक ने लगाई हैट्रिक और 4 खिलाड़ियों ने भी दागे 2-2 गोल। तो हॉकी में जो हमारी बेटियां पहुंच गई हैं सेमीफाइनल में, उनको भी एक बार फिर से
1: बधाई।

0: तो बिल्कुल कर हर मैदान फतेह। हम अपनी महिला हॉकी टीम और महिला क्रिकेट टीम को
1: एक बार फिर से
0: शुभकामनाएं बधाई देते
1: बधाई
0: हैं, और
1: देते हैं।
0: ये भी आशा करते हैं कि उनके जो आगे के मैच हैं वो जरूर जीतें।
1: बिल्कुल, तो अब ढेर
0: देखिए
1: सारी बातों के साथ वक्त
0: बातें
1: हो
0: हो गई
1: चला है
0: हैं।
1: प्रोग्राम
0: हाँ
1: से विदा लेने का, है ना?
0: हाँ हमारी घड़ी की सुइयां हमारी तरफ इशारा कर रही हैं कि देखिए आपने बातें बहुत कर ली, अब समय हो चला है अपने श्रोताओं से विदा
1: विदा
0: लेने
1: लेने
0: का।
1: का। तो चलते चलते बस इतना ही कहूंगी कि जितनी भी सेहत की बातें हमने आपसे कही है उन पर ध्यान दे, अपना ख्याल रखे, अपने परिवार का ख्याल रखे, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।
0: और अपनी सेहत का ख्याल तो जरूर रखें ही, साथ में साफ सफाई का ध्यान भी रखें, क्योंकि साफ सफाई के साथ ही सेहत जुड़ा हुआ है,
1: बिल्कुल
0: इसलिए स्वच्छता जरूरी है और साथ ही साथ सेहत भी जरूरी
1: जरूरी है।
0: है। तो अब इन्हीं बातों के साथ अपनी दोस्त रचना
1: और विनीता,
0: को दीजिए विदा। नमस्कार,
1: नमस्कार,
0: जोहार।
1: जोहार।

के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है और इस कार्यक्रम में श्रोता सुनते हैं अपनी ही पसंद के गीत। तो पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में कुदरत फिल्म का, और इस गीत को सुनना चाह है नया बाजार बक्सर से राजेश केशरी, पंकज केशरी, रोहन केशरी, गोलाघाट बक्सर से विजय केशरी, गौरी शंकर केशरी, शंभू केशरी। इसी गीत को सुनना चाह है बड़ा बाम्बो सुपाईसाई से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा, प्रकाश ताती, श्याम देव नायक, ललित प्रधान, चक्रधर ग्राम गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बसंती बनमाली, सिद्ध कुमारी। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत अब आपको सुनवाते हैं किस्मत फिल्म से, और इस गीत को गाया है महेंद्र कपूर ने। सुनना चाहा है गोंदा टाउन कांकी रोड रांची से रमेश प्रसाद जायसवाल, मनदीप, मंटू, मोनू, सोनू, आराध्या, कोटवा, नारायणपुर, बावापट्टी, बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा, नेवारा, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय।

अगला गीत आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में शक्ति फिल्म से, और इस गीत को सुनना चाह है खरसावां झारखंड से सुकरा नायक, गौरव नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक और उनके सभी परिवार वाले, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश।

0: कार्यक्रम में हम आपको आगे भी गीत सुनवाएंगे, लेकिन अभी रुकते हैं एक अंतराल के लिए।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: ಸ್ವಯಂ ಇದು ಕಟ್ಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: एक बार फिर से स्वागत है हमारे श्रोताओं का कार्यक्रम आपकी पसंद में. और अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में राजकुमार फिल्म से. और इसे सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ भाटापारी दतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डूमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर. और इसी गीत को सुनना चाहे मगनपुर से अमजद अली और अब्बास आलम ने. तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद का ये गीत.

कार्यक्रम का आखिरी गीत आइए अब सुनते हैं कश्मीर की कली फिल्म से, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। सुनना चाहते हैं ग्राम बरबुड़ा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, मेहरनगर उतेर उमेरखंड महाराष्ट्र से अभिजीत गनवानकर, राही सरिता गनवानकर, सिद्धांत गनवानकर, प्रिंस एकांश गनवानकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गनवानकर, वैशाली गनवानकर, श्वेता सुमित गनवानकर, कुमारी ध्वनि गनवानकर।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। 12 बजे हैं और वक्त है महिलाओं के कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: बहनों नमस्कार। कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी सखी लता और हम सब के साथ है हम सब की प्यारी न्यारी सखी राखी।
1: तो बहनों स्वीकार कीजिए अपनी सखी राखी का भी प्यार भरा नमस्कार।
0: राखी कल्पना करो, सुबह की पहली किरण जब पेड़ों की पत्तियों से छन कर धरती पर आती है, पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती है और ठंडी हवा चेहरे को छूकर गुजरती है, तो मन अपने आप कह उठता है, प्रकृति सचमुच अनमोल है ना?
1: वाह वाह लता, सच में तुमने तो बिल्कुल कल्पना करा दी। और भाई बरसात का मौसम भी है तो ऐसा होता भी है कि ठंडी हवा चेहरे को छूकर जाती है और बड़ी सिहरन सी होती है ना? और इस प्रकृति का सबसे खूबसूरत उपहार है हमारे वन। वन केवल पेड़ों का समूह नहीं है बहनों, ये हमारे जीवन का आधार भी है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, हवा को शुद्ध करते हैं, मिट्टी को बचाते हैं और बारिश के चक्र को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तो हम बचपन से पढ़ते सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब इस पर विचार करने की भी आवश्यकता है ना लता?
0: हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी बात तुमने कही राखी। बचपन से तो हम सुनते देखते आ रहे हैं, लेकिन अब समय आ चला है कि अब इस पर मंथन हो, इस पर विचार हो। जंगलों में रहने वाले असंख्य पशु पक्षी और जीवन जंतु भी हमारे पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं।
1: हाँ, सोचिए अगर जंगल ना हो तो क्या होगा? बारिश का संतुलन बिगड़ेगा, तापमान बढ़ेगा, मिट्टी का कटाव होगा और अनेक वन्य जीव अपना प्राकृतिक आवास खो देंगे। बारिश का संतुलन ना बिगड़े ये बहुत जरूरी है। यानी जंगलों को नुकसान सिर्फ पेड़ों का नुकसान नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है।
0: हाँ रखिए, मैंने हमारे देश और खासकर झारखंड जैसे वन समृद्ध राज्य में जंगलों का महत्व और भी ज्यादा है, क्योंकि यह धरती जल जंगल जमीन की धरती है। यहाँ के वन सिर्फ पर्यावरण की रक्षा नहीं करते, बल्कि आदिवासी और ग्रामीण समुदाय की जीवन संस्कृति और आजीविका से भी गहराई से जुड़े हैं हमारे आदिवासी भाई बहन। और जंगल उन्हें फल फूल औषधीय पौधे, महुआ जैसे हो गया, तेंदुपत्ता हो गया और इस तरह के न जाने कितने औषधीय पौधे और कई अन्य वनपज उपलब्ध कराते हैं, है ना?
1: हाँ, लेकिन आज जंगल कई चुनौतियों से गुजर रहे हैं, ये तो हम सब देख रहे हैं। तेजी से बढ़ता शहरीकरण, अवैध कटाई, जंगलों में आग और विकास के नाम पर पेड़ों की जो ये अंधाधुंध कटाई हो रही है, हमारे सामने गंभीर सवाल खड़े कर रही है। और सिर्फ सरकार की नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जंगलों को बचाया जाए। जंगल बचाने की जिम्मेदारी हम सबको लेनी पड़ेगी, है ना बहनों?
0: बिल्कुल राखी, हम बस ये सोचते हैं कि ये जिम्मेदारी से हम नहीं बच सकते हैं, क्योंकि एक एक व्यक्ति की अपनी साझा जिम्मेदारी जब सामने मिलकर के दिखेगी ना, तभी हम इस पर कारगर साबित होंगे।
1: हाँ।
0: बहनों, हम अपने आसपास पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, देखभाल करें, अनावश्यक रूप से पेड़ों की कटाई का विरोध करें और जंगल को कूड़ा ना बनाएं। कभी भी उसमें कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए बहनों, हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारे जंगल है, हमारा कल है, हमारे बच्चों का ये भविष्य है। तो बच्चों को भी पेड़ और पर्यावरण के महत्व के बारे में बताना हम सब की बहुत बड़ी
1: जिम्मेदारी है। और याद रखिए बहनों, हम जंगलों को नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए सिर्फ तस्वीरों में जंगल रह जाएंगे। आइए आज हम एक छोटा सा संकल्प लें कि एक पेड़ लगाएंगे, उसकी देखभाल करेंगे और दूसरों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि वन है तो जल है, जल है तो जीवन है।
0: हाँ, और वन है तो हमारी धरती का भविष्य भी सुरक्षित है।
1: हाँ।
0: तो अगली बार जब किसी पेड़ की छांव में बैठे, उसकी ठंडी हवा महसूस करे, तो एक पल रुककर उस पेड़ को धन्यवाद जरूर करिए, क्योंकि हमारी वन प्रकृति का सिर्फ अनमोल वरदान नहीं बल्कि हमारा जीवन भी है।
1: हाँ, और ये जो बरखा, ये बारिश हम देख रहे हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं हमारे पेड़ों की

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कॉन्क्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: विराम के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है बहनों, आपके ही कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। आपके साथ हैं हम दो सखियां, राखी और लता।
6: तो बहनों, आज हम बात करेंगे सेना में महिलाओं की भूमिका पर। बहनों, भारतीय सेना का इतिहास साहस, शौर्य और बलिदान की गाथाओं से भरा पड़ा है, है ना राखी?
5: हाँ, हाँ।
6: और बहनों, इस गौरवशाली यात्रा में महिलाओं की भूमिका और भी मजबूत है। महिलाओं ने यह साबित किया है कि पुरुषों का जो क्षेत्र है, जिसे हम पुरुष वर्चस्व वाले क्षेत्र कहा करते थे, वहां भी अब उन्होंने, यानी बहनों ने, बेटियों ने अपनी जो है ना
5: पहचान बनाई है, झंडा गाड़ा है। बिल्कुल, महिलाएं जो है सेना के अधिकारियों के रूप में नेतृत्व कर रही हैं, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, संचार, प्रशासन के क्षेत्र में भी अपना योगदान दे रही है बहनों। और अनुशासन, धैर्य, सहनशीलता, साहस, कर्मठता, संकल्प और संवेदनशीलता का अद्भुत मेल दिखता है सेना में रहकर महिलाओं का।
6: देश की सुरक्षा का दायित्व अपने कंधों पर उठा सकती हैं महिलाएं। और जैसे कि

0: तो बहनों, अभी हमने भारत की बेटियों की बात की है ना, सेना में महिलाओं की भी बात की, लेकिन बेटियों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना भी तो जरूरी है, क्या लता?
1: बहुत अहम सवाल है ये बहनों, कि हम अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा तो जरूर रहे हैं, लेकिन क्या हम अपनी बेटियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दे रहे हैं? आज के युग में अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना अति आवश्यक है। बहनों, बेटियां हमारी समाज की ताकत है। आज बेटियां शिक्षा, खेल, विज्ञान, प्रशासन, व्यवसाय और हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। क्यों रखी?
0: हाँ हाँ।
1: लेकिन बदलते समय

0: के साथ उनकी सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण विषय बन गई है।
1: हाँ, ऐसे में बेटियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना केवल सुरक्षा का उपाय नहीं है बहनों, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी कहा जाएगा।
0: और आत्मरक्षा का मतलब केवल कराटे, ताइक्वांडो या मार्शल आर्ट ही सिखाना नहीं है बहनों, बल्कि पहला कदम है सतर्क रहना और खतरे को पहचानना और सही समय पर सही निर्णय लेना। ये तमाम बातें जो है ना, वो बहुत ही जरूरी है, अहम है आत्मरक्षा के लिए। हम ये समझते हैं कि हमने बेटियों को मार्शल आर्ट सिखा दिया तो वो अपनी रक्षा कर लेंगी, लेकिन इसके साथ ही हमें बेटियों को सतर्क रहना, खतरे को पहचानना और निर्णय क्या लेना है, कैसे हमें उस जगह पर अपनी सूझबूझ दिखानी है। हाँ, इस पर भी हमें काम करने की आवश्यकता।
1: बिल्कुल, बचपन से ही बेटियों को यह समझना या समझाना जरूरी है कि अगर कोई व्यक्ति उन्हें असहज महसूस कराता है, गलत तरीके से छूता है या डराने धमकाने की कोशिश करता है तो वो चुप ना रहें। उन्हें स्पष्ट और दृढ़ आवाज से नहीं कहना आना चाहिए और जरूरत पड़ने पर वहां से सुरक्षित निकलना भी उन्हें आना चाहिए, और ये हमें उन्हें सिखाना होगा।
0: बिल्कुल बहनों, अपनी बेटियों को आपात स्थिति में बचाव के सरल तरीके, सुरक्षित स्थान तक पहुंचने, मदद मांगने और आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित करने का भी प्रशिक्षण अति आवश्यक रूप से दिया जाना चाहिए। और अगर हम घर पर ही इन बातों का जिक्र अपनी बेटियों के साथ करेंगे ना, तो बेटियां पहले से तैयार रहेंगे कि हमें ऐसे वक्त में क्या करना
1: है। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि उन्हें बताना होता है कि अंधेरे सुनसान रास्तों में शाम को, हाँ, जहाँ पर ऐसा ही किया सुरक्षित है, उस रास्ते को ना चुने अकेले।
0: बिल्कुल,
1: वो बल्कि जो रास्ता लंबा हो लेकिन लोग हो, जहाँ पर भीड़ भाड़ भरा, वहाँ पे उस स्थान को चुनना चाहिए। हाँ, ये भी सिखाना चाहिए जैसा बचपन में हमें सिखाया जाता था कि अपने पास कुछ ऐसी चीजें जरूर रखें जो आपात स्थिति में आपके काम आए, जैसे मिर्च का पाउडर या कोई स्प्रे। आप ऐसा रखें कि अगर कोई अचानक से आप पर हमला करता है तो आप उसके माध्यम से बच सकें।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और बहनों, अपनी बेटियों को ये सब सुरक्षित तरीके आपको सिखाने पड़ेंगे।
0: हाँ, और बेटियों को आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों की भी जानकारी देना बहुत जरूरी है। और आज आप देखेंगे कई तरह के हेल्पलाइन हमारे बीच हैं। भारत में आपात स्थिति के लिए 112 एकीकृत आपातकालीन नंबर है बहनों। महिलाओं को स्थानीय पुलिस और उपलब्ध महिला सहायता सेवाओं की जानकारी भी अपने फोन में सुरक्षित रहनी चाहिए। यानी कि इसका अर्थ यह है बहनों कि हम आजकल तो एंड्रॉयड फोन में बहुत तरह की सुविधाएं हैं, बहुत तरह के ऐसे ऐप हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, तो ऐसे ऐप के माध्यम से हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। और अगर हम कहीं निकल रहे हैं, बेटियां हमारी निकल रही हैं, तो आप अपनी बेटियों को इससे ट्रैक भी कर सकती हैं। तो ऐसे ऐप का सहारा लेना चाहिए। और अगर आपातकालीन स्थिति कुछ बन जाती है तो एक नंबर जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है पूरे देश में 112 एकीकृत आपातकालीन नंबर है, उसकी सहायता अवश्य लेनी चाहिए।
1: माता पिता की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है।
0: हाँ,
1: जैसे बेटियों को डराने के बजाय उन्हें जागरूक और आत्मविश्वासी बनाएं, उनके साथ खुलकर बातचीत करें ताकि किसी भी परेशानी या गलत व्यवहार की स्थिति में वे बिना झिझक परिवार से बात कर सके। क्योंकि जब तक वो आपसे बात नहीं करेंगी सखियों, तब तक आप उन्हें रास्ता कैसे दिखाएंगी। कई बार ऐसा होता है संकोचवश, डरवश या लाजवश बेटियां अपने साथ हो रही गलत चीजें जो है बता नहीं पाती है। कई बार परिवार के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा भी उन्हें शोषित किया जाता है, लेकिन लड़कियां बता नहीं पाती हैं। तो लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ इस तरह का संबंध बनाएं कि वो आपसे खुलकर बातचीत करें।
0: यह बहुत जरूरी है बहनों। राखी, तुमने बिल्कुल सही कहा है कि बेटियों के साथ जो है हमारा जो रिश्ता है ना, वो बहुत ही दोस्ताना होना चाहिए, ताकि उसे अपनी परेशानी, अपनी बात कहने में किसी भी तरह की झिझक महसूस ना हो, और अपनी बातों को जो उसके मन में चल रही है, वो अंदर अंदर जिस बात से वो लड़ रही है, उसको लेकर के वह खुलकर बातें कर सके। सबसे जरूरी है आत्मरक्षा का प्रशिक्षण बहनों। केवल बेटियों की जिम्मेदारी यह नहीं है कि उन्हें सिखाना है, यही हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, बल्कि समाज को ऐसा सुरक्षित वातावरण भी तैयार करना होगा जहां हर लड़की बिना डर के स्कूल, कॉलेज, अपने कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर आ जा सके, निफिक्र होकर आ जा सके, उसे असुरक्षित महसूस न हो।
1: हाँ, हमें बेटियों से यह नहीं कहना चाहिए कि तुम अकेले बाहर मत जाओ, देर तक बाहर मत रहो या हमेशा डर कर

स्त्री बेटियों को भी मजबूत बनाने की प्रेरणा देती है। बहनों, बेटियों को डर नहीं हौसला दे, सिर्फ सुरक्षा की चिंता नहीं आत्मरक्षा की प्रशिक्षण दे, क्योंकि सुरक्षित बेटी ही आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों की उड़ान भर सकती है।

0: तो राखी, इस गीत को सुनने के बाद वाकई हम बहनों की जो सपनों की उड़ान है ना, एकदम उमंग से भर गई होगी।
1: बिल्कुल, और हम अपने अंदर भी जोश आ जाता है।
0: बिल्कुल राखी, और हम चाहते भी हैं कि हमारी बेटियां ऐसे ही अपने सपनों की उड़ान भरे और खूब आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के साथ हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज देखा जा रहा है कि मौसम बदल रहा है, तो बदलते मौसम में ना बहनों, हम सबको ना खास ख्याल रखने की जरूरत होती है, और ऐसे में हम भी अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। लेकिन बहनों, हम सबकी जिम्मेदारी है कि सिर्फ हम अपने के साथ से परिवार का ही नहीं, बल्कि अपना भी हम ख्याल रखें,
1: क्योंकि जब हम खुद ठीक रहेंगे, खुश रहेंगे, तभी अपने परिवार की जिम्मेदारी भी उठा पाएंगे। बारिश का मौसम है बहनों, थोड़ा सा बारिश में भीगना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा भीगने से बचें, और भीग कर आने के बाद अपने शरीर को अच्छे से सुखा कर कपड़े बदलें, बालों को सुखाएं, क्योंकि ये जो गीलापन है बहुत कभी कभी उससे तबीयत भी खराब होती है, और वायरल फीवर भी का भी मौसम है, तो थोड़ा गर्म पानी पिए, और काढ़ा वाढ़ा पीने का जो हम लोगों का पहले
0: चलन जो था,
1: वो उसको अभी भी हमें लगाना अपनाना चाहिए। कहीं से भी आए तो हाथ धोए बार बार, और अगर उस तरह की कुछ दिक्कत है तो मास्क का प्रयोग करें, जो हम लोग कोरोना के दौरान बहुत अच्छी तरह से सीख भी चुके हैं, है ना।
0: क्योंकि बहनों, सुरक्षा जो है ना, वो हमारे अपने हाथों में होती है। हम जितनी सावधानी से रहेंगे, साफ सफाई के साथ रहेंगे, उतना ही अपने स्वास्थ्य का भी हम ख्याल रख पाएंगे। तो हमें लगता है कि अगर हम छोटी छोटी बातों को, खासकर बारिश के मौसम में, जैसा कि राखी ने कहा, हालांकि राखी की तबीयत खुद मुझे थोड़ी सी लग रहा है कि वायरल तुम्हें भी हो रखा है राखी, तो हमें लगता है कि बहने आप इससे बचे और अपना और अपने परिवार का खास ध्यान रखें।
1: हाँ, बाहर का जो ठेले खोमचे पे लगी हुई चीजें आकर्षित करती है हमें बहुत जोर बहनों, लेकिन अभी उसे बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि अभी संक्रमण का खतरा ज्यादा है, पेट की बीमारियां भी हो सकती हैं, और चाट फुचका थोड़ा सा भी खाना कम करना चाहिए, हमें घर में बनाकर खाए, है ना।
0: हाँ बिल्कुल राखी, तो अपने कार्यक्रम के माध्यम से तो हम बहनों को बहुत तरह की जानकारी देते रहते हैं, लेकिन बहनों को अब बताना पड़ेगा कि समय जो है अब हो चला है बहनों से विदा लेने का, क्योंकि हमारे स्टूडियो के घड़ी में अब समय हो चला है कि अब हम बहनों को अगले कार्यक्रम के बारे में हम उन्हें बताएंगे। तो बहनों, आपको चलते चलते यह बता दें कि आज के हमारे कार्यक्रम की प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की थी।
1: इसी के साथ अपने सखी राखी और लता को दीजिए विदा।
0: नमस्कार। गृहलक्ष्मी अभी आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में झुक गया आसमान फिल्म का ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: ಸ್ವಯಂ ಈ ಕಟ್ಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का फिल्म संगीत में. अगला गीत आइए अब सुनते हैं खानदान फिल्म से. आवाज है लता मंगेशकर की, शब्द रचना नक्श लालपुरी की और संगीत है खयाम का.

अगला गीत आइए वो सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में। गुलजार ने इस गीत को लिखा है, आर डी बर्मन ने सुरबत किया है और फिल्म का नाम है अंगूर।

फकीरा जी हाँ, ये सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है और आवाज़ है लता मंगेशकर की।

मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने। आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म है अनामिका।

कार्यक्रम का आखिरी गीत, आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म है जब जब फूल खिले। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से सजा है कल्याण जी आनंद जी ने।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, 1 बजने को है। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मार्गदर्शक उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक

0: संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्किन के साथ भी बातचीत करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो कल से शुरू हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडुमेगवो ओजुखो और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सीतारामन ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों और व्यापार तथा निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज सुबह ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने ये बात कही।
1: For BRICS particularly, higher economic activity.
2: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता
1: and transparent trade and investment.
0: इस अवसर पर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपनी आर्थिक शक्ति को लोगों के लिए रोजगार, संपदा और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
3: ब्रिक्स संगठन आज वैश्विक व्यापार के लगभग एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में निर्मित अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भारत का निर्यात सर्वाधिक है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है। हम ब्रिक्स को इन और अन्य उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देखते हैं, जिन्हें भारत एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में दुनिया तक ले जाना चाहता है।
0: प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी या अनियमित लोन के कथित मामलों की जांच के सिलसिले में कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद में तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ओडिशा के एआरएसएस ग्रुप के आयोजक, निदेशक, परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, लेकिन भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं वर्षगांठ पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 384 अंक गिरकर 74,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has said leaders from around the world are gathering in New Delhi for the 18th BRICS summit beginning tomorrow. In a social media post today, Mr. Modi expressed confidence that the conference will witness positive and meaningful discussions on various issues with the welfare of the world as the guiding objective. The two-day summit, which will be held at Bharat Mandapam, will bring together 11 major emerging and developing economies. World leaders, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Iran President Masoud Pezeshkian, and Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, among others, will participate in the summit. Ahead of the BRICS summit, Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin in New Delhi this afternoon. The two leaders are expected to discuss a range of issues of mutual interest. Prime Minister Modi will hold talks with Iranian President Masoud Pezeshkian this evening. The meeting assumes significance in view of the prevailing situation in West Asia. Prime Minister Modi is also scheduled to meet United Nations Secretary General Antonio Guterres during his engagements in the national capital. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said resilience has become central to every nation's economic strategy, along with the need to foster and promote sustainability through deeper cooperation and stronger partnerships. Addressing the BRICS Business Forum in New Delhi this morning, Dr. Jaishankar said the summit is taking place at a time when the global political and economic order is undergoing significant changes.
1: Today's forum brings together a much wider set of enterprises and sectors and provides a space to examine not only commercial opportunities but also the conditions that enable them. This wider canvas is reflected in the forum's agenda. Supply chain connectivity and trade facilitation have emerged to be crucial, but so do building robust services, agriculture and agri-technology, digital delivery, MSMEs, startups and women-led enterprises.
4: Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal in his address called upon BRICS nations to work together to translate their economic strengths into jobs, wealth and prosperity for their people.
5: BRICS today represents almost one-fourth of global trade and India is an important pillar of the intra-BRICS trade. Engineering goods and electronics account for the largest segment of India's manufactured exports. India is also known as the pharmacy of the world. We see BRICS as an important market for these and other products that India seeks to take to the world as a trusted partner.
4: Prime Minister Narendra Modi today said while the threat of terrorism continues to evolve, India's resolve and opposition to terrorism in all its forms and manifestations remain unwavering. On the 25th anniversary of the horrific 9/11 terror attacks in the US, Mr. Modi in a social media post said terrorism has claimed countless lives around the world. He said as a victim of cross-border terrorism, India has been at the forefront of the fight against terrorism for several decades. Mr. Modi said India stands in solidarity with all efforts to combat the scourge of terrorism. The BJP today announced Devashish Sharma as its candidate for the by-election to the Nagaon Lok Sabha seat in Assam. His candidature was approved by the party's Central Election Committee. Polling will be held on the 6th of October, while counting of votes will take place on the 9th of October. Besides the Nagaon Lok Sabha by-election, five assembly seats will also go to polls on the 6th of October. India has crossed the significant milestone of 80 lakh human papillomavirus HPV vaccinations, marking another major step towards strengthening preventive health care and protecting against HPV infection and HPV-associated cancers. The Ministry of Health and Family Welfare said every vaccination brings India closer to a healthier and cancer-free future for its daughters. In the Junior Asia Cup hockey, the Indian men's team will take on Malaysia in the semi-final at Mo Chi in China this afternoon at 2:15 p.m. IST. And with that, we end this news bulletin.
0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार.

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड हाई कोर्ट का निर्देश, 6 महीने के भीतर दोबारा कराई जाए जेट परीक्षा। जेपीएससी में अध्यक्ष सदस्यों के खाली पद भरने के लिए दिया 2 महीने का समय। जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो को प्रदान किया गया संसद रत्न पुरस्कार। लगातार 5वीं बार ये सम्मान पाने वाले देश के इकलौते सांसद बने। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने ओमान के साथ कैंसर तकनीक साझा करने के लिए टाइप की घोषणा की। जनवरी में रांची में होगा हेल्थ टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक। राज्य में जल्द शुरू होगी महिला किसान खुशहाली योजना, 1 एकड़ का समेकित मॉडल तैयार। और रांची की 3 बेटियां राखी, नैन्सी और आयुषी झारखंड अंडर 16 फुटबॉल टीम में शामिल। आज आंध्र प्रदेश में बिहार के खिलाफ खेलेंगी मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड हाई कोर्ट ने उच्च शिक्षा और प्रशासनिक नियुक्तियों को लेकर 2 बेहद महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं। मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक की खंडपीठ ने झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेट को 6 महीने के भीतर दोबारा आयोजित कर परिणाम घोषित करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को जेपीएससी में अध्यक्ष और सदस्यों के खाली पदों को 2 महीने में भरने का सख्त निर्देश दिया, जिसकी अनुपालन रिपोर्ट 18 नवम्बर तक सौंपनी है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेएसएससी सीजीएल नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी है। कार्मिक विभाग ने पत्र जारी कर सभी विभागों और जिलों को प्रभावित कर्मचारियों को पदों पर बनाए रखने और काम लेने का निर्देश दिया है। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने संसदीय इतिहास में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। उन्हें नई दिल्ली में लगातार 5वीं बार प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो देश के इकलौते ऐसे जनप्रतिनिधि बन गए हैं जिन्हें लगातार 5वीं बार संसद रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक भव्य समारोह में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने उन्हें इस सम्मान से नवाजा। सांसद श्री महतो ने इस ऐतिहासिक गौरव को अपनी व्यक्तिगत सफलता न मानकर जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि सदन में जनता की आवाज को पूरी ईमानदारी से उठाना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। आकाशवाणी समाचार के लिए जमशेदपुर से मैं कुमार कुणाल।
0: राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने ओमान के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में जल्द टाई अप करने की घोषणा की है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के बाद उन्होंने बताया कि ओमान की आधुनिक कैंसर तकनीक झारखंड लाई जाएगी, साथ ही सरकारी अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी और एआई बढ़ाने के लिए जनवरी में हेल्थ कॉन्क्लेव आयोजित होगा। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने सोशल मीडिया पर देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लोगों से इस उत्सव के दौरान वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने की अपील की है।
2: गणपति आने से सुख शांति और समृद्धि, हर जगह उत्साह होता है, गौरव होता है। मूर्तिकार लगातार गणेश भगवान की मूर्ति पे अंतिम रूप दे रहे, देश ऐसे बढ़ता रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने 25 साल अपनी सेवा मुख्यमंत्री जी के प्रधान और विकसित भारत उनका संकल्प है, वह संकल्प पूरा हो, गणपति उस संकल्प को पूरा करें।
0: राज्य सरकार जल्द ही महिला किसान खुशहाली योजना शुरू कर रही है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस फ्लैगशिप योजना की रूपरेखा तय की गई। इसके तहत 1 एकड़ भूमि को आधार बनाकर समेकित कृषि प्रणाली विकसित की जाएगी, ताकि महिला किसानों को साल भर खेती, पशुपालन और मत्स्य पालन से आय मिल सके। CMPDIL ने राज्य के युवाओं को रोजगार परक बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए JMTIRTC के साथ समझौता किया है। इसके तहत रांची, रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद और लातेहार के 100 वंचित तथा बेरोजगार युवाओं को टूल एंड डाई मेकर तथा सोलर पैनल मेंटेनेंस का जूनियर टेक्नीशियन स्तर का आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना में SC ST दिव्यांग और कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भूदान आंदोलन के प्रणेता भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे की जयंती पर आज हजारीबाग स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय में विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कुलपति प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा सहित शिक्षकों और छात्रों ने उनकी आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कुलपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आचार्य भावे के सिद्धांतों पर ही आधारित थे।
3: विनोबा के विचार, गांधी के विचार, शाश्वत विचार वो हमेशा हर युग में और खास करके शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान नहीं होना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गांधी और विनोबा के विचारों पर ही आधारित और हमारा लगातार प्रयास है। हमने इस साल हम अब स्नातकोत्तर के कार्यक्रमों में तो सुधारने जा रहे हैं या बदलने जा रहे हैं, हाथ से काम करने की कला, केवल किताबी ज्ञान नहीं तो ज्ञान भी होगा और हुनर भी होगा।
0: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने UCIL की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। जादूगोड़ा के मेचुआ और इचड़ा गांवों के दौरे के बाद उन्होंने ग्रामीणों के पेयजल, रोजगार और मुआवजे की समस्याएं सुनी। उन्होंने प्रबंधन को लंबित मामलों का निष्पादन कर 15 दिनों में अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। गोड्डा जिले में बिजली बिल में भारी गड़बड़ी को लेकर उपभोक्ताओं में आक्रोश है। 400 से 500 रुपए सामान्य बिल वाले उपभोक्ताओं को 10,000 से 25,000 रुपए तक का बिल थमा दिया गया है। आक्रोशित लोगों ने बिजली कार्यालय का घेराव कर स्मार्ट मीटर व्यवस्था का विरोध किया। SDO ने गड़बड़ी मानते हुए बिल सुधार का आश्वासन दिया है।
4: बिल जमे टेक्निकल इश्यू के चलते डाटा जो है गलत हो गया है, जो डाटा है वो सुधारा जा रहा है, प्रोसेस में लगे हुए हैं। वो टेक्निकल इश्यू जो इंट्री करते हैं डाटा उसी के साथ प्रॉब्लम, स्मार्ट मीटर फास्ट चल रहा है तो ऐसा कोई बात नहीं है, मीटर सही है।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को 27 सितंबर को जमशेदपुर के गोपाल मैदान में आयोजित करम महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। कुड़मी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र महतो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने लोक भवन में राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें औपचारिक आमंत्रण पत्र सौंपा। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 332 अंक गिरकर 74,571 पर, जबकि निफ्टी 126 अंक गिरकर 23,332 पर रहा। इधर राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,43,800 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,40,000 रुपये प्रति किलो है। और रांची के कांके स्थित स्टार वॉरियर्स फुटबॉल क्लब की तीन खिलाड़ियों राखी कुमारी, नैन्सी मुंडा और आयुषी कुमारी का चयन झारखंड अंडर-16 टीम में हुआ है। खेतों और मैदानों में अभ्यास कर खेल निखारने वाली ये तीनों बेटियां आज आंध्र प्रदेश के बिहार के खिलाफ होने वाले मुकाबले में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड हाई कोर्ट का निर्देश, 6 महीने के भीतर दोबारा कराई जाए जेट परीक्षा। JPSC में अध्यक्ष सदस्यों के खाली पद भरने के लिए दिया 2 महीने का समय। जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो को प्रदान किया गया संसद रत्न पुरस्कार। लगातार 5वीं बार ये सम्मान पाने वाले देश के इकलौते सांसद बने। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने ओमान के साथ कैंसर तकनीक साझा करने के लिए टाई अप की घोषणा की। जनवरी में रांची में होगा हेल्थ टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक। राज्य में जल्द शुरू होगी महिला किसान खुशहाली योजना, 1 एकड़ का समेकित मॉडल तैयार। और रांची की तीन बेटियां राखी, नैन्सी और आयुषी झारखंड अंडर-16 फुटबॉल टीम में शामिल। आज आंध्र प्रदेश में बिहार के खिलाफ खेलेंगी मुकाबला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं अनुरंजनी के अंतर्गत उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम।

Bobo. Yeah.

ईश्वरी देवी, ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत में भूपेंद्र और मिताली की आवाज में चंद गजलें। पहली गजल सुनते हैं भूपेंद्र सिंह की आवाज में।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की गाई चंद गजलें। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 2 बजने को है, थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार प्रसारित होंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आएंगी। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित विश्व के कई बड़े नेता भाग लेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी इसमें शामिल होंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरू वीरा करेंगे। सऊदी अरब के विदेश मंत्री युवराज फैसल बिन फरहान अल सऊद भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी भी देखेंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन से भी बातचीत करेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया।
3: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध है। भारत युगांडा संबंधों पर मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा इतिहास पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध है और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। इस बीच नाइजीरिया की विदेश मंत्री बियांका ओडुमेगवू ओजुकवू और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबिटकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सीतारामन ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों और व्यापार तथा निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले ब्राजील के विदेश मंत्री माउरू वेइरा से का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इस दौरान व्यापार और निवेश, रक्षा, ऊर्जा, कृषि और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श हुआ। डॉ. जयशंकर ने उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबिटकिन से भी मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच व्यापार, संपर्क और संस्कृति सहित द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर सार्थक बातचीत हुई। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने ये बात कही।
5: For BRICS particularly, higher economic activity.
0: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता
5: and transparent trade and investment.
1: डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में

0: अपनी आर्थिक शक्ति को लोगों के लिए रोजगार, संपदा और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
1: ब्रिक्स संगठन आज वैश्विक व्यापार के लगभग एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में निर्मित अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भारत का निर्यात सर्वाधिक है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है। हम ब्रिक्स को इन और अन्य उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देखते हैं, जिन्हें भारत एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में दुनिया तक ले जाना चाहता है।
2: टेक टू द वर्ल्ड एज अ ट्रस्टेड पार्टनर।
0: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने कहा कि मंच की सफलता का आकलन अर्थव्यवस्थाओं के आकार से नहीं बल्कि ठोस परिणामों से होना चाहिए। ब्रिक्स संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ी शक्ति के रूप में लगातार उभर रहा है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स समूह में शामिल देश दुनिया की 49% से अधिक आबादी, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के करीब 40% और लगभग 26% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स देश एक दूसरे को लगभग 1,10,000 करोड़ डॉलर का सामान निर्यात करते हैं। भारत का ब्रिक्स देशों के साथ कुल वस्तु व्यापार 2020-21 में 203.1 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 417.5 अरब डॉलर हो गया है। अनुपम के साथ अक्षित कुमार वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं सहित एकतरफा व्यापार और वित्तीय उपाय लागू किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार प्रभावित होता है और ये विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप नहीं है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में मुंबई में कल ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ये बात कही गई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। दिल्ली मेट्रो ने आज बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, लेकिन भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं बरसी पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद ने दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जान ली है। उन्होंने कहा कि सीमापार आतंकवाद से प्रभावित भारत दशकों से इसके खिलाफ लड़ाई में आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सभी प्रयासों में साथ खड़ा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज मुंबई में फास्टैग पोर्टेबिलिटी के लिए वन टैग सुविधा का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत वाहन मालिक अपने मौजूदा फास्टैग को राजमार्ग यात्रा ऐप द्वारा नए बैंक खाते से जोड़ सकते हैं। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को 10 सेकंड से कम करना है। प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी या अनियमित ऋण के कथित मामलों की जांच के सिलसिले में कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ओडिशा के ARSS ग्रुप के आयोजक, निदेशक, परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 14 जिलों में 44 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य लगातार जारी है।
4: बाढ़ प्रभावित इलाकों में 1046 सामुदायिक रसोई केंद्र चलाए जा रहे हैं। 1942 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं 812 चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी आई है। हालांकि अब भी 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर पटना, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में, जबकि कोसी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा और कुर्सेला में खतरे के निशान से ऊपर है। पटना के श्रीपाल पुर में पुनपुन नदी का जलस्तर हर घंटे करीब 2 सेंटीमीटर घट रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरला, माहे

0: मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गुजरात में भी अगले दो दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखें अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। अमरीकी ओपन टेनिस में दूसरे महिला सिंगल्स के दूसरे सेमीफाइनल में एलेना रायबकीना ने कोको गॉफ को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब खिताबी मुकाबले में कजाकिस्तान की रायबकीना का मुकाबला मौजूदा चैंपियन और आर्यना सबालेंका से होगा। इससे पहले बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने पहले सेमीफाइनल में अमरीका की जेसिका पेगुला को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष टीम और मलेशिया का मैच जारी है। दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया का सामना पाकिस्तान से होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज चार महीने के उच्चतम स्तर $108.77 प्रति बैरल पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 363 अंक गिरकर 74,540 जबकि निफ्टी 163 अंक गिरकर 23,315 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती।

जय भारती कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है और साथ ही साथ स्वागत है हमारे फौजी भाइयों का भी। यह इस कार्यक्रम में हम अपने फौजी भाइयों के लिए लेकर आते हैं फिल्मी नगमे, जो कि हमारे फौजी भाइयों के साथ साथ हम लोगों को भी, हमारे युवाओं को भी जोश से भर देते हैं। भारतीय सेना केवल वीरता का वर्णन नहीं करती, बल्कि उन सैनिकों के अनुशासन, त्याग और अटूट संकल्प को भी शब्द देती है जो हर मौसम में सीमा की रक्षा करते हैं। और हमारे जो भारतीय सेना है वो युवाओं के लिए एक प्रोत्साहन भी होती है, साहस भी उन्हें दिखाती है और उनके जीवन में उन्हें अनुशासित रहने में भी मदद करती है।

हमारे देश के फौजी और भारतीय सेना साहस, अनुशासन, त्याग और देशभक्ति की सबसे मजबूत पहचान है। सीमा पर तैनात जवान कठिन मौसम और परिस्थितियों में भी देश की रक्षा करने से नहीं चूकते। उनके साहस के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, बस हम यही कह सकते हैं कि वो हैं भारत माँ के वीर सपूत। न सताती उन्हें कोई छांव और धूप, हर राह पर आगे चलते वो दिखाते हैं कितने अलग रूप।

0: श्रोताओं, गीत हम आपको और भी सुनवाएंगे, लेकिन अभी रुकते हैं एक अंतराल के लिए।
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: கடற்படை பாரதிய சேனா.
1: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़. सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल.
3: अंतराल के बाद फिर से स्वागत है आप सबका कार्यक्रम जय भारती में. जी हाँ, हमारी जो भारतीय सेना है उन युवाओं के भीतर भी साहस जगाती है जो कठिन परिश्रम, अनुशासन और सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती है, जो असफलता से उठने, लक्ष्य पर टिके रहने और डर को चुनौती देने की प्रेरणा देती है. सेना का जज्बा बताता है कि मजबूत इरादे हों तो मुश्किल रास्ते भी मंजिल तक अवश्य पहुँचाते हैं. हम फौजी हैं, झुकना हमें आता नहीं, वतन के आगे कोई रिश्ता निभाता नहीं, गोली चलती है तो दिल नहीं डरता, फौजी हूँ मैं हालात से नहीं डरता, वर्दी की शान पर जान लुटा देंगे, दुश्मन की हर चाल को मिटा देंगे.

हमारे फौजी भाई अपने निजी सुख से ऊपर देश की सुरक्षा को रखते हैं और उनकी पहचान केवल हथियार या वर्दी नहीं बल्कि जिम्मेदारी, धैर्य और साथियों पर भरोसा भी है। और जब वो अपने साथियों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर चलते हैं तो वो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते हैं।

0: इसी गीत के साथ ही फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। 2:55 हुए हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दूसरे राज्यों में जन्मे मतदाता भी अपने गृह राज्य से जारी मान्य दस्तावेज जमा कर सकते हैं। इसके लिए दस्तावेज का झारखंड से ही निर्गत होना जरूरी नहीं है। वंशावली, खतियान और शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे ECI द्वारा मान्य दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि नोटिस मिलने पर सुनवाई में उपस्थित होकर दस्तावेज प्रस्तुत करें ताकि कोई पात्र मतदाता वंचित न रहे। यूनाइटेड फोरम बैंक ऑफ यूनियंस के आह्वान पर आज बैंकों में एक दिवसीय हड़ताल रही। बैंक कर्मियों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर सप्ताह में 5 कार्य दिवस लागू करने और PL संबंधी विसंगतियां दूर करने की मांग की। पाकुड़ जिले में यूनियन के स्टाफ एसोसिएशन के क्षेत्रीय सचिव अवनी कांत ने कहा कि मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में 2 दिवसीय हड़ताल की जाएगी।
1: PLI में जो डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, स्केल 4 और एभव को ज्यादा मिल रहा है और स्केल 4 और नीचे को कम मिल रहा है। दूसरा हम लोग का मांग है 5-day बैंकिंग। आगे हम लोग 2 दिवसीय स्ट्राइक करने वाले हैं, फिर इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाएंगे। हम लोग चाहेंगे कि गवर्नमेंट हम लोग के मांग को स्वीकार कर ले ताकि किसी को कोई दिक्कत और परेशानी का सामना भविष्य में न करना पड़े।
0: भारत ने 80 लाख ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण का अहम पड़ाव पार कर लिया है। यह रोकथाम वाली स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने और HPV संक्रमण व उससे जुड़े कैंसर से बचाव की दिशा में एक और बड़ा कदम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि हर टीका भारत को अपनी बेटियों के लिए एक स्वास्थ्य और कैंसर मुक्त बनाता है। राजधानी रांची में करमटोली, अरगोड़ा और हरमू फ्लाईओवर के टेंडर फाइनल हो गए हैं। स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड की ओर से अक्टूबर में दुर्गा पूजा के बाद इनका निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। इन तीनों महत्वपूर्ण फ्लाईओवर के बनने से शहरवासियों को रोजाना लगने वाले भीषण ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने दिवंगत नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार की पत्नी श्वेता शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान DGP ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सुदिव्य कुमार का निधन राज्य के लिए बड़ी क्षति है।
2: ऑब्वियसली इतना बड़ा लॉस हुआ है, जिससे के परिवार में चले जा रहा है, तो इसको हम लोग का फर्ज है कि हम लोग का प्लान आओ और दैट वी आर देयर विद यू, ये तो हम आपको बताना है।
0: देवघर जिले में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। गोड्डा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि देवघर में एक इंटीग्रेटेड फैसिलिटी, 2 TA बटालियन और 1 सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए कुल 263 एकड़ भूमि की आवश्यकता का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने कहा कि इन बड़े रक्षा प्रोजेक्ट्स के साकार होने से क्षेत्र में सुरक्षा सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ रोजगार और स्थानीय व्यवस्था को एक नई गति मिलेगी। JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ भाजपा के 4 दिवसीय राज्यव्यापी आंदोलन का आज आखिरी दिन है। आज गोड्डा, खूंटी सहित 6 जिलों में DC/SP कार्यालयों का घेराव किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी गोड्डा में, जबकि प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू खूंटी में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। भाजपा CBI जांच और छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग पर अड़ी है। रांची रेल मंडल के कोच कुलदीप शर्मा को भारतीय रेलवे की सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। वे दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल से इस शीर्ष पद पर पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी हैं। कुलदीप शर्मा 15 सितंबर से 11 अक्टूबर 2026 तक खुर्दा रोड में आयोजित होने वाले कोचिंग कैंप में टीम का मार्गदर्शन करेंगे। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर DRM करुणानिधि सिंह ने उन्हें बधाई दी है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार। नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, बेबी आराध्या साहू जी ने सुविचार भेजा है। वो लिखते हैं, दांत चाहे कितनी भी बार जीभ को काटें, फिर भी वे दोनों साथ रहते हैं और साथ काम करते हैं। यही क्षमाशीलता और भाईचारे की भावना है। धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन। ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज ढाक से। अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेन्द्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी और पोटियागला दुर्ग से संजय कुमार साहू जी। सभी श्रोताओं को आभार खूबसूरत संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, प्रेरक प्रसंगों के सप्ताह के अंतिम दिन हम लेकर आ रहे हैं एक और अद्भुत प्रेरक प्रसंग। आज हम जानेंगे एक ऐसे महान विद्वान और शिक्षाविद के बारे में जिसने गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। इस महान समाज सुधारक और विद्वान को इतिहास ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से बड़े सम्मान के साथ याद करता है। पहले जानते हैं कैसा था उनका बचपन। जरा सोचिए श्रोताओ, एक बालक पढ़ना चाहता है लेकिन परिवार की आर्थिक

0: स्थिति बड़ी दयनीय है। उसके घर में न पर्याप्त रोशनी है, न पढ़ने की सुविधाएं हैं और न ही कोई आरामदायक वातावरण। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि वो पढ़ते कैसे थे। कहा जाता है कि वो कई बार सड़क पर लगे गैस के लैंप की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करते थे, जो आज हम सोच भी नहीं सकते कि कोई विद्यार्थी सड़क की रोशनी में बैठकर घंटों पढ़ाई कर लेगा। श्रोताओं, उस युवक के मन में एक सपना था, ज्ञान प्राप्त करना। उनके पिता ठाकुरदास बंदोपाध्याय बहुत कम आय पर काम करते थे। परिवार के पास बहुत अधिक साधन नहीं थे। ईश्वर चंद्र को बचपन से ही समझ में आ गया था कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी परिस्थितियों से शिकायत नहीं बल्कि संघर्ष करना होगा। उनके सामने दो रास्ते थे, या तो परिस्थितियों को दोष दें या मेहनत करें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। वे पढ़ते रहे, संस्कृत का अध्ययन करते रहे, लगातार मेहनत की। उनकी प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि आगे चलकर उन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली, अर्थात विद्या का सागर। ये जानना रोचक होगा कि उनका मूल नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था, लेकिन बाद में सम्मान के साथ उन्हें विद्यासागर कहा जाने लगा। एक सड़क के लैंप के नीचे पढ़ने वाला बालक विद्यासागर बन गया। और सबसे अधिक प्रेरित करने वाली बात, उन्होंने अपनी शिक्षा को केवल अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अपने ज्ञान का इस्तेमाल उन्होंने समाज सुधार और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किया। आइए श्रोताओं, जरा विचार करें, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या हो सकती है? मेरी नज़र में तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, सुविधाओं की कमी को बहाना मत बनाइए। दूसरी, लगातार मेहनत कीजिए। और तीसरी, सफल होने के बाद दूसरों को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। देखिए, आज हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, ऑनलाइन पुस्तकालय हैं, यूट्यूब पर हजारों शैक्षिक वीडियो हैं और पढ़ने के लिए अनेक साधन हैं। मैं तो कहूंगी कि आज हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं उतनी पहले शायद कभी नहीं थी। फिर भी हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरे पास वातावरण नहीं है, इत्यादि इत्यादि। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का व्यक्तित्व हमें प्रेरणा देता है कि कभी कभी साधन कम हो सकते हैं लेकिन संकल्प बड़ा हो सकता है। तो श्रोताओ, हमारा आज का प्रेरक प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से, प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिता का नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिता का नाम क्या था? आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को लगातार फॉलो कीजिए। NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है शो ऑफ क्लाउड्स। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची के बारे में बताया गया है कि जब वो आकाश में बादलों को देखती है तो उनमें उसे सुंदर सुंदर छवियां नजर आती हैं। कार्यक्रम प्रोत्साहित करता है कि बच्चे कल्पनाशील बने।
1: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
2: आई एम फाइन।
3: I am good, sir.
1: Fine, good. Okay, so tell me, what do you like most?
2: I like playing, sir.
4: I like painting, sir.
1: Very good. Anyone else?
5: Sir, I like singing.
6: I like playing with my pets.
1: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
7: Yes, sir.
8: We like.
1: Lovely butterflies?
7: Yes, sir.
1: And lovely, colorful, chirping birds.
7: Yes, sir. We like it.
1: That's very nice, children.
9: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
1: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
7: Yes, sir.
1: The rivers, the mountains, and the green trees.
7: Yes, sir.
1: Okay. So let me tell you the story of a sweet child like you.
7: Like us?
1: Would you like to listen?
7: Yes, yes, sir.
9: We love to listen the story.
1: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
7: Okay, sir.
1: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me, okay?
7: Okay, sir. We love to recite it.
1: As I lie on my back.
7: As I lie on my back.
1: Looking up at the sky.
7: Looking up at the sky.
1: I see a big white bear.
7: I see a big white bear.
1: Looking down at me.
7: Looking down at me.
1: As I lie on my back.
7: As I lie on my back.
1: Looking up at the sky.
7: Looking up at the sky.
1: I see a ship sailing.
7: I see a ship sailing.
1: On a white sea.
7: On a white sea.
1: As I lie on my back.
7: As I lie on my back.
1: Looking up at the sky.
7: Looking up.
1: I see an elephant.
7: I see an elephant.
1: Waving its trunk at me.
7: Waving its trunk at me.
1: As I lie on my back.
7: As I lie on my back.
1: Looking up at the sky.
7: Looking up at the sky.
1: Oh, it's fun. It's fun to me.
7: Oh, it's fun. It's fun to me.
1: To see whatever I want to see. So, children, you have recited so well. Have you ever noticed the clouds?
7: Yes, sir. They are beautiful.
8: They are very big.
10: They change the shapes.
1: Wonderful. You have very rightly said. So now listen to the same poem in a song. Would you like to listen to this song?
7: Yes, sir.
1: So, kids, here comes the song. As I lie. What?

0: friends. You were just listening to this program. Program Coordinator, Professor Rajendra Pal. Technical Coordinator, Butty Langlingdo. Child Singer, Angel. Child Artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound Recordist, Mayank Kumar. Assistance in Production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIETNCERT, New Delhi, India.
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
2: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
3: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
1: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम होमी व्यारावाला। इस कार्यक्रम में भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला के जीवन और एक सफल महिला पत्रकार के रूप में उनकी भूमिका और योगदान के बारे में बताया गया है।

0: आज तो यहाँ बहुत भीड़ जमा है।
1: मैं तो इसे अवभागी कहूँगा कि आज हम हिज होलीनेस दलाई लामा की साक्षात दर्शन करेंगे।
2: सही कहा भाई, मेरी भी बड़ी इच्छा थी उन्हें देखने की। हाँ।
1: अरे देखो देखो, उनका कारवां बिल्कुल निकट आ पहुंचा।
2: ओफो, इस तरफ तो मीडिया वालों की बड़ी भीड़ है।
1: अरे कोई बात नहीं, आओ ना, कोशिश करते हैं। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, पत्रकारों की भीड़ में साड़ी पहने हुए एक लड़की। अब कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं?
2: हाँ भाई, मैं भी ऐसे ही देख रहा हूँ भाई, ये तो बड़ी अजीब बात है।
1: हाँ,
2: और देखो देखो, उसने कैमरा भी टांग रखा है।
1: अरे हाँ,
2: किसी औरत का भीड़ भाड़ में यहाँ वहाँ घूमना,
1: अरे कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। अरे भाई, औरत तो घर की शोभा होती है, शोभा। पता नहीं कैसा समय आ गया है।
2: मालूम नहीं,
1: ये दिन भी देखना था। चलो चलते। अरे चलो चलो, नजदीक आ गए।
2: आगे आगे आ जाओ, आ जाओ, चलो।
3: साथियों, ये समय था 1959 का, जब दलाई लामा पहली बार भारत की यात्रा पर सिक्किम आए थे। उनके अभिनंदन में भारी भीड़ जमा थी।
4: उसी भीड़ में शामिल थी एक लड़की जो हाथ में एक भारी कैमरा लिए दलाई लामा की फोटो खींच रही थी। कैमरे का वजन लगभग 9 किलो था, जिसके बाहरी हिस्से में लकड़ी का कवर था। इतना ही नहीं, उस लड़की ने अपने कंधे पर एक कैमरे का फ्लैश भी टांग रखा था। ये लड़की कोई और नहीं, होमी व्यारावाला थी, जिसे दिल्ली से विशेष रूप से इस मौके की फोटो खींचने के लिए बुलाया गया था।
3: 21वीं सदी में शायद महिलाओं को कैमरे के साथ देखना बेहद आम बात लगे, लेकिन आज से 70-80 साल पहले ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसी बात को लेकर उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था।
5: 10 दिनों लोग बहुत रूढ़िवादी हुआ करते थे। वो नहीं चाहते थे कि महिलाएं इधर उधर घूमें। जब उन्होंने मुझे साड़ी में कैमरे के साथ घूमते हुए देखा तो उन्हें बहुत ही अटपटा सा लगा, और उन्हें शुरू शुरू में तो ऐसा भी लगा कि मैं कैमरा लेकर सिर्फ उन्हें बेवकूफ बना रही हूं।
4: होमी व्यारावाला का जन्म गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में दिसंबर 1913 को हुआ था। उनका परिवार गुजरात में सूरत के निकट व्यारा में रहा करता था, संभवतः इसलिए उन्हें व्यारावाला के नाम से जाना गया।
3: उनके पिता पारसी उर्दू थिएटर के मशहूर अभिनेता थे, इसलिए घर पर माहौल भी थोड़ा खुलेपन का था। परिवार स्वतंत्र विचारों वाला था। रंगमंच पर कार्य करने के कारण ये व्यारावाला परिवार की पहुंच से बहुत दूर नहीं था।
6: आज कितना मुबारक दिन है, हम सब की दिली ख्वाहिश पूरी होने जाने।
4: समय बदला और उनका परिवार गुजरात से बंबई यानी मुंबई आ गया। उनकी स्कूली शिक्षा बंबई में हुई। पढ़ाई में वो बहुत अच्छी थी, लेकिन शौकिया फोटोग्राफी भी करती थी।
3: लेकिन फोटोग्राफर बनना उनका लक्ष्य नहीं था, वो डॉक्टर बनना चाहती थी। एक रात की बात है,
7: होमी। ओ होमी।
8: जी माँ, आती हूँ।
7: अरे बेटा, अभी तक तुम सोई नहीं,
8: क्या बात है माँ?
7: अरे कोई बात नहीं बेटी, रात का 1 बज रहा है, मैंने तुम्हारे कमरे में बत्ती जलती हुई देखी तो सोचा थोड़ा सा समय तुम्हारे साथ बिता लूं।
8: जी माँ, बिल्कुल।
7: अच्छा बेटी, इन दिनों देख रही हो कि तुम काफी खोई खोई और चिंतित रहने लगी हो, सब ठीक तो है ना बेटा?
8: हाँ माँ, सब बिल्कुल ठीक है। स्कूल की पढ़ाई अब पूरी हो गई है ना, आगे भी तो सोचना है कि मुझे भविष्य में क्या करना है, बस यही विचार मन में बार बार आता है।
7: अच्छा, तो ये बात है, भला तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत क्या है? अब तो तुम शादी के लायक हो गई हो, बहुत जल्दी कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारे हाथ पीले कर देंगे हम। और तुम्हारी चिंता, तुम्हारी चिंता तो वो करेगा। हाँ
8: अरे नहीं माँ, अभी नहीं करनी है मुझे शादी, और भला मेरे भविष्य की चिंता कोई और क्यों करेगा।
7: अरे
8: मैं खुद क्यों नहीं कर सकती, और माँ मैं तो डॉक्टर बनूंगी।
7: क्या कहा, डॉक्टर? तो डॉक्टर बनेगी?
8: माँ सुनो तो एक बार मेरी बात।
7: मैंने सब सुन लिया होमी, और मुझे कुछ नहीं सुनना। बात समझ में आई तुम्हें?
8: माँ एक बार बात तो पूरी सुन लो।
7: कुछ नहीं होमी, बस करो।
8: माँ सुनो तो। अरे
4: तो सुना आपने, होमी ने बहुत बाद में दिए गए एक इंटरव्यू में इस घटना का वर्णन करते हुए कहा था,
5: मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मैं फोटोग्राफर बनूंगी। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेरे जीवन में केवल एक यही समय था जब मेरी माँ ने मुझे कुछ करने से मना किया। उन्होंने देर रात की शिफ्ट में डॉक्टरों को देखा था, और वो नहीं चाहती थी कि मैं इस तरह के पेशे में रहूं। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि प्रेस फोटोग्राफी इससे भी बदतर होगी।
3: घर से अनुमति न मिलने के बाद उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने डॉक्टर बनने का अपना इरादा बदल दिया, लेकिन एक बात थी जिस पर वो दृढ़ निश्चय के साथ अडिग रही,
4: और वो बात थी एक नारी होकर अपनी जगह खुद बनाने की, अपना भविष्य स्वयं गढ़ने की, और अपनी उड़ान का आसमान स्वयं तैयार करने की। उन्होंने फैसला किया कि वो फोटोग्राफी को अपना पेशा बनाएंगी। प्रशिक्षण लेने के लिए उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया।
3: कला की पृष्ठभूमि और कैमरे के थोड़े बहुत ज्ञान के कारण जल्दी ही वो एक कुशल फोटोग्राफर बन गई। अब उन्हें साइकिल पर बैठकर पीठ पर कैमरा लादे बंबई की सड़कों पर देखा जा सकता था। इस दौरान उन्होंने बंबई के मेहनतकश मजदूरों, निर्धन वर्ग के बच्चों और स्त्रियों के बहुत सारे चित्र खींचे। इन चित्रों को काफी प्रशंसा भी मिली।
4: एक दिन की बात है, कक्षा समाप्त हुई थी और छात्र घर जाने की तैयारी में थे। होमी भी कक्षा से निकलकर संस्थान के मुख्य गेट की ओर जा रही थी।
8: सर मैं अंदर आ सकती हूँ?
0: अरे होमी, आओ आओ आओ, अंदर आओ अंदर आओ, अब बैठो, यहाँ बैठो।
8: जी जी सर, धन्यवाद।
0: होमी

0: में होमी की ख्याति बढ़ गई। कॉलेज में होमी को छात्र एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। अब उन्हें कई समाचार पत्रों से काम भी मिलने लगा था। कॉलेज में ही उनकी भेंट हुई सहपाठी मानेकशॉ जमशेद जी से, जो एक बेहद होनहार छायाकार थे और स्वतंत्र छायाकार के रूप में भी बॉम्बे के कई समाचार पत्रों के लिए काम करते थे।
1: मानेकशॉ स्वयं उन दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया में फोटो जर्नलिस्ट के रूप में काम करते थे। मानेकशॉ ने उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया। आठ महाविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद 1938 में होमी व्यारावाला ने फोटोग्राफी की दुनिया में एक पेशावर की तरह प्रवेश किया। बतौर फोटो जर्नलिस्ट होमी की पहली तस्वीर दी बॉम्बे क्रॉनिकल में प्रकाशित हुई। इस दौरान उन्हें एक तस्वीर के लिए ₹1 बतौर पारिश्रमिक मिलता था।
0: 1942 में ब्रिटिश सूचना सेवा के लिए फोटोग्राफर के रूप में काम करने के लिए व्यारावाला युगल को दिल्ली आने का निमंत्रण मिला। दिल्ली आते ही होमी के काम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलनी शुरू हो गई।
1: होमी व्यारावाला एक समर्पित और प्रतिभाशाली फोटो पत्रकार थी, जिन्हें अक्सर अपने कैमरे को अपनी पीठ पर बांधे हुए राजधानी दिल्ली में साइकिल चलाते हुए देखा जाता था। दिन की रोशनी के दौरान वो लो एंगल शॉट तथा छवियों के विस्तार के लिए बैक लाइट का उपयोग करती थी, जिससे विषय वस्तु की गहराई और ऊंचाई को दर्शाया जा सके। इन दिनों की कंप्यूटर जनित डिजिटल फोटोग्राफी के हमारे जमाने में ये बातें भले ही बेहद साधारण लगें, लेकिन उन दिनों इन बातों का विशेष महत्व था। उन्हीं के शब्दों में,
2: जब मैं कैमरा टांगकर साइकिल पर निकलती थी तो मुझे देखने के लिए विशेषकर महिलाओं और बच्चियों की भीड़ जमा हो जाया करती थी। उनकी आंखों में एक चमक होती थी, मानो वो मुझ में अपना भविष्य देखने की कोशिश कर रही हों।
0: कोई भी घटना हो, वो मौके पर सबसे पहले पहुंचने वाले पत्रकारों में से एक थी। अब समय आ गया था छायांकन पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महिला के रूप में इतिहास रचने का।
1: वो समय था जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारियां हो रही थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की लहर देश के गांव-गांव तक फैल गई थी। बड़े बड़े जुलूसों में, धरना प्रदर्शनों में, हिंसक आंदोलनों में एक महिला का बतौर फोटो पत्रकार उपस्थित रहना और घटनाओं की तस्वीर खींचना कोई आसान बात नहीं थी।
2: जब भी मैं किसी मौके पर कैमरे के साथ पहुंचती थी, मुझे प्रोत्साहन अक्सर नहीं मिलता था। पुरुष प्रधान पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महिला के लिए अपनी जगह बनाना बहुत कठिन था। कई बार मेरा मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन बात तब बन जाती थी जब मैं अपना परिचय देती थी। लोग मेरे काम के कारण नाम से परिचित थे, नाम बताने पर मुझे सम्मान भी मिलता था।
0: ऐसे समय में होमी व्यारावाला का एक फोटोग्राफर बनना एक बहुत ही बड़ी बात थी। होमी व्यारावाला ने अगस्त 1947 को लाल किले पर पहली बार फहराए गए झंडे, भारत से लॉर्ड माउंटबेटन के डिपार्चर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री की अंतिम यात्रा की भी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। इन तस्वीरों की पूरे विश्व में प्रशंसा हुई और इन्हें बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चरम उत्कर्ष के दिनों उनके द्वारा खींची गई अधिकांश तस्वीरों को दुर्लभतम कृतियों की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा लगता है मानो उनके कैमरे ने इतिहास को सजीव कर दिया है।
1: होमी ने बतौर फोटो जर्नलिस्ट अपने करियर की शुरुआत 1930 में की थी। वो 1970 तक इस क्षेत्र में सक्रिय रहीं। 40 वर्षों के इस सफर के दौरान उन्होंने देश विदेश में खूब नाम कमाया। 1970 में अपने पति की मृत्यु के बाद होमी व्यारावाला ने अपने पेशे से संन्यास ले लिया। होमी की

0: श्रेष्ठ उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 2011 में उन्हें भारत की पहली महिला छाया पत्रकार के रूप में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सन 2012 में 99 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया।
1: गूगल ने उनकी विरासत का सम्मान करते हुए उनके जन्म के 104 साल पूरे होने पर अपने डूडल के साथ उन्हें सम्मानित किया। गूगल ने भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें लेंस के साथ पहली भारतीय महिला यानी फर्स्ट इंडियन लेडी विद द लेंस के रूप में सम्मान दिया।
0: स्त्री अस्मिता के विमर्श पर किसी ज्योतिर्मय प्रेरणा स्तंभ के रूप में अडिग खड़ी भारत की इस पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला को हमारा शत शत नमन।
2: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपके मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम रांची मेलोडीज।
5: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: हमारे भारतीय सेना।
1: रांची मेलोडीज में आइए सुनते हैं सबसे पहला गीत फना फिल्म से। आवाजें हैं सोनू निगम और सुनिधि चौहान की। प्रसून जोशी ने इस गीत को लिखा है, जतिन ललित ने संगीतबद्ध किया है।

pa rin ita ayip sunta is film ka geet. शब्द रचना है स्वानंद किरकिरे की और संगीत है शांतनु मोइत्रा का, आवाज है सुनिधि चौहान की।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम सहिया।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड, स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार हैं।

0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का सहिया रेडियो कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोता भाई बहन को चंपा मुनि का जोहार। जन स्वास्थ्य से जुड़े इस कार्यक्रम में आज हम खास बातचीत करेंगे उस प्रक्रिया के बारे में जिसके आधार पर सहियाओं का चयन किया जाता है। सहियाओं के चयन प्रक्रिया से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग कर रही हैं हमारी पूर्णिमा बहन। तो जोहार पूर्णिमा बहन।
1: मेरा भी जोहार स्वीकार कीजिए चंपा मुनि दीदी। आज के विषय में हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि सहिया बहने लोगों को स्वास्थ्य संबंधित सही सलाह, जरूरत पड़ने पर रोगों के उपचार और स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दिलाने में मददगार बनती है। इसलिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत एक खास प्रक्रिया के तहत सहियाओं का चयन किया जा रहा है ताकि ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी ना हो और ऐसा होने पर लोगों को समय पर उचित सलाह, जांच और उपचार उपलब्ध कराया जा सके।
0: सही बात है बहन। इसके अलावा सहियाओं के चयन के लिए कुछ मापदंड भी अपनाए जाते हैं जैसे कि शिक्षा, आयु, संवाद कौशल एवं अन्य तरह की पात्रता जिनके बारे में श्रोता भाई बहन को जानकारी देना जरूरी है।
1: चंपा मोनी दीदी, हमें लगता है कि अपने श्रोता भाई बहन को इस बारे में और भी अधिक जानकारियों से अवगत कराने के लिए हम लोगों को सहिया कार्यक्रम की राज्य समन्वयक अकय मिंज जी से मिलना चाहिए। उनसे हमारे श्रोतागण बहुत काम की बातें जान पाएंगे।
0: बहुत अच्छा विचार है पूर्णिमा बहन। फिर शुभकामनाएं देर नहीं करेंगे, चलिए अकय मिंज जी से मिल लेते हैं।

0: जोहार अकेय दीदी, बहुत जरूरी काम से आपके पास आए हैं।
1: कहो पूर्णिमा, कैसी हो? तुम्हारे आने की कोई खास वजह जरूर होती है, बताओ मुझसे आज क्या मदद चाहिए?
0: असल में आज हम लोग सहिया रेडियो के श्रोताओं को सहियाओं की चयन प्रक्रिया और उसके मापदंडों के विषय में विस्तृत जानकारी दिलाने के लिए आपके पास आए हैं।
1: ये तो बहुत अच्छा विषय और बहुत अच्छी बात है, पूछो मुझसे क्या जानना चाहती हो।
0: सबसे पहले हमारे श्रोताओं को यह बताएं कि सहियाओं का चयन किस उद्देश्य से तथा किन लोगों के द्वारा किया जाता है?
1: जैसे कि आप जानते हैं कि सहिया हर एक राजस्व ग्राम में या 1000 की जनसंख्या वाले एक ऐसे टोले में जहां पर कि स्वास्थ्य के गतिविधियों के लिए कोई सहयोगी की जरूरत है, ऐसे जगह में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रम के द्वारा सहियाओं का चयन किया जाता है। और ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो स्वास्थ्य विभाग की जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कार्यक्रम है, इसमें जो सहिया है वो स्वास्थ्य विभाग के लिए नहीं परंतु गांव के लोगों के लिए चयनित होती है एक स्वयंसेवी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में। इसलिए सहियाओं का चयन ग्राम सभा के द्वारा, गांव के लोगों के ही द्वारा, गांव और स्वास्थ्य विभाग के बीच में कड़ी बनने के लिए किया जाता है।
0: सहियाओं का चयन कितनी समय सीमा के लिए किया जाता है, इस बारे में भी थोड़ा रोशनी डाले।
1: देखिए, सहिया तो गांव की महिला है और चयन की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि सहिया कम से कम 20 वर्ष की हो या 20 वर्ष से अधिक की हो और सहिया गतिविधियों में विभिन्न कार्यों में उसे कभी घर में, गांव में और गांव से बाहर अस्पतालों में भी जाना पड़ता है। और जैसे उम्र सीमा निर्धारित है कि 60 वर्षों तक सहिया ये कार्य कर सकती है, तो इसलिए सहिया का कार्यकाल अगर हम देखें तो 20 से 60 वर्ष का है और 60 वर्ष होने के बाद में सहिया स्वेच्छा से पदत्याग जब करती है तो उसे 20,000 रुपये का एक पारिश्रमिक राशि दिया जाता है।
0: अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि किसी सहियाओं के चयन में किन योग्यताओं या मापदंडों का विशेष ध्यान रखा जाता है?
1: चूंकि सहिया गांव के लोगों के लिए है, इसलिए सबसे पहला जो मापदंड है वो है कि वह महिला उस गांव की हो। दूसरा जो मापदंड है कि उस गांव की बहू हो अथवा वो ऐसी बेटी हो जो परित्यक्ता हो या जो महिला अनाथ हो या वो विधवा हो, जो कि अपना समय गांव में दे सकती है। चयन में योग्यताएं विशेष इसलिए हैं कि वो पढ़ी लिखी हो और पढ़ी लिखी इतनी हो कि वो 10वां या 12वां क्लास पास हो, जिसको कि फोन का संचालन, चूंकि आज का युग ऐसा है जिसमें सभी चीजें अब हम एंड्रॉयड फोन के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां देते हैं, बहुत सारे प्रतिवेदन रखते हैं, तो इसलिए एंड्रॉयड फोन चलाने वाली वो महिला होनी चाहिए। वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए ताकि वो प्रपत्रों को भर सके, लोगों को जागरूक कर सके। वो मृदुभाषी होनी चाहिए, वो सहृदय होनी चाहिए और जो कि गांव में समय देने वाली महिला हो और जिसको कि सब लोग पसंद करें, ऐसी योग्यताएं जरूरी हैं।
0: अब यह बताएं कि सहियाओं के चयन में किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है और यह कितने चरणों की होती है?
1: सबसे पहले सहिया की आवश्यकता है या नहीं, ये प्रथम चरण है कि जो राज्य से जिलों में डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, जो सहिया की गतिविधियों को पूरे जिले में संचालन करते हैं, उनकी जिम्मेवारी होती है कि प्रत्येक गांवों में सहिया के लिए कहीं रिक्तता है या नहीं, इसकी जानकारी वो सहिया साथी और BTT के माध्यम से लेते हैं और सिविल सर्जन के माध्यम से पत्र राज्य में आता है कि हमारे जिले के इतने गांवों में सहिया कार्य के लिए रिक्तता है और राज्य से फिर उन गांवों के लिए सहिया चयन के लिए एक पत्र जाता है जो सिविल सर्जन के माध्यम से एमओआईसी के पास जाता है और प्रखंड स्वास्थ्य पदाधिकारी जो एमओआईसी हैं वो एक दिन तय करते हैं कि अगर हम रामपुर गांव में सहिया का चयन करना चाह रहे हैं तो रामपुर गांव की ग्राम सभा और वीएच

0: एसएनसी के माध्यम से सहिया का चयन होता है, और सहिया के चयन में या तो वो नॉमिनेशन होता है या वोट के माध्यम से होता है, ये गांव वाले तय करते हैं, ग्राम सभा तय करता है। परंतु इस ग्राम सभा में एमओआईसी के द्वारा स्वास्थ्य विभाग से एक पर्यवेक्षक होता है जो उसका केयर करता है, वो देखता है कि सही रूप से ये चयन हुआ या नहीं। चयन की पूरी प्रक्रिया ग्राम सभा के कार्यवृत्त में लिख करके एमओआईसी के पास जाती है, और सिविल सर्जन के माध्यम से वो चयनित होकर के स्टेट ऑफिस में आता है, और स्टेट ऑफिस से सहिया को एक कोड दिया जाता है जो सहिया कोड कहलाता है, तब जाकर के सहिया अपने कार्यों को कर पाती है।
1: कोई भी सहिया चयनित हो जाने पर अपने काम को लेकर किस विभाग, पदाधिकारी या कमिटी के प्रति जवाबदेही होती है?
0: ये तो बहुत साधारण सी बात है कि जहां पर सहिया का चयन हुआ वहां पर प्रथम उसको रिपोर्ट करना है, मतलब सहिया सबसे पहले अपने ग्राम स्वास्थ्य समिति और अपने ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह है, क्योंकि वो समुदाय की आवाज है और समुदाय से चुनकर आई है। सहियाओं के मध्य में 15 से 20 सहिया के साथ में एक क्लस्टर है, और क्लस्टर में उनके नेतृत्व के लिए सहिया साथी है। तो सहिया साथी के सहयोग से प्रखंड में एमओआईसी को अपनी बातों को रखती है, अपने प्रतिवेदनों को रखती है, और अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन चुका है तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में सीएचओ के प्रति भी सहिया जिम्मेवार है, और इसके बाद चल करके वो स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों तक अपनी बातों को रखती है। परंतु सभी गांव के वासियों को जानना जरूरी है कि ग्राम सभा के द्वारा जब सहिया का चयन हुआ है तो सहिया के लिए जो फर्स्ट रिपोर्टिंग फोरम या ऑफिसर है वो है उसका ग्राम सभा।
1: अकय मिन जी, आपने सहियाओं के चयन से जुड़ी जरूरी प्रक्रियाओं के बारे में जो उपयोगी जानकारियां दी, हमें आशा है कि उससे हमारे श्रोता जरूर लाभ उठाएंगे। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

0: पूर्णिमा बहन, ये बहुत ही अच्छा हुआ कि हमें अकय दीदी से बहुत उपयोगी जानकारियां मिल गई जो हमारे श्रोताओं के काम आएगी ही आएगी। साथ ही उन बहनों को भी लाभ होगा जो सहिया बनने की इच्छा रखती हैं।
1: एक और अच्छी बात ये है चंपा मुनि दीदी कि सरकार सहियाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से भी जोड़ रही है ताकि सहियाओं और उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा भी मिल सके।
0: ठीक कह रही हैं बहन, इससे मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में सहियाओं और उनके परिजनों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और सहिया बहनें बिना किसी चिंता के सुचारू रूप से अपना काम कर सकेंगी।
1: इसके साथ हम अपने श्रोता भाई बहन को बता दें कि आप स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में किसी भी तरह की जानकारी या शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर फोन कर सकते हैं।
0: प्यारे श्रोता भाई बहन, आज के अंक में भी बस इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।
1: जोहार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड, स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम सहिया, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। 4 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
2: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दूसरे राज्यों में जन्मे मतदाता भी अपने गृह राज्य से जारी मान्य दस्तावेज जमा कर सकते हैं। इसके लिए दस्तावेज का झारखंड से ही निर्गत होना जरूरी नहीं है। वंशावली, खतियान और शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे ECI द्वारा मान्य दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे। देवघर जिले में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। गोड्डा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि देवघर में एक इंटीग्रेटेड फैसिलिटी, 2 TA बटालियन और एक सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए कुल 263 एकड़ भूमि की आवश्यकता का प्रस्ताव रखा गया है। राजधानी रांची में करमटोली, अरगोड़ा और हरमू फ्लाईओवर के टेंडर फाइनल हो गए हैं। स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड की ओर से अक्टूबर में दुर्गा पूजा के बाद इनका निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ भाजपा के 4 दिवसीय राज्यव्यापी आंदोलन का आज आखिरी दिन है। आज गोड्डा, खूंटी सहित 6 जिलों में DC SP कार्यालयों का घेराव किया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने दिवंगत नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार की पत्नी श्वेता शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान DGP ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सुदिव्य कुमार का निधन राज्य के लिए बड़ी क्षति है। रांची रेल मंडल के कोच कुलदीप शर्मा को भारतीय रेलवे की सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। वे दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल से इस शीर्ष पद पर पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी हैं। कुलदीप शर्मा 15 सितंबर से 11 अक्टूबर 2026 तक खुर्दा रोड में आयोजित होने वाले कोचिंग कैंप में टीम का मार्गदर्शन करेंगे। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं उर्दू कार्यक्रम। कंपेयर हैं हिदायतुल्ला और फौजिया। प्रस्तुति है प्रभु शरण की।

0: आज से ये पता चल रहा है, ऐसे में बीमारियों का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए हम बार बार अपने सामीन को ये बात बतलाते हैं कि बरसात के मौसम में होने वाले बीमारियों से बचने की तदाबीर क्या है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बरसात के मौसम में बीमारियों से बचने के लिए सबसे अहम तदाबीर ये है कि हम साफ पानी का इस्तेमाल करें, हाथों की बाकायदा सफाई, मच्छरों से बचाव, घरों के इर्द गिर्द पानी जमा न होने देना और ताजा घरेलू खाना खाना।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने हिदायतुल्लाह साहब। बरसात में आम बीमारियां और उनकी वजूहात जो है, जैसे कि बरसात में नमी और ठंडक की वजह से जरासीम, बैक्टीरिया और वायरस तेजी से फैलते हैं। इस मौसम में चार बड़े जराए इन्फेक्शन होते हैं, मच्छरों के काटने, गंदा पानी का इस्तेमाल करना, खुराक और हवा से फैलने वाले वायरस। और आम बीमारियों में शामिल हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, पीलिया, डायरिया और गैस्ट्रो। वायरल फीवर, नजला, जुकाम, फंगल इन्फेक्शन, ये सब मौसमी तब्दीली, नमी की वजह से होते हैं।
0: फौजिया, ऐसे में जाती सफाई और माहौलियात का दुरुस्त रखना नहायत जरूरी है। यानी के भींगने के बाद फौरन खुश्क कपड़े पहने, पाँव को उंगलियों के दरमियान अच्छी तरह खुश्क करें ताकि फंगल इन्फेक्शन न हो। सांस की नाली के इन्फेक्शन से बचने के लिए नाक मुंह ढांप कर रखें, यानी मास्क लगा कर रखें, हाथ बार बार धोएं और भीड़ भाड़ में जाने से एहतियात करें। तौलिया और जूते शेयर न करें, सूती और नर्म कपड़े पहने।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। और सबसे ज्यादा हम कहेंगे अपने सामईन से कि मुतवाजन ग़िज़ा लें, काफी पानी पिएं, मुनासिब नींद लें और हल्की सी वर्जिश, जो बहुत ही जरूरी चीज है, इससे कुव्वत मुदाफ़त मजबूत होती है। खुद से एंटीबायोटिक्स ना लें, बुखार शदीद, पीलिया या सांस की तकलीफ हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। और सामईन, ये सब तो कॉमन सी चीज है, हम सभी जानते हैं कि साफ सफाई रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से ही हम बीमार पड़ते हैं। खासकर पानी पीने की जो बर्तन होते हैं उसे हमेशा छिपा कर रखें। जिस बर्तन से आप पानी पी रहे हैं उसका ध्यान रखें, उसे देख कर पिएं कि कोई कीटाणु तो उसमें नहीं आ गए हैं। हमेशा साफ ग्लास का इस्तेमाल करें, साफ पानी का इस्तेमाल करें। यही पानी हमारे जिस्म के अंदर जाते हैं और जरासीम फैलाते हैं, जिससे हम बीमार पड़ते हैं।
0: बिल्कुल फौजिया, एक बात और हम अपने सामईन को जरूर बताना चाहेंगे कि बरसात के मौसम में बच्चे और बूढ़े ज्यादा बीमार पड़ते हैं। इसकी खास वजह यह है कि कुव्वत मुदाफियत यानी बच्चों की इम्यूनिटी पावर बनिस्बत नौजवानों के और बूढ़ों की इम्यूनिटी पावर बनिस्बत नौजवानों के कम हो जाती है, जिसके वजह से वो बीमार ज्यादा पड़ते हैं। तो ऐसे में गर्म पानी का इस्तेमाल जरूर कराएं और भींगने से जरूर बचें और सोने के वक्त अपने हाथ पांव के तलवों में सरसों तेल का इस्तेमाल करें, इससे आप बीमार
1: नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भींगने से बचना तो बहुत जरूरी है। ये बरसात का मौसम है तो हम जान ही रहे कि बारिश तो कभी ना कभी आ ही जाएगी। अभी धूप है, फौरन थोड़ी देर के बाद बारिश हो जाएगी। तो हमेशा ख्याल रखें कि बाहर निकलने से पहले रेनकोट या छाता जरूर लेकर साथ में चलें और भीगने से बचें। अगर बारिश हो रही है तो आप किसी दुकान में घुस जाएं, किसी घर में, और हाँ, पेड़ के नीचे बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि पेड़ के नीचे अक्सर बिजली गिरती है, जिससे बहुत ज्यादा खतरात होते हैं।
0: बिजली, बारिश, बादल, गरज, इन तमाम चीजों के साथ नगमों का लुत्फ लेना भी जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मौसम का लिहाज करते हुए ही आइए सामीन सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

0: और फौजिया हमारे स्टूडियो में आज मदऊ हैं जनाब सुहेल सईद साहब, रांची शहर के एक जाने माने शायर। और ये कहा जाए कि शायरी की दुनिया में इन्होंने अपना एक अलग मकाम बनाया है। रांची शहर में ही नहीं बल्कि एतराफ में भी कहीं पर बड़े मुशायरे का अगर इनेकाद किया जाता है तो जनाब सुहेल सईद साहब बतौर नाजिम लोग इन्हें बहुत ही फख्र से मदउ करते हैं। और हम तो ये कहेंगे कि एक ऐसा मेहरबान शजर मिल गया मुझे, एक ऐसा मेहरबान शजर मिल गया मुझे, हर उछालते ही समर मिल गया मुझे। तो आइए सामीन हम समाअत फरमाते हैं जनाब सुहेल सईद साहब को, इरशाद हो सके।
1: पहले कुछ मुतफरक अशआर ढूंढिए, कुछ तो पुरानी ढूंढिए, ढूंढिए कुछ तो पुरानी ढूंढिए, आदमियत की निशानी
2: ढूंढिए। अच्छा,
1: ढूंढिए
2: ढूंढिए
1: ढूंढिए कुछ ढूंढिए इस दौर में,
2: कुछ ढूंढिए इस दौर में,
1: दौर में इश्क वालों की कहानी ढूंढिए,
2: ढूंढिए
1: कुछ ढूंढिए इस दौर में, इश्क वालों की कहानी ढूंढिए। और देखिए कि दीवार दुश्मनी की यहीं से उठा के देख,
2: दीवार दुश्मनी की
1: यहीं से उठा के देख, तू चल के थोड़ी दूर मुखालिफ हवा के, देखा न होगा तूने ये मंजर शिकस्त का,
0: देखा न होगा तूने ये मंजर
1: शिकस्त का, आँखों से अपनी फतह का ऐनक हटा के,
0: फतह का ऐनक हटा,
1: देखा ना होगा तूने ये मंजर शिकस्त का, आँखों से अपनी फतह का फतह की ऐनक हटा के देख। और ये देखिए कि किसी के इश्क में हर हद को पार कर जाते, किसी के इश्क में हर हद को पार कर जाते, ये एक काम तो तुम यादगार कर
0: जाते,
1: पेशो ये पेशो पस की अजियत तो जान लेवा है, ये पेशो पस की अजियत तो जान लेवा है, कभी जुनून में दरिया को पार कर जाते। और देखिए के देखेगी मेरी आँख ये मंजर कहाँ तलक,
0: देखेगी
1: मेरी आँख ये मंजर कहाँ तलक, फैला हुआ है धुंध का लश्कर कहाँ तलक, शेर देखिए इसमें के भटकेगी मेरे साथ तू है यादे यार अब,
0: बहुत खूब,
1: भटकेगी मेरे साथ तू है यादे यार अब, बेसमत रास्तों के सफर पर कहाँ तलक।
0: बहुत खूब, बहुत खूब,
2: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: और देखिए गजल के चंद अशआर के, ये कब कहा के झोली में दुनिया को डाल दे,
0: ये कब कहा,
1: मैं उसको भूल जाऊं मुझे ये कमाल,
0: ये कमाल है,
2: बहुत अच्छा है भाई।
1: कब कहा के झोली में दुनिया को डाल दे, मैं उसको भूल जाऊं मुझे ये कमाल दे। और शेर देखिए कि दावा नहीं है कोई वफाओं का यूं हमें, दावा नहीं है कोई वफाओं का यूं हमें, हाँ चाहते हैं ये कि जमाना मिसाल,
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: और ये शेर सुनिए, बहुत
0: जी
1: पसंद है आप लोगों को, कि दावा नहीं है कोई वफाओं का यूं हमें, हाँ चाहते हैं ये कि जमाना मिसाल दे। और सरवर भाई, होंठों पे तेरा नाम मचलने लगा है यूं, सहरा में जैसे कोई समंदर
2: रुझा,
0: बहुत खूब,
1: होंठों पे तेरा नाम मचलने लगा है।

0: भाई मैं अब
1: तन्हा खड़ा है।
0: तन्हा खड़ा है वो सच कहकर मुसीबत में पड़ा है।
2: क्या बात है, वाह वाह,
1: बहुत अच्छा।
2: वो सच कहकर मुसीबत
0: वो सच कहकर मुसीबत में पड़ा है, और देखिए कि जमी ने उसको समझाया बहुत था।
1: वाह भाई वाह,
0: जमी ने उसको समझाया बहुत था, वो आखिर आसमां से गिर पड़ा।
2: अरे बहुत खूब, बहुत खूब।
0: अब देखिए इसका आखिरी मकतल है कि सुहैल उससे मिलो तो सोच लेना, सुना है उससे एक दुनिया खफा है।
2: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: छह भाई, वाह वाह।
0: सब उड़ा कर ले गई, छोड़ा निशा कोई नहीं।
1: वाह,
2: सब उड़ा कर ले,
0: सब उड़ा कर ले गई, छोड़ा निशा
2: कोई नहीं,
0: कोई नहीं,
2: कोई नहीं।
0: आंधियों के शहर में सालिम यहाँ
2: कोई नहीं,
1: कोई नहीं। अच्छा है भाई, अच्छा।
0: सब बुरा कर ले गई,
1: छोड़ा निशा
0: कोई नहीं। आंधियों के शहर में सालिम यहाँ कोई नहीं।
2: बहुत।
0: सब मौसम के परिंदे किस कदर बेहाल हैं।
1: बहुत अच्छा।
0: सब मौसम के परिंदे किस कदर बेहाल हैं, दूर तक अब इस सफर में साइमा को।
2: बहुत
1: बहुत अच्छे, बहुत
0: अच्छे। सब्ज मौसम के परिंदे किस कदर बेहाल हैं, दूर तक अब इस सफर में साइमा
2: कोई नहीं, कोई नहीं। बहुत खूब, क्या अल्फाज।
0: शेर देखिए के बंद कर रखे हैं अपने सब दरीचे और दर।
2: बहुत खूब।
0: बंद कर रखे हैं अपने सब दरीचे
2: और दर,
0: अब किसी के हाल से वाकिफ यहाँ
2: कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। बहुत खूब। दरीचे आप
0: बंद कर रखे हैं अपने सब दरीचे
2: और दर,
0: अब किसी के हाल से वाकिफ यहाँ
2: कोई नहीं,
0: कोई नहीं।
2: सामीन आप देखें उर्दू की अल्फाज और उनकी खूबसूरती, इसीलिए कहते हैं कि मुसलमान सिख और हिंदू बोलता है, मुसलमान सिख और हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है। सरों पर चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है।
1: वाह
2: जी, इरशाद हो सुहेल साहब।
0: बंद कर रखे हैं अपने सब दरीचे और दर, अब किसी के हाल से वाकिफ यहाँ कोई नहीं। और देखिए कि टूट कर बिखरे पड़े हैं सब दिलों के सिलसिले, टूट कर बिखरे पड़े हैं सब दिलों के सिलसिले,
2: सिलसिले
0: इनको जो आपस में जोड़े दर
1: कोई नहीं।
0: टूट कर बिखरे पड़े हैं
1: सब दिलों के सिलसिले,
0: सब दिलों के सिलसिले
1: इनको
0: जो आपस में जोड़े दरमिया
1: कोई नहीं,
0: कोई नहीं। और मक्ता देखिए सरवर भाई की,
2: इरशाद
0: क्या बताएं, जानो दिल में है आग है कैसी सुहैल। क्या बताएं, जानो दिल में
1: आग है,
0: आग है कैसी सुहैल, जलते रहते हैं मुसलसल और धुआं
2: कोई नहीं। बहुत
1: वाह,
2: बहुत
1: बहुत
2: बहुत, क्या
3: जलते रहते हैं मुसलसल और धुआं
1: कोई नहीं।
2: सामीन वही प्यार, वही मोहब्बत, वही अदावत, वही नफरत, वही बगावत और बेवफाई, लेकिन सबके अंदाजे बयान अलग अलग। अब देखिए एक शायर कहता है ताजमहल के बारे में कि एक शहंशाह ने बनवा के हसीन ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। ये सरवर साहब शकील बदायूनी साहब का ये शेर है कि एक शहंशाह ने बनवा के हसीन ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। और इसी को अगर साहिब लुधियानवी साहब से बात की जाए कि आपका नजरिया क्या है ताजमहल के बारे में, तो वो कहते हैं कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। लेकिन अगर इसी को किसी और से बात की जाए तो वो कहते हैं कि ताजमहल में एक कमी थी, ताजमहल में एक कमी थी, मैंने तेरी तस्वीर लगा दी। तो सबके बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं, बात वही है, प्यार वही है, मोहब्बत वही है, अदावत वही है, बगावत वही है, लेकिन लफ्जों के से खेलने का अगर हुनर कोई जानता है तो वो किसी शायर को और गजल गो शायर को आप बुला ले तो वो देखें कि किस तरह लफ्जों से वो खेलता है।

अब से कुछ देर बाद यानी 4:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। कार्यक्रम होगा सांझ सरगम। संध्या 5 और संध्या 6 आप सुना करते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार, और संध्या 7 का वक्त हुआ करता है प्रादेशिक समाचारों का।

5:02 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम में आज चर्चा की जाएगी भूदान आंदोलन और मानवता का संदेश। साथ ही आप सुनेंगे फिल्म संगीत, इतिहास में आज का दिन, रोचक तथ्य और समसामयिकी। पर श्रमिक बंधुओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम श्रमिक लोक। कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस के संबंध में। साथ ही आपको जानकारी दी जाएगी पीएम स्वनिधि योजना के संबंध में और श्रमिक अधिकार और सामाजिक न्याय के संबंध में।

6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबारी और संध्या 6:30 पर कार्यक्रम हमारी दुनिया। हमारी दुनिया कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास राष्ट्र हित में।

7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आदिवासी अखरा। आज का यह कार्यक्रम हो भाषा में है। कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी विनोबा भावे जयंती के संबंध में, साथ ही आपको बीमारी स्वाइन फ्लू के संबंध में जानकारी दी जाएगी।

संध्या 7:30 से आप सुनेंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत श्रीलंका बनाम पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल।

श्रोता इस समय हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सांझ सरगम। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म अनामिका में। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है, संगीत राहुल देव।

कार्यक्रम में आगे सुनते हैं फिल्म जख्म में अलका याग्निक को। शब्द रचना आनंद बख्शी की है, संगीत M.M. खीरवानी का।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: फिर तेरी कहानी याद आई, आइए इस फिल्म में सुनते हैं कुमार शानू को। शब्द रचना कैल सिफई की है, संगीत अनु मलिक का।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: कार्यक्रम में एक बार फिर सुनते हैं कुमार शानू को। शब्द रचना समीर की है, संगीत नदीम श्रवण का। फिल्म का नाम है आशिकी।

फिल्म कस्मे वादे के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दूसरे राज्यों में जन्मे मतदाता भी अपने गृह राज्य से जारी मान्य दस्तावेज जमा कर सकते हैं। इसके लिए दस्तावेज का झारखंड से ही निर्गत होना जरूरी नहीं है। वंशावली, खतियान और शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे ECI द्वारा मान्य दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे। देवघर जिले में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। गुड्डा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि देवघर में एक इंटीग्रेटेड फैसिलिटी, 2 TA बटालियन और 1 सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए कुल 263 एकड़ भूमि की आवश्यकता का प्रस्ताव रखा गया है। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज जामताड़ा समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री रविन्द्र राय के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में उन्होंने राज्य सरकार पर भर्ती घोटाले में शामिल लोगों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने पूरे मामले की अविलंब CBI जांच कराने की मांग की। मेदिनीनगर में जिला व्यवहार न्यायालय के प्रथम जिला एवं सत्र अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में राहुल प्रसाद को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने भारतीय दंड विधान की धारा 307 और 326 के तहत दोषी पाते हुए 25,000 रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। चतरा के सिमरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध अफीम की खरीद बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सबानो केंदू रोड स्थित रानी भोकर के पास से गुलचंद साव को पकड़ा। उसकी निशानदेही पर 975 ग्राम अवैध अफीम बरामद की गई। इस मामले में सिमरिया थाना में NDPS एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:03 हो चुके हैं। संध्याकालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रमों की शुरुआत करने से पहले आइए आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी ही देर में यानी संध्या के 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गीतकार समीर को। संध्या 5:30 पर समय होगा किसान भाई बहनों को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी। संध्या 6:00 मुख्य समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। संध्या 6:02 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम हो अखड़ा।

संध्या 6:30 पर आप सुनेंगे बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया। संध्या 6:55 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार संध्या 7 बजे, और उसके बाद जिले में आजकल। संध्या 7:15 पर हम आपको सुनवाएंगे श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। संध्या 7:30 पर आप सुनेंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट मैच 2026 के अंतर्गत पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले दूसरा सेमीफाइनल क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार रात्रि 9 बजे। रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे अंग्रेजी न्यूज़ रात्रि 11:05 पर, और रात्रि 11:10 पर संपन्न होगी हमारी आज की सभा। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुलदस्ता। आज का गुलदस्ता हमने आपके लिए सजाया है एक ही गीतकार समीर के द्वारा लिखे कुछ गीतों से। तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाते हैं ये पहला गीत फिल्म थानेदार से। आवाज़ आशा भोसले, अमित कुमार और रीमा की, बोल समीर के और संगीत बप्पी लहरी का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म वादा का ये गीत, बोल समीर के और संगीत सतीश कौशिक का। और अब सुनवा रहे हैं फिल्म सलामी का ये गाना कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज़ों में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और आशा भोसले की आवाज़ों में फिल्म सलामी का ये गीत। और इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम गुलदस्ता अब हम यहीं समाप्त करते हैं।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गीतकार समीर को। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे किसान भाई बहनों को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

कार्यक्रम खेती गृहस्थी सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुरेश चंद्र सोय का जोहार। श्रोताओं, हम आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल हैं। आज खेती गृहस्थी कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा के अंतर्गत जानकारी लेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना विषय पर और मनोरंजन करेंगे वो लोकगीत से, और परिचर्चा के माध्यम से हम जानकारी लेंगे मछली पालन में ध्यान देने योग्य बातें और सरकार की योजना विषय पर। श्रोताओं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भारत सरकार द्वारा मछली पालन के क्षेत्र में आधुनिकीकरण और शुद्धिकरण करने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य जलीय कृषि और समुद्री मछली पालन को बढ़ावा देना है, मछली उत्पादन बढ़ा करके मत्स्य पालन के क्षेत्र में जुड़े हुए किसानों या मछली पालकों की जीविका में सुधार करना है। साथ ही साथ मत्स्य पालन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास करना और नए टेक्नोलॉजी का विकसित कर एक नीली क्रांति को एक रोजगार का सबसे अच्छा माध्यम बनाना है। श्रोताओं, 2024-25 तक मछली उत्पादन को 22 मिलियन या मैट्रिक टन तक बढ़ाना है। साथ ही साथ इसे उद्योग का दर्जा देते हुए निर्यात से होने वाली आय को दोगुना करके 1,00,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है और मत्स्य पालन क्षेत्र में लगभग 55,00,000 रोजगार के अवसर को पैदा करना है। इसका मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करना और समुद्री एवं अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सतत विकास को बढ़ावा देना है। श्रोताओं, आज के समय में रोजगार के कई क्षेत्र हैं। हम परंपरागत तरीके से हम प्राचीन काल से इनसे जुड़े हुए हैं, परंतु आज वैश्वीकरण का इस युग में महंगाई बढ़ी है। ऐसी परिस्थिति में हमें कृषि के उन क्षेत्रों को भी प्रमुखता के साथ देखने की जरूरत है जहां रोजगार के अवसर हैं, और इस मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को सहायता राशि दी जाती है। इसके अंतर्गत मत्स्य बीज हेचरी का निर्माण भी आता है, मीठे जल के स्कैपी हेचरी का निर्माण, नया तालाब का निर्माण, रियरिंग तालाब का निर्माण, बायोफ्लॉक तालाब का निर्माण जिसमें 4,00,000 तक की राशि है, जलाशयों का निर्माण करना, साथ ही साथ एक्वाकल्चर या बायोफ्लॉक माध्यम से भी मछली पालन के क्षेत्र को बढ़ावा देना है।

और परंपरागत मछुआरों के लिए जो नदी या समुद्र के किनारे रहते हैं उनके लिए जाल इत्यादि का प्रबंधन करना भी इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। श्रोताओं, मछली पालन को उद्योग का दर्जा देने के लिए कई क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है और केंद्र सरकार इस पर प्रयासरत है और नीली क्रांति के रूप में इसे भावी पीढ़ियों के लिए एक रोजगार का अच्छा माध्यम बनाने पर प्रयासरत है। परंतु इस योजना का लाभ तभी हो पाएगा या देश को लाभ मिलेगा जब हमारे किसान, जिनके पास खाली जमीनें हैं, जहां मछली पालन के लिए तालाबों का निर्माण किया जा सकता है, झीलों का निर्माण किया जा सकता है, ग्राम सभा को आगे आना होगा, क्योंकि वर्तमान समय में गांव से पलायन बढ़ी है, रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों में जा रही है, जबकि ग्राम सीमाओं के भीतर ही या पंचायत सीमाओं के अंतर्गत ही रोजगार के कई क्षेत्र मौजूद हैं, जिसमें मछली पालन भी एक है, पशुपालन भी है। यदि इस पर ध्यान दें और तालाबों का निर्माण किया जाए तो इसमें नीली क्रांति को हम एक उद्योग का दर्जा दे पाएंगे और पलायन और बेरोजगारी जैसे समस्याओं का निपटारा हम खुद अपने देश पर ही निपटारा कर पाएंगे। हमें अन्य देशों से सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर गांव की परिकल्पना हम पूरा कर पाएंगे। श्रोताओं, इस जानकारी के बाद आइए हम मनोरंजन करते हैं इस लोकगीत से।

0: श्रोताओं, अभी हम मनोरंजन कर रहे थे हो लोकगीत से सिनेमाई आल्डा एवं साथियों के सुर में। इस लोकगीत के बाद आइए हम परिचर्चा के माध्यम से हम जानकारी लेते हैं मछली पालन में रोजगार की संभावना, सरकार की योजना और इसमें प्रतिभागी के रूप में मत्स्य पदाधिकारी जिला कृषि व मत्स्य पदाधिकारी नीलम सरोजेका जी हैं, कृष्णा सोए जी हैं, मुन्ना सोए, संजोग पांड्रा। तो आइए इस परिचर्चा के माध्यम से हम जानकारी लेते हैं।
1: किसान भाइयों, आप सबों को इस कार्यक्रम के माध्यम से कई प्रकार की जानकारी। तो आज हमारे स्टूडियो में जिला मत्स्य पदाधिकारी नीलम सरोजेका जी उपस्थित हुई है। मैडम, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। चौहान, इसके साथ साथ हमारे किसान जो प्रतिभागी के रूप में आए हैं,
2: कृष्णा सोए प्रगतिशील कृषक, संयोग कुमार बांड्रा प्रगतिशील कृषक और मुन्ना सोए प्रगतिशील कृषक, आप सबों को जोहार।
1: जोहार। आज हमारी चर्चा का विषय है कि मत्स्य पालन में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं, इसके साथ साथ उसमें जो समस्याएं हैं या चुनौतियां हैं, इसके संबंध में हम अपने श्रोताओं को परिचर्चा के माध्यम से जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे मैडम, मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं किस दृष्टिकोण से आपको बेहतर?
3: जैसे खेती, इस किसान खेती का काम कर रहे हैं, उसी तरह मछली पालन से भी हम लोग 2 से 3 फसल ले सकते हैं। मछली की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को तालाब की तैयारी करना पड़ेगा। अगर उसमें हम लोग सही तरीके से भोजन इत्यादि देते हैं तो एक फसल हम लोग 3 महीना 4 महीना में ही काट लेते हैं, जिस तरह खेती में होता है। और दूसरा फसल भी हम लोग उसको निकालने के बाद उसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह जो भी बेरोजगार युवक हैं या जिनके पास तालाब है, वो सही तरीके से तालाब का उपयोग कर सकते हैं मछली पालन को लेकर के। आज मछली पालन से भी हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो अच्छे खासे आमदनी उनसे हो रहे हैं, 3 से 4 लाख तक भी उनका इनकम हो रहा है, जो एक सरकारी नौकरी में जितना मिलता है उस लगभग में उनको इनकम हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा है कि रोजगार का एक बहुत अच्छा साधन है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। सुबह से अगर शाम तक, सुबह या शाम में अगर वो समय देता है तो मछली पालन बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है
4: जी। अच्छा मैडम, यहाँ पे हम एक सवाल पूछेंगे। जैसे आपने कहा कि ये मछली पालन जो है आप 3 महीने में भी फसल तैयार कर सकते हैं, तो ये जो है उसके लिए शायद चारा वगैरह देना पड़ेगा। तो ये 3 महीने में जो है लगभग कितनी बड़ी हो जाती है, जैसे जो एक मछलियाँ जो होती है
3: लगभग उसमें से 300 ग्राम तक, 300 से 400 ग्राम तक हो सकती है, अगर अच्छे से भोजन इत्यादि पे ध्यान दिया जाए, सही तरीके से दिया जाए। तो इसमें मात्रा अच्छे से देने से मछली की ग्रोथ अच्छी होती है। जैसे अभी नदी में मछली पालन को भी बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दे रही है सरकार, जिनके पास तालाब नहीं है वो नदी का भी सही उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि नदी में सालों भर पानी नहीं रहती है, लेकिन अगर वहाँ बरसात से पहले तक भी 5 से 7 महीना तक भी पानी रह रही है, तो उससे भी हम लोग पानी का सही सदुपयोग करके मछली पालन करके ग्रामीण उससे लाभ ले सकते हैं।
5: मैडम, मैं इस बारे में जानना चाह रहा हूँ, ये सही चारा या मछली बीज जो है वो हमें नहीं मिल पाता है, ये कहीं बिचौलिए, ये जो गाँव स्तर से लोग घूम घूम के जो मछली बेचते हैं उनसे हम लोग को चारा वो खरीदना पड़ता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मछली बीज या स्पॉन्ड ये जो कहाँ से लेना चाहिए, इस बारे में प्रकाश डालिए।
3: जैसे आप कहें कि बिचौलिए आ जाते हैं, तो बिचौलिए को आप आने मत दीजिए। सबसे पहले तो आप कार्यालय

0: में ही संपर्क करिए। विभाग द्वारा मत्स्य बीज उत्पादन के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें रांची में आपको जाना पड़ेगा शालीमार धुआ में, वहाँ प्रशिक्षण लीजिए। ये 3 दिवसीय होता है, आप प्रशिक्षण करिएगा। आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आपका वहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आप 3 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद आप आकर के प्रशिक्षण का जो प्रमाण पत्र है कार्यालय में जमा कर दीजिए, उसकी एक कॉपी। आप उससे सब्सिडी में स्पॉन ले सकते हैं, जाल ले सकते हैं, फीड ले सकते हैं, और आपका बाद में मोबाइल रिचार्ज कूपन होगा। तो ये बहुत अच्छा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है मत्स्य विभाग से, जहाँ इनको सब्सिडी में केवल स्पॉन लेना है, बाकी सरकार दे रही है। इसमें आप बिचौलियों को मत आने दीजिए, आप सीधे आप कार्यालय में जाकर के संपर्क करिए, सारा सुविधा कार्यालय दे रहा है।
1: मैडम, इसमें आप लोग का मत्स्य पालन विभाग की ओर से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही
0: है? मत्स्य विभाग से जो चलाई जा रही योजना है, मत्स्य विभाग मुख्यतः मछली पालन के लिए है, तो सबसे पहले तो हम लोग तालाब निर्माण पे ध्यान दे रहे हैं। तालाब निर्माण हमारा 50 डिसमिल से लेकर के 2 एकड़ तक का बनाना है, तो 1 एकड़ का प्राकृत राशि 3 लाख रुपये है, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति को 90% अनुदान मिल रहा है, मतलब 2,70,000 सरकार दे रही है, मात्र 30,000 उनको लगाना है। दूसरा है जो सामान्य वर्ग में आते हैं उनको 80% अनुदान है, तो एक ये बहुत सुनहरा है, जिसमें ये जितने भी ग्रामीण हैं इसका लाभ उठा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। जिनकी जमीन अच्छी रहेगी, दोन भूमि जमीन रहेगी, उनको प्राथमिकता मिलेगी। दूसरा योजना है मछुआ आवास, आवास योजना, तो जिसको आप लोग जान ही रहे होंगे, मछुआ आवास, उसमें 234 स्क्वायर फीट बनाना है, जहाँ अभी सरकार राशि बढ़ा दी है, जहाँ एक पहले 75,000 था, आज उसकी राशि बढ़कर 1,20,000 हो गई है। तो ये जीवन स्तर बढ़ाने के लिए, और जो जिनका जमीन छोटा भी है तो इतना कम स्क्वायर फीट में वो 2 रूम का घर बना सकता है, ये बहुत अच्छा योजना है कि जो घास फूस के घर में रह रहे हैं उसको सरकार एक पक्का आवास दे रही है। जो मछली पालक हैं वो मछली बेचते हैं, उनके लिए भी मछली का किट उपलब्ध कराया जा रहा है। ये बहुत ही है, जैसे मछली महिलाएं काट करके बेच रही हैं, तो उनको काटने के लिए, बेचने के लिए उनको किट उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें उनको मात्र 250 रुपया ही देना है, बाकी सरकार दे रही है। वैसे ही चलंत ठेला भी है, जिसमें सरकार लगभग 38,000 का है, 38,000 सरकार दे रही है, 2,000 ही फार्मर को देना है। तो ये बहुत अच्छा योजना है, जिसमें ये लोग लाभ उठा सकते हैं।
2: फार्मर को खाली 2,000 रुपये
0: हाँ देना है, बाकी तो सरकार।
3: मैडम, इसमें क्या क्राइटेरिया क्या होगा, मतलब ये उसका वो फैसिलिटी या
0: जो ये लेने के लिए? विभाग से जुड़े हुए हैं,
3: अपना प्रमाण पत्र अगर है तो हम लोग ले सकते हैं,
0: और वो सही तरीके से मछली बेचते हैं ये देखना होगा, वो मछली बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं।
3: और मैडम, ये तालाब निर्माण के बारे में, मतलब ये किस तरह का, कैसे निर्माण होना चाहिए, ये उसके बारे में प्रकाश डालेंगे?
0: देखिए, तालाब निर्माण कोशिश करिएगा कि आयताकार हो जी। आयताकार होने से ऑक्सीजन का जो मात्रा होता है वो सही तरीके से तालाब में चला जाता है, क्योंकि मछली घुलनशील ऑक्सीजन को ग्रहण करती है
3: जी।
0: जो वर्गाकार तालाब में नहीं हो पाता है, तो हम विभाग ज्यादातर कोशिश करती है कि तालाब हमेशा लंबाई में ज्यादा हो, चौड़ाई कम, आयताकार तालाब पर ही ज्यादा हो ध्यान।
3: और ये कहीं कहीं इस तरह का, ये पूर्व पश्चिम दिशा में हो या उत्तर दक्षिण दिशा में, इस तरह का कोई ये तो नहीं क्राइटेरिया?
0: क्राइटेरिया ऐसा नहीं है,
3: क्योंकि किसी भी दिशा में आयताकार होना चाहिए।
0: हाँ, किसी भी दिशा में हो, पवन तो हर तरह से चलती है
3: जी। जी,
1: तो ऊंचाई से हैं आप भी, तो प्रगतिशील कृषक हैं, तो आप कब से मछली पालन कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है कि यह खेती करना चाहिए या मछली पालन में ज्यादा इनकम है?
4: नहीं, मछली पालन में तो बढ़िया इनकम है, तो वही तो हम लोग का घर पे दिनों से कर तालाब था, तो इसीलिए काफी दिनों से हम लोग का खेती बाड़ी तालाब का, मछली का पालन का। तो और मैडम, क्या क्या सुविधा अभी सरकार की ओर से आ रही है?
0: सरकार की ओर से तालाब निर्माण, आवास योजना है, मछली बेचने वालों के लिए उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
4: तो कहाँ से मिलेगी?
0: सब सारा सुविधा आपको कार्यालय से ही मिलेगी, आपको सभी योजनाओं को लेने के लिए आवेदन कार्यालय में जमा करना
4: पड़ेगा,
0: कार्यालय में ही जमा करना
3: पड़ेगा। अच्छा, मछली विभाग का
4: सराइकेला खरसवां है, तो हम लोग
0: संबंधित जिले से ही करना पड़ेगा। अगर आप

0: अकेला जी ले से हैं तो आप सरायकेला में जमा कर सकते हैं, चाईबासा से हैं तो आप चाईबासा में जमा करिए, हर एक जिला में जिला मास कार्यालय है।
1: तालाब निर्माण के संबंध में मैं और जानना चाह रहा था, ये कभी भी जैसे ये सरकारी विभाग से 2,70,000 का एक स्कीम होता है ये एक एकड़ का तालाब में, तो कृषकों के पास में अक्सर ये समस्याएं होती है कि हमने तालाब शुरू तो कर दिया लेकिन शुरू में विभागीय जो है शुरू में एडवांस के तौर पे तो पैसे नहीं देते हैं, हम काम शुरू करा देते हैं, 1,00,000 का काम किए तो उसमें 50,000 या 40,000 रुपये मिलते हैं, तो इसमें काफ़ी कठिनाई होती है, तो कहीं बैंकों से ऋण लेने का या इस तरह का कोई ये सब नहीं है प्रोविजन वगैरह?
0: देखिए, एक एकड़ का तालाब निर्माण करने में सरकार 90% अनुदान देती है और जो 10% है एक लाख को ही लगाना है, तो जो 10% कहा जाता है कि उनको पहले लगा दे, और पहला जब भी आप पैसा लेने के लिए आते हैं तो सबसे पहले आप 1.5 फीट तक का गहराई आप अगर 1 एकड़ का बनाना चाहते हैं तो आप 1.5 फीट तक का काम करा करके आप कार्यालय में उसका प्रमाण दे दीजिए, आपका जांच होगा कि कितना काम हुआ है, उसके बाद आपको पैसा की निकासी हो जाएगी। अगर आप अपने स्तर से करना चाहते हैं कि ऋण लेकर के हमको काम कराना है तो आप अपने से निजी स्तर पर ऋण ले सकते हैं।
2: विभाग की ओर से इस तरह कैसे कुछ है नहीं?
0: 2,70,000 आपको सरकार ही दे रही है और जो अगर निजी स्तर से आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।
3: यूँ तो मैडम बहुत सारे रोग तो नहीं लगते हैं मछलियों में, खास करके जैसे सब्जियों में हम लगाते हैं तो उसमें तो कई सारे प्रकार के रोग लगते हैं, उसमें उनका भी नियंत्रण करते हैं, तो इसमें भी क्या रोग लगने की संभावना रहती है? ऐसे यदि रोग हैं तो क्यों लगती है, उस पर भी यानी पहले से हम तैयारी करें तो हो सकता है हम अपने मछलियों को बचा सकते हैं।
0: हाँ, मछलियों में भी रोग लगती है, जाड़े के मौसम में लाल घाव हो जाता है, इसमें एक रासायनिक पदार्थ है जिसमें जिसे सिफेक्स कहते हैं, आप उसको 1 लीटर में एक हेक्टेयर तक में आप डाल सकते हैं जिससे उसमें बहुत हद तक रोकथाम हो सकती है, ये बहुत अच्छा है जिसे आप डाल सकते हैं। दूसरा एक बीमारी होती है ड्रॉप्सी, जिसमें मछलियों का देखिएगा पेट फूल जाता है
1: जी।
0: तो इस पेट फूलने का बीमारी में आप उसमें डाल सकते हैं टेरामाइसिन, जो 30 से 40 ग्राम लेना है 1 एकड़ के क्षेत्र
1: जी।
0: वो खाना में आप डाल करके उनको दे सकते हैं जिससे ये बीमारी होगी कम हो जाएगी
1: जी जी।
0: और एक तीसरे तरह की भी बीमारी ज्यादातर पाई जाती है मछलियों के जो गल ये सल्क होते हैं वो सब भी गलते हैं
1: जी जी।
0: तो ये सब बीमारी जो होता है टेल और फिन रूट जिसमें गलने लगते हैं इसमें भी आप टेरामाइसिन डाल सकते हैं और कॉपर सल्फेट का सही मात्रा डाल करके 10 ग्राम आप उससे रोकथाम कर सकते हैं
1: जी।
0: आप सही तरीके से हर महीने या 3 महीने में चूना का सही प्रयोग करेंगे तो मछलियों में जो बैक्टीरिया वगैरह लगते हैं जिससे काफी हद तक रोकथाम हो जाएगी और मछलियों में बीमारी भी बहुत कम हो जाएगी, तो चूना का नियंत्रित तरीके से प्रयोग करने पर मछलियों में कम बीमारी होती है। तो ये सबसे साधन सस्ता साधन भी है और लोगों को उपलब्ध भी हो जाता है
1: जी।
0: लेकिन चूना का डालने से पहले इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि उसे सीधे तरीके से तालाब में ना डालें, पहले उसको पानी में बाल्टी में फुला करके रख लें
1: जी।
0: उसके बाद ही 2-3 घंटे के बाद उसमें हर कोने पे तालाब में छिड़काव करें, यही सही तरीका है चूना डालने का।
1: अच्छा अच्छा, चूना को पाउडर के रूप में वो सीधे तालाब में नहीं छिड़काव?
0: नहीं, पहले सीधे छिड़काव नहीं करना है, आप भखड़ा चूना ले सकते हैं, आप उसको पानी में एक बाल्टी में डाल करके छोड़ दीजिए
1: जी,
0: 2-3 घंटे उसको रहने दीजिए, बाद में आप उसका छिड़काव कर सकते हैं, सीधे तरीके से डालने से हानिकारक होता है
2: जी। अच्छा मैडम, जैसे गर्मियों में खास करके होता क्या है कि जो मछलियां जो है वो सतह से ऊपर आ जाती हैं ना, तो वो मतलब उसका मुंह जो है वो बाहर से मतलब ऑक्सीजन लेने का ये करते हैं, तो उसका उसके लिए मतलब क्या करना पड़ेगा? जो है
0: मछलियाँ बार बार ऊपर आ रही है इसका मतलब है कि वहां पर तालाब में पानी में ऑक्सीजन की कमी है
2: जी।
0: ऑक्सीजन की कमी, सबसे आसान तरीका है कि कुछ जानवरों को आप तालाब में उतार दीजिए
2: जी।
0: पानी में हलचल होने से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है
2: जी।
0: दूसरा है कि आप डंडे से भी बार बार प्रहार करिएगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, तो आप प्रहार कितना देरी तक कर सकते हैं? सबसे आसान उपाय है कि आप कुछ जानवरों को ही उतार दें
2: जी।
0: वो सारे तरफ चलेंगे तो एक हलचल रहेगा तालाब में जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी।
1: हाँ मैडम, ये इस संबंध में हमने भी जानकारी ली, ये बतख पालन जो है मछली पालन के साथ में बतख पालन, तो बतख कितनी संख्या में होनी चाहिए? जैसे एक एकड़ का हमारा तालाब है तो कितनी बतख उसमें होना चाहिए ताकि मछलियों को भी सही खुराक मिलते रहे?
0: बतख पालन के लिए आप ऐसे ही तालाब का चयन करिए जहाँ मछली की जो संख्या है और उनका जो आकार है वो थोड़ी बड़ी, क्योंकि बतख भी मछली खा सकती है। जहाँ बड़ी मछलियाँ हैं बतख वहीं पालें। जीरा को मछली जिनका साइज छोटा रहेगा उसे बतख भी खा सकती है। तो संख्या आप उसमें 15 से 20 रखिएगा एक एकड़ के तालाब में।
1: जी जी अच्छा अच्छा।
4: श्रोताओं, अभी हम परिचर्चा के माध्यम से जानकारी ले रहे थे मछली पालन में रोजगार की संभावना और उसमें ध्यान देने योग्य बातें। इस परिचर्चा में शामिल थे जिला मत्स्य पदाधिकारी नीलम सरोजे का, किसानों के रूप में कृष्णा सोए, मुन्ना सोए, संजो कुमार बांटरा। श्रोताओं, इस परिचर्चा के बाद आइए मनोरंजन करते हैं इस लोकगीत से।

श्रोताओं, इस लोकगीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम खेती गृहस्थी अब संपन्न होता है। अब सुरेश चंद्र सोय को विदा दीजिए। जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे मुख्य समाचार।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को ज्ञापन सौंप

0: कर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की अवधि 1 माह बढ़ाने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि प्रारूप मतदाता सूची जारी होने के बाद जारी किए गए नोटिस की तुलना में अब तक हुई सुनवाई की संख्या काफी कम है। देवघर जिले में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। गुड्डा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि देवघर में एक इंटीग्रेटेड फैसिलिटी, 2 TA बटालियन और 1 सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए कुल 263 एकड़ भूमि की आवश्यकता का प्रस्ताव रखा गया है। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज जामताड़ा समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री रविन्द्र राय के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में उन्होंने राज्य सरकार पर भर्ती घोटाले में शामिल लोगों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने पूरे मामले की अविलंब CBI जांच कराने की मांग की। मेदिनीनगर में जिला व्यवहार न्यायालय के प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में राहुल प्रसाद को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने भारतीय दंड विधान की धारा 307 और 326 के तहत दोषी पाते हुए 25,000 रूपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। बुंडू के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश ने आज सभी थाना प्रभारियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की। बैठक में मासिक मामलों के निष्पादन और कार्रवाई की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। SDPO ने अपराध और तस्करी पर रोक के लिए गश्ती बढ़ाने, खुफिया तंत्र मजबूत करने और दिन रात एंटी क्राइम चेकिंग चलाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम हो अखड़ा।

0: प्रिंट पास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: ना बन अयम किडा टास बास लो ते ओंडोमियन इपेन ते मेरम को असुल के ते लाभ निया चनम एला ओंडो जुका अयरपा अयम चिबिनलिंग आंदिरिया दुरंग मिलानी बदुरा ओंडो जोड़ी कोआ।

जय हिंद बच्चों, आज की नन्ही दुनिया सुनने वाले सभी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को अंजू दीदी का ढेर सारा प्यार। बच्चों, आज आपने कुछ नया सीखा? हम हर रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं, आते जाते, स्कूल में पढ़ते हुए हमें टीचर्स कुछ नया सिखाते हैं, और हमें आते जाते भी कुछ भी देखते हुए हमें सीखते रहना चाहिए, है ना। आज भी हम लोग सीखेंगे, चलिए सीखते हैं। बच्चों, आज राष्ट्रीय वन शहीद दिवस है। वन मतलब जंगल, है ना। वन, आज का दिन बच्चों जंगलों, वन जीवों और पर्यावरण की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वन रक्षकों, अधिकारियों और स्थानीय लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। उन्होंने वनों की, पर्यावरण की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी, है ना। उनके लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज का दिन हम राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाते हैं। यह दिन मुख्य रूप से 11 सितंबर 1730 को राजस्थान के जोधपुर स्थित खिजड़ली गांव में हुई ऐतिहासिक घटना की याद दिलाता है। बच्चों, मारवाड़ के महाराजा अभय सिंह के सैनिकों ने खिजड़ी के पेड़ों को काटने का आदेश दिया था। विश्नोई समुदाय की अमृता देवी और 363 अन्य लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आज के दिन को 2013 में इस दिन को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। यह दिन हमारे फ्रंटलाइन स्टाफ, वन गार्ड, रेंजर्स, अधिकारियों के साहस को सलाम करता है। काफ़ी जब वो जंगल में काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं ना, वनों की रक्षा करते, पेड़ों की रक्षा करते, आपको पता है जंगलों में कई तरह के जीव जंतु भी होते हैं, कई तरह की समस्याएं होती हैं, है ना। तो उनके जितना वो ड्यूटी करते समय, काम करते समय कितनी कठिनाई होती है उनको, है ना, और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए जंगलों की वो रक्षा करते हैं। तो इसीलिए उनका सम्मान, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, है ना। और यह लोगों को प्रकृति, वन्य जीवों और जैव विविधता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संदेश भी देता है। आज का दिन हम लोग को पेड़ नहीं काटना है बल्कि पेड़ लगाना है, ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध बना रहे, है ना। तो चलिए, हमने जाना राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के बारे में। हम लोग और भी बातें सुनेंगे, और भी सीखेंगे, गाना भी सुनेंगे प्यारा प्यारा सा, है ना। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, उसके बाद सुनेंगे एक प्यारा सा गीत, है ना।

नन्हे से मेरे मुन्ने सुन ले कहानी। बहुत दिनों की बात है, एक था राजा एक थी रानी। राजा रानी के घर में था राजकुमार एक प्यारा। एक के दिल का टुकड़ा था वो, एक की आंख का तारा। एक दिन राजा का मन चाहा चलकर करें शिकार। निकल पड़ा वो होकर एक नीले घोड़े पे सवार। और मालूम है वो क्या कहता जा रहा था? क्या बात,

0: पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
3: फसा।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: इन संदेशों के बाद आइए कुछ जानकारी लेते हैं। मिशन वात्सल्य के बारे में, जैसे कि आप जानते हैं, परिवार सिर्फ जैविक रिश्तों से नहीं बनता है, या प्यार और देखरेख से भी बनता है। हमारे जिले में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता, या जो वर्तमान में संस्थागत देखरेख में हैं। ऐसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है। इसे पालन पोषण देखरेख योजना भी कहा जाता है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार में देखरेख की आवश्यकता होती है, और इसके अंतर्गत उन्हें आवश्यकता अनुसार या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देखरेख से योजना लाभान्वित किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं फोस्टर केयर या पालन पोषण देखभाल क्या है। यह गोद लेने की प्रक्रिया नहीं पर एक अस्थायी व्यवस्था है जहां बच्चा प्यार, सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है जब तक वो फिर से अपने जैविक परिवार में ना चला जाए। अगर आप भी किसी बच्चे के जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो आप भी पालक माता पिता बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भावी माता पिता की आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, और यदि अकेला व्यक्ति किसी बच्चे के पालक बनना चाहते हैं तो उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष तथा दोनों का सम्मिलित आयु 115 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन एकल पुरुष को बालिका नहीं दी जा सकती है। अगर आप पश्चिमी सिंहभूम जिला के निवासी हैं एवं आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र, पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो, पालक माता पिता शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो, परिवार हर बच्चे का अधिकार है, तो आइए जरूरतमंद बच्चों का हाथ बढ़ाइए और उन्हें एक अच्छा भविष्य दें। इस योजना के तहत जरूरतमंद इच्छुक परिवारों को मासिक 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाता है। अधिक जानकारी है तो जिला बाल संरक्षण इकाई 9955131364 या फिर 9090700489 पर संपर्क करें, या फिर जिला बाल संरक्षण इकाई जिला उपायुक्त का कार्यालय 3 ताला चाईबासा पर आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिला बाल संरक्षण इकाई पश्चिमी सिंहभूम द्वारा जन सूचना जारी। हमने जाना बच्चों मिशन वात्सल्य के बारे में।

0: चलिए एक नया चीज हम सीखते हैं। क्या नया है ना, हमने कहा था ना हम कुछ नया सीखेंगे। आप जनगणना करते हैं ना बच्चों, ये जनगणना जो आप करते हैं हमारी, ये हमारे जो राष्ट्रीय गान है उसके कुछ शाब्दिक अर्थ को हम जानेंगे आज, है ना। जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं, जन गण मन अधिनायक जय है, तो जन मतलब लोग है ना, गण मतलब समूह, मन मन, अधिनायक यानी कि बड़े बड़े व्यक्ति है ना, जय है यानी कि विजय हो, भारत मतलब भारत, भाग्य हमारा भाग्य, विधाता दाता। फिर हम कैसे कहते हैं, जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, तो पंजाब का पंजाब हो गया, सिंधु सिंध, गुजरात गुजरात, मराठा महाराष्ट्र, द्रविड़ दक्षिण भारत। मैं उन शाब्दिक अर्थ को बता रही हूँ, आप जरूर सीखिए बच्चों। उत्कल उड़ीसा, बंग बंगाल, विंध्य विंध्य पर्वत, हिमाचल हिमालय, यमुना यमुना नदी, गंगा गंगा नदी, उच्छल बहती हुई, जलधि यानी समुद्र, तरंग लहरें। तब फिर हम क्या बोलते हैं, तब शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे, तो फिर तब मतलब तेरा, शुभ शुभ मंगलमय, नाम नाम में जागे जागे है ना, तब तेरा शुभ शुभ हो मंगलमय हो, आशीष आशीर्वाद, मांगे मांगना मांगे है ना, गाए गाए हम सब गाए मिलकर, ठीक है। तब तेरा जय है विजय हो यानी कि आपकी विजय हो, गाथा गीत है ना कहानी गाथा, जन लोग, गण समूह, मंगलमय मंगल लाने वाला, दायक देने वाला, जय है विजय हो भारत भारत, भाग्य भाग्य, विधाता दाता। फिर अंत में क्या कहते हैं, जय है जय है जय है, तो विजय हो विजय हो विजय हो, ठीक है। सीखा आपने, तो हमारा जो जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता का, हमने जो इसमें जो कहा गया है हमारे लिए हम सब के लिए, उसका शाब्दिक अर्थ मैंने बताया, ठीक है। आपने सीखा ना, तो इसी तरह से हम लोगों को कुछ ना कुछ रोज दिन सीखना है। आपने सीखा बहुत अच्छी बात है, और आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमें खत लिखिएगा, है ना। तो चलिए फिर एक बार आपके दोस्तों से मुलाकात करते हैं।
1: सौम्या प्रभा सॉय है, मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरी अपनी प्रेरक प्रसंग मीठी हार को प्रस्तुत करना चाहूँगी। 13 साल पहले की बात है, एक छोटा सा परिवार रहा करता था, मगर एक दिन उस परिवार में एक छोटी सी बच्ची का जन्म होता है, और वो बच्ची थी मैं। परिवार में सबसे पहली बच्ची होने के कारण मुझे सबका लाड प्यार मिलता था। माँ मुझे रोज़ बाहों में भर कर लोरी गाकर सुलाती। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन एक मनहूस घड़ी आई जिसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। मेरी छोटी बहन पैदा हो गई, मुझे लगा कि ये खुशी का अवसर है, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं रात रात पर उस सेवा करती, उसे सुलाती, उसे लोरियां गा गा कर सुनाती, लेकिन मुझे एक दिन आभास हुआ कि मेरा परिवार मेरी जगह उसे ज़्यादा प्यार करने लगा है। मैंने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रही। एक दिन मैंने देखा कि मेरी माँ मेरी जगह उसे बाहों में भरकर मेरी लोरी सुना रही है, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब उसकी गलती के लिए मुझे ही डांट पड़ी। मैं इन सब चीज़ों से उभर पाती, इससे पहले ही मेरी एक और बहन पैदा हो गई। मुझे लगा कि मेरी तीसरी बहन के आ जाने से मेरी दूसरी बहन के साथ भी मेरी तरह अन्याय होगा और उसे पता चलेगा कि मुझे कैसा लगता था। लेकिन अब मेरा सारा प्यार उन दोनों को मिलने लगा था और मेरे लिए कुछ नहीं बचा। मैं अपना प्यार वापस लेने की बहुत कोशिश करती रही, लेकिन कोशिश करते करते सालों बीत गए, लेकिन परिवार का मेरे प्रति प्यार घटता ही गया। लेकिन एक दिन मैंने बदला लेने का सोचा। मैं असफल हुई, लेकिन कोशिश करती रही, मगर इससे परिवार का मेरे प्रति गुस्सा बढ़ता चला गया। मेरा दिल जिसमें कभी प्यार और पवित्रता हुआ करती थी, उसमें अब बहनों के प्रति जलन और ईर्ष्या भरी हुई थी। लेकिन एक दिन मैंने थक हार कर अपनी हार को स्वीकार कर गले लगा लिया। मुझे लगा था कि इससे मेरा दुख और दर्द बढ़ जाएगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। मेरे दिल का बोझ कम हो गया और मेरी बहनों से प्यार करने से मुझे मेरा प्यार वापस मिल गया। इससे मुझे सबसे प्यार करने की और अपने दिल से नफरत और ईर्ष्या को निकाल फेंकने की प्रेरणा मिली। धन्यवाद।

इसी प्यारे से गीत के साथ आज का हमारा नन्ही दुनिया का ये सफर यहीं समाप्त होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अंजू दीदी को दीजिए विदा। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: वेक्टर जनित रोग मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
2: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
1: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: क्या बात है सुनीता, बहुत परेशान लग रही है।
4: बहन, मेरी बिटिया का बुखार उतर ही नहीं रहा और आज गांव का चिकित्सा केंद्र भी बंद है।
3: अरे बहन परेशान मत हो, 104 नंबर डायल कर, जहां तुझे मिलेगी प्रशिक्षित सलाहकारों से चिकित्सा सलाह।
4: बहन, पर इतनी रात में कौन बात करेगा इस नंबर पर?
3: अरे झारखंड सरकार की ये 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली है।
5: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन, किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
7: हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको ना मिला वो इनको मिले।
8: बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान, बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल की IUCD
9: कंडोम,
8: गर्भ निरोधक गोलियाँ।
10: खुशी का मंजर रखना यार, दूसरा बच्चा 3 साल बाद।
11: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
12: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
13: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
12: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
14: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। रांची में ग्रामीण भारत महोत्सव का शुभारंभ, 28 राज्यों के हस्तशिल्पी ले रहे हिस्सा। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा, महोत्सव कारीगरों के लिए बेहतर मंच होगा साबित। राज्य में कैंसर इलाज के लिए 6 जगहों पर रेडिएशन सेंटर विकसित करने की योजना। 5 मेडिकल कॉलेजों में डे केयर और रेडिएशन सेंटर शुरू करने की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश भाजपा चलाएगी राज्यव्यापी सेवा अभियान। 17 सितंबर को जिला मुख्यालयों में लगेगा रक्तदान शिविर। 24 जिलों के भ्रमण के बाद रांची में भर्ती सुधार यात्रा का समापन। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार मांग की को लेकर युवाओं से सहयोग की अपील। और रांची में बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार। वहीं जामताड़ा पुलिस ने 5 साइबर अभियुक्तों को 11 मोबाइल और 13 फर्जी सिम के साथ पकड़ा। और अब समाचार विस्तार से। रांची में नाबार्ड ग्रामीण भारत महोत्सव सह क्लासिक एक्सपो के 4th संस्करण का उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने किया। 10 दिवसीय यह आयोजन 20 सितंबर तक रांची में आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि झारखंड में महोत्सव का आयोजन गर्व का विषय है और यह देश भर के कारीगरों को बेहतर मंच उपलब्ध कराएगा।
15: नाबार्ड लगातार ऐसे आयोजन स्टेट कैपिटल्स में करते रहे, रांची में भी यह छठा है और इसका काफी इंतजार करते हैं रांची के लोग, खास करके कि रेडिसन में होने वाले इस कार्यक्रम में वो आए, जहां उन्हें हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट जिसकी आज बहुत वैल्यू है और यहां क्वालिटी भी इंश्योर हो जाता है, क्योंकि मोस्टली जो यहां प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग राज्यों से आए लोग आर्टिजन, उनके पास GI टैग प्रोडक्ट्स हैं।
14: राज्य में कैंसर मरीजों को इलाज के लिए दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़े, इसके लिए 6 जगहों पर रेडिएशन सेंटर विकसित करने की योजना है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस योजना की समीक्षा की गई। पहले चरण में जमशेदपुर, धनबाद और दुमका तथा दूसरे चरण में रांची, हजारीबाग और पलामू को शामिल करने का प्रस्ताव है। सभी 5 मेडिकल कॉलेजों में पीपीपी मोड पर कैंसर डे केयर और रेडिएशन सेंटर शुरू करने की भी तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राज्य भर में व्यापक सेवा अभियान चलाया जाएगा। झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने बताया कि 17 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों में रक्तदान शिविर आयोजित होंगे। इसके बाद 21 और 29 सितंबर से आंगन मिलन सेवा, वाराणसी सेवा यात्रा और सेतु अभियान शुरू किए जाएंगे।
9: प्रधानमंत्री जब सत्ता के प्रधान सेवक के रूप में जब प्रधान कुर्सी को संभाला तो उन्होंने पहले दिन कहा था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित सभी समाज सभी वर्ग को समर्पित सरकार बने और उसके बाद अनेक प्रकार के कल्याणकारी योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार 12 वर्षों तक चल रहा है और आगे भी चलेगा।
14: जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो को 18वीं लोकसभा के बजट सत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए लगातार 5वीं बार संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। सांसद महतो ने सम्मान के लिए जमशेदपुर की जनता का आभार जताया और कहा कि इससे उन्हें जनहित के मुद्दों को और मजबूती से उठाने की प्रेरणा मिलेगी।
16: लोकसभा के एक एक जनता को मैं इस वार्ड को समर्पता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हर वक्त हर समस्या से अवगत करने का काम किया, जिसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से सदन में रखने का काम किया। उसके लिए कमेटी होता है, पूरा लोकसभा राज्यसभा इसमें खंगाला जाता है। जो टॉप में आते हैं 10-11 आदमी उसी को दिया जाता है। इसमें 5वीं बार लगातार मिला।
14: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को ज्ञापन सौंपकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की अवधि 1 माह बढ़ाने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रारूप मतदाता सूची जारी होने के बाद जारी किए गए नोटिस की तुलना में अब तक हुई सुनवाई की संख्या काफी कम है। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकर देवेंद्रनाथ महतो के नेतृत्व में निकाली गई भर्ती सुधार यात्रा आज रांची पहुंची और समाप्त हो गई। करीब 2 सप्ताह तक राज्य के 24 जिलों का भ्रमण करने के बाद मोरहाबादी मैदान से रैली निकाली गई, जो अल्बर्टिका चौक होते हुए भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पहुंची। देवेंद्रनाथ महतो ने युवाओं और छात्रों से भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के अभियान में सहयोग की अपील की। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची समेत देश भर में सरकारी और कुछ निजी बैंकों के कर्मचारी आज एक दिवसीय हड़ताल पर रहे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने की मांग को लेकर यह हड़ताल की। हड़ताल के कारण बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हुई, जबकि UPI, मोबाइल बैंकिंग और ATM सेवाएं जारी रही।
17: अभी फिलहाल 2 है। पहला तो है कि बैंक का जो 5 डेज जो हमारे IBA के द्वारा समझौता हो चुकी है अभी तक ले लागू नहीं किया गया, सरकार की यहाँ जाके फाइल अटकी हुई है। दूसरी मांग यह है PLI किस तरह से हम लोग के बैंक में लाए गए, जो एकदम बहुत ऊंच नीच का भेदभाव है।
14: रांची में SSP राकेश रंजन के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत लोअर बाजार थाना पुलिस और टाइगर मोबाइल टीम ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की कई बाइक बरामद की हैं। पुलिस के अनुसार ये बाइक सदर अस्पताल परिसर से चोरी की जा रही थी। साथ ही ब्राउन शुगर और गांजा तस्करों के खिलाफ भी अभियान तेज किया गया है। जामताड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नारायणपुर और कर्माटांड थाना क्षेत्र से 5 साइबर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शंभु कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्तों के पास से 11 मोबाइल और 13 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं।
18: छापेमारी की गई, वहाँ से 3 साइबर अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इसी क्रम में फिर जो कर्माटार में इसी टीम के द्वारा छापेमारी किया गया, जिसमें वहाँ से 2 साइबर अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इस प्रकार कुल 3 और 2 5 अपराध कर्मी गिरफ्तार हुए। अभी अनुसंधान के क्रम में कई महत्वपूर्ण तथ्य आए हैं, इस पर और विशेष रूप से हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं।
14: बोकारो में तेलमच्चो ब्रिज से सेक्टर 6 तक 47 करोड़ की लागत से 4-लेन सड़क का शिलान्यास धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने किया। इस अवसर पर सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि 4-लेन सड़क के निर्माण से गोला, पेटरवार और रांची की ओर जाने वाले लोगों को करीब 15 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ेगी।
19: दामोदर ब्रिज चौक से मिश्रा पंप से सीधे 4-लेन का आयोजन हम लोगों ने किया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो राज्य सरकार से भी सहयोग है और मिलकर हम लोग इसको काम को करेंगे। पर ये रोड बन जाने से लोगों का 10 से 15 किलोमीटर दूरी का कम तय करना होगा, यहाँ से रांची जाने के लिए, गोला जाने के लिए, पटवार जाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि सारे लोगों का सहयोग से आज ये रोड बन रहा है।
14: रांची में यातायात व्यवस्था सुगम बनाए रखने को लेकर पुलिस अधीक्षक यातायात की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में आगामी गणेश पूजा, कर्मा, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ और अक्टूबर में क्रिकेट मैचों को देखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ब्लैक शीशे, फैंसी नंबर प्लेट, तेज हॉर्न, रैश ड्राइविंग, नशे में वाहन चलाने और क्षमता से अधिक यात्रियों के परिवहन पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर हल्की व मध्यम दर्जे की बारिश जारी है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार कल राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात की संभावना है। रांची में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश और गरज चमक की स्थिति बनी रह सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची में ग्रामीण भारत महोत्सव का शुभारंभ, 28 राज्यों के हस्तशिल्पी ले रहे हिस्सा। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा, महोत्सव कारीगरों के लिए बेहतर मंच होगा साबित। राज्य में कैंसर इलाज के लिए 6 जगहों पर रेडिएशन सेंटर विकसित करने की योजना। 5 मेडिकल कॉलेजों में डे केयर और रेडिएशन सेंटर शुरू करने की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रदेश भाजपा चलाएगी राज्यव्यापी सेवा अभियान। 17 सितंबर को जिला मुख्यालयों में लगेगा रक्तदान शिविर। 24 जिलों के भ्रमण के बाद रांची में भर्ती सुधार यात्रा का समापन। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार की मांग को लेकर युवाओं से सहयोग की अपील। और रांची में बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार। वहीं जामताड़ा पुलिस ने 5 साइबर अभियुक्तों को 11 मोबाइल और 13 फर्जी सिम के साथ पकड़ा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
20: बहन, मेरा बबलू तो ठीक से खाता पीता ही नहीं है, बार बार बीमारियां उसे घेर लेती हैं। समझ ही नहीं आता क्या करूं, किससे सलाह लूं?
21: अरे बहन, 104 नंबर डायल कर, जहां पर तुझे बच्चों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित चिकित्सकों से उचित सलाह मिलेगी।
20: 104 नंबर, वो क्या है बहन?
21: 104 है झारखंड सरकार की स्वास्थ्य संबंधी हेल्पलाइन।
22: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
23: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
24: माँ, मुझे भी सब्जी दाल दो ना।
25: नहीं, तू ऐसे ही खा, इसे भैया को खाने दे।
26: अरे अरे, आप ये क्या कर रही हैं?
27: बढ़ती बच्ची किशोरियों के साथ खान पान में भेदभाव ना करें।
26: किशोरावस्था में लड़कियों का विकास तेजी से होता है,
27: उनमें कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं,
26: माहवारी प्रारंभ होती है,
27: उन्हें अच्छा और उचित पोषक आहार की आवश्यकता होती है।
26: याद रखें, स्वस्थ बालिका ही भविष्य में स्वस्थ माँ बन सकती है।
23: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
28: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे कोडरमा संवाददाता।
1: सितंबर महीने के शुरुआती दिनों में कोडरमा जिले के अलग अलग इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश के कारण तिलैया डैम और पंचखेरो जलाशय के अलावे जिले के तमाम नदी तालाबों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। वहीं बारिश के कारण चंदवारा प्रखंड के कई इलाकों में गौरी नदी का पानी घरों में घुस गया है। बारिश का पानी घरों में घुसने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल जमाव की समस्या झेल रहे लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है।
2: तीन चार दिन से बारिश हो रहा है, जिसके कारण से घर में पूरा पानी हो गया है। हम लोग खाना पीना तीन चार दिन से नहीं खाए हैं। कच्चा चूल्हा है, गैस है, सब भींग गया है और हम लोग का जो भी आवास है वो थोड़ा कच्चा है। बारिश के कारण गीला बहुत ज़्यादा हो गया है। तिरपाल के सहारे हम लोग रह रहे हैं और अभी तक हमें कोई आवास वगैरह नहीं मिला है। अभी मिल जाता तो थोड़ा कुछ सहयोग हो जाता।
3: पानी भर दिया मेरा घर में। बच्चा अच्छा का खाना नहीं दे रहे हैं, बना के स्कूल नहीं को जा रहा है। बच्चा लोग ढेर हम लोग तकलीफ में, हम लोग के कच्चा घर है, कुछ हमको डला दीजिए।
1: जेपीएससी और बीएसएससीएल परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन के बाद उन पर दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। इस क्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब दिल्ली में आंदोलन हुआ था तो राहुल गांधी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए प्रधानमंत्री के आवास के सामने धरने पर बैठ गए थे, लेकिन झारखंड में आंदोलन छात्रों को देखने तक नहीं पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस पर दोहरा चरित्र का भी आरोप लगाया।
4: हम सब देखे, जब दिल्ली का था तो दिल्ली में प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए नेता प्रतिपक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने वो आ गए, धरना पे वो बैठ गए। लेकिन वही जब झारखंड में बच्चे अनशन पर थे, जब प्रदर्शन झारखंड के बच्चे कर रहे थे और छात्र बहुत शालीनता पूर्वक कर रहे थे, वहां किसी ने झांका नहीं। ना कांग्रेस के नेता एक दिन वो वहां पे पहुंचे, वहां राहुल गांधी जी को नहीं दिखाई दिया कि झारखंड भारत देश का ही एक अभिन्न अंग है। तो चूंकि वो इसलिए नहीं आए कि यहाँ उनकी सरकार यहाँ समर्थन दी हुई है, तो जब समर्थन जहाँ उनकी सरकार दे रही है वहां कुछ भी हो वो सही है, जहाँ सरकार नहीं है वहां गलत है। तो ये दोहरी नीति देश की जनता जानती है। का जो केस हुआ है छात्र पर इस आंदोलन में, निश्चित रूप से ये केस हटना चाहिए और वो बहुत शालीनता पूर्वक अपनी बात को रख रहे थे।
1: अपराध नियंत्रण और बेहतर पुलिसिंग को लेकर राज्य पुलिस मुख्यालय की ओर से कोडरमा पुलिस को 14 चरपहिया वाहन दिए गए हैं। इन सभी वाहनों को कोडरमा जिले के विभिन्न थाना और ओपी के सुपुर्द कर दिया गया है। इस मौके पर कोडरमा एसपी कुमार शिवाशीष ने कहा कि इन वाहनों के जरिए पुलिस की गश्ती और बढ़ेगी, साथ ही किसी मामलों को लेकर कोडरमा पुलिस के रिस्पॉन्स टाइम में भी कमी आएगी।
5: झारखंड सरकार के द्वारा हमें प्रथम चरण में 14 चार पहिया गाड़ियां और 20 बाइक्स मिले थे और आज दूसरे चरण में हमें 14 अतिरिक्त बोलेरो मिले थे। इसके लिए हम झारखंड सरकार के बहुत आभारी हैं, क्योंकि इसके कारण हमारा पेट्रोलिंग इंप्रूव हो जाएगा। जो हमारा रिस्पांस टाइम है कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का, जो ऑलरेडी स्टेट के टॉप 3 में रहता है 8 मिनट 40 सेकंड का, उसको हम लोग और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इससे हमारी गश्ती भी और प्रभावी होगी।
1: इससे पहले भी राज्य पुलिस मुख्यालय की ओर से दर्जनों चरपहिया वाहन और मोटरसाइकिल कोडरमा पुलिस को दिए गए थे। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा।
0: अभी आप सुन रहे थे कोडरमा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जिले में आजकल आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब प्रस्तुत है श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।

कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और लेते हैं ये पहला खत जो हमें भेजा है बेरडी से। हुकुम कर्मकार, सुनीता कर्मकार, हार्दिक कर्मकार, प्राची कर्मकार, तनु कर्मकार, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, मेहरनगर उमरखेर महाराष्ट्र से अभिजीत गवहानकर, राही श्रीमती सरिता गवहानकर, प्रिंस एकांश गवहानकर, श्रीमती वैशाली शैलेश गवहानकर, श्वेता सुमित गवहानकर, कुमारी ध्वनि गवहानकर परी, कोठवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, अमरावती महाराष्ट्र से मुकेश दिनकर कांसलेकर, विमल विशाखा कांसलेकर, ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर, बेड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर, धीरज सवासेरे, दुर्गाई सैलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता परभनी से सी आर कुलकर्णी। आप सबों की पसंद पर सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में फिल्म दिल है कि मानता नहीं का ये शीर्षक गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म दिल है कि मानता नहीं का ये शीर्षक गीत, आवाज़ अनुराधा पौडवाल की। और इसी गीत को सुनना चाहा था बड़ा निमड़ी चाईबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मितु रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार, शुभम कुमार, मोहल्डिया सोनुआ से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी वंदनी, संतोषी दीपक संतोष, राहुल अनु तनु भाई नंदु महतो, मेन रोड सोनुआ से गुरुचरण नायक, अनुसुईया नायक, सागरिका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन महतो और किशोर महतो। और अब कार्यक्रम में अगला गीत सुनवा रहे हैं फिल्म द ट्रेन से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, संगीतकार आरडी बर्मन। पसंद आप सबों की है सरायकेला पारापुर देशावली ग्राम बहारपुर से शिवम शिवाजी मुंडरी, सुरुमानी मुंडरी, हीरामानी मुंडरी, हिमांती मुंडरी, डोबरो मुंडरी, साजन मुंडरी, सिद्धेश्वर मुंडरी, पारापुर शिवाजी, डोबरो मुकेश, कुशल मुंडरी, जानुम सिंह मुंडरी, सिद्धि बोस सोना बाबू और एफएम शिवा मुंडरी, सेंटोला चाईबासा से भोला राम मधुर, बेबी देवी नताशा, बड़ी बाजार चाईबासा से विनोद कुमार, पवन मीना पवन, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नौनीत भाटिया, पप्पी भाटिया, न्यू कॉलोनी निमडी चाईबासा से ठाकुर प्रसाद, रंगीला, निर्मला देवी, अर्चना राम, अनीस, अंश, अंशु और मुन्ना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म द ट्रेन का ये गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की। और इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम आपकी पसंद अब हम यहीं समाप्त करते हैं।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद, और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट मैच 2026 के अंतर्गत पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले दूसरा सेमीफाइनल क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं फौजी साथियों का कार्यक्रम जय माला। ये स्वर है मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के। फिल्म का नाम है अप्रैल फूल। गीतकार हसरत जयपुरी हैं। संगीत शंकर जयकिशन का है।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था ये गुलिस्ता हमारा। बोल आनंद बख्शी के थे और धुन सचिन देव बर्मन की थी। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। ये है इस कार्यक्रम की आखिरी भेंट, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, फिल्म का नाम हिम्मत।

0: अनमोल यादें, अनमोल यादें, नमस्कार श्रोताओं, अनमोल यादें, अनमोल गीतों की यादों का ये जो कार्यक्रम है, ये जो श्रृंखला चल रही है, इसके 10वें एपिसोड में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और स्वागत करते हैं, हमारे साथ हैं फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर जी। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्ते जयंत जी।
0: तो राजीव जी, आज के एपिसोड में क्या लेकर के आए हैं आप?
1: देखिए, फिर से मैं ये बात दोहराऊंगा जो मैंने कुछ एपिसोड पहले बात कही थी
0: जी, जी।
1: कि नए फिल्मों के गाने जो है वो एक अलग ही दौर आ गया है, जिसमें प्रमोशंस नाम के वजह से म्यूजिक कंपनीज अपने आप चुनते थे कि किस गाने को प्रमोट करना है। मतलब उनके हिसाब से जो पॉपुलर हो सकते थे गाने, और
0: उन्हीं गीतों को लिया जाता था।
1: जी हाँ, उनसे जी। उनकी कमाई भी हो सकती थी क्वालिटी उनके जमाने में या सीडीज के जमाने
0: जी,
1: में
0: जी, जी।
1: लेकिन वैसे उसी कारण के वजह से कुछ अनमोल यादें हमने खो दी, अगर हमने उस वक्त याद नहीं रखी। तो मैंने ये दो गाने 2000 के बाद के आज के श्रृंखला में चुने हैं।
0: अच्छा,
1: लेकिन हम शुरुआत करते हैं उस 80s के गाने से।
0: हाँ।
1: जिसके बाकी के गाने बहुत चले, जिस फिल्म के बाकी के गाने बहुत चले, फिल्म भी बहुत चली। राकेश रोशन की पहली प्रोडक्शन कामचोर।
0: कामचोर, हाँ।
1: और कामचोर में अगर आप देखेंगे तो पूरा हिट परेड था।
0: जी जी बिल्कुल।
1: उसमें एक गाना जो है वो थोड़ा बहुत कम चल गया, और बाकी उसमें से एक गाना था वो थोड़ा कम चला और बाद में दब भी गया। बहुत ही मीठा प्यारा गाना था, बहुत ही प्यारी मेलोडी थी, इंदिवर जी का लिखा हुआ ये गाना,
0: और राजेश
1: रोशन का म्यूजिक
0: जी जी,
1: किशोर और लता मंगेशकर की आवाज,
0: और गीत के बोल हैं तुम मेरे स्वामी
1: जी।
0: आइए सुनते।

0: कामचोर फिल्म का ऐसा गीत जो बहुत कम सुना जाता है और जिसका जिक्र भी नहीं होता, हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया। और अब 2000 के बाद की फिल्मों के दो गीत आप सुनवाने वाले हैं राजीव जी।
1: जी हाँ, आपने वो जो बहुत ही जबरदस्त मेलेडी सुनी आपने, हाँ, कामचोर फिल्म में,
0: जी जी,
1: उसी मेलेडी की तरफ मैं फिर से लेके जा रहा हूँ। उसी तरह की बड़ी ही जबरदस्त, बड़ी ही गहरी मेलेडी, और ये गाना अनु मलिक जी ने कंपोज किया है।
0: अच्छा,
1: ले

0: डोलियों में तुम्हें, जिसे रूप कुमार राठौड़ और चित्रा जी ने गाया है फिल्म फिलहाल के लिए। फिलहाल का जो शीर्षक गीत था आशा जी ने गाया हुआ,
1: जी,
0: वो
1: जी।
0: बहुत चला। ये गीत फिर से मेरे रोंगटे खड़ा करता है।
1: आइए सुनते हैं।

0: फिलहाल फिल्म का वो गाना जो बहुत कम सुना गया हमने सुना। और राजीव जी, आज के एपिसोड का आखिरी गाना कौन सा होगा?
1: देखिए, ये सारे गाने अनकहे गाने भी बोल सकते हैं। और हाँ, मेरा अगला गाना अनकही फिल्म से है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: जो 2006 में आई
0: जी,
1: और उसमें बड़ा ही प्यारा गाना है। बहुत ही कम गाने लिखने वाले इसके लिरिसिस्ट थे, सुब्रत सिन्हा। लेकिन मार्केट लीडर, जो आज भी मार्केट लीडर है, प्रीतम साहब का कंपोज किया ये गाना। कुणाल गांजावाला ने गाया है, तुमसे यूं मिलेंगे हमने सोचा न था।
0: आइए सुनते हैं अनकही फिल्म का ये गाना।

0: क्या बात है, अनकही फिल्म का ये जो गीत हमने सुना, तुमसे यूं मिलेंगे हमने सोचा भी न था, और हमने भी नहीं सोचा था कि इस तरह के गीतों की यादों से हमारी मुलाकात होगी, और बहुत खूबसूरत ये सिलसिला अनमोल यादों का चल रहा है। अगले एपिसोड में अपने श्रोताओं से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए श्रोताओं, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: अनमोल यादें, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अनमोल यादें।

हवा महल में आज प्रस्तुत है श्री बी आर गुदगुदी की लिखी मूल कन्नड़ नाटिका का हिंदी रूपांतर शकुन का शीनू।

0: सरसू, सरसुती, ए सरसू, जरा जल्दी यहाँ आओ।
1: आती हूँ।
2: क्या है ये सुबह सुबह, क्या है, क्यों चिल्लाते हो? तुम तो ऐसा चिल्लाते हो जैसे कोई सर पर आसमान फट पड़ा हो। कहो क्या बात है?
0: ओहो, क्यों बिगड़ती हो सरसू? वो देखो उधर, उस खिड़की के उस पार, उस पेड़ पर।

0: पेड़ पर?
1: हाँ।
0: क्या है? अरे होगा कोई काला बंदर। क्यों जी, उसको दिखाने के लिए ये सब करना था तुम्हें? है तुम्हारा ये चिल्लाना सुनकर तुम्हारे सातों पुत्र पुत्रियां जागेंगे और घर में संगीत सभा रचाएंगे। मुझे क्या चैन से काम करने देना है या नहीं?
1: देखो सरसू, तुम यूं ही बिगड़ जाती हो। जो तुम्हें पेड़ पर दिखाना था वो काला बंदर नहीं, इसीलिए कहता हूँ कि तुम्हें अकल कम है। वो देखो आंख फड़फड़ाता हुआ बैठा है। उसी के बारे में कहना था मुझे। हाय राम, आज क्या अशुभ समाचार मिलेगा? मैं सोच रहा था कि सुबह सुबह सूर्य नारायण के दर्शन लेकर उनको नमस्कार करूं, मगर देख रहा हूँ इस अनिष्टकारी उल्लू को। मेरे नाना जी कहते थे कि उल्लू जैसा मनहूस अनिष्टकारी दूसरा कोई है ही नहीं। अगर सुबह सुबह कोई अनिष्टकारी उल्लू को देख ले तो समझ ले कि किसी बड़ी विपत्ति का उस दिन उसे सामना करना पड़ेगा। हाय राम, अब मैं क्या करूं, क्या करूं?
0: वाह भाई वाह, इस इलेक्ट्रॉनिक के इस युग में तुम तो जामवंत के युग की बात कर रहे हो।
1: ओहो
0: जी, आपको मालूम नहीं कि रोज हमारा नौकर सुबह उठकर पिछवाड़े में काम करते समय उस उल्लू को देखता ही रहता है, फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ। जी, ये सब पागलपन छोड़िए ना।
1: नहीं जी, ये कैसे हो सकता है? पहले मैं इस मनहूस उल्लू को यहाँ से हमेशा के लिए भगा देने का प्रबंध करूंगा। उसको आज ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा, ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि फिर एक बार भी इधर झांकने का नाम नहीं लेगा।
0: हाय मेरे भाग्य। अरे देखो जी, ये उस तरह मचाना, पिछवाड़े में बहुत कांटे हैं। अरे उस उल्लू को उसके हाल पर छोड़ दो, व्यर्थ समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? अरे जी सुनो तो। ओ, कुछ भी करो, तुम तो मेरा कहना मानने वाली नहीं। तो मुझे तो अंदर बहुत काम पड़ा, मैं जाती
1: हूँ। हाय भगवान, हाय भगवान, मर रहे। अरे सर पता जा रहा है, कोई है? सरसू, सरसू आओ जल्दी से, मैं मर जाऊंगा नहीं तो। एक लोटा पानी लेती आओ, पानी।
0: फिर हम, ये क्या हो गया? बदन सब खून से भरा हुआ है। हम, ये क्या कर रहे हो तुमने? ये मैं जो कह रही थी उसको तुमने नहीं सुना, और ये बुद्धूपन का काम किया तुमने। देखो जोर से घाव को पकड़ लो, मैं अंदर जाकर अभी कपड़ा ला दूँ। ठीक है। क्यों जी, तुमने उस उल्लू को पाठ पढ़ाने के बदले खुद पाठ पढ़ लिया ना?
1: सरो, तुम हमेशा सभी बातों को हंसी मजाक समझती हो। मैंने तो पत्थर का निशाना उल्लू को ही बनाया था, मगर वो पत्थर थोड़े में ही फिसल कर पेड़ की उस टहनी से टकरा कर वापस मेरे सर को लग गया।
0: ऐसा कह रहे हो कि जैसे तुम अर्जुन के वंशज हो और तुम्हारा निशाना हमेशा बराबर ही लगता।
1: सरो, मैंने जब से इस मनहूस उल्लू को देखा है तब से ही मनहूस समय का अनुभव कर रहा हूँ। पता नहीं सरू, पता नहीं, मुझे मुझे आज एक तरह की घबराहट सी हो रही है।
0: ओफो, क्या हुआ है जी तुम्हें? तुम्हें क्यों घबराहट होने लगी? तुम्हारी इस तरह की घबराहट को मिटाने के लिए कोई दवा किसी कंपनी ने नहीं बनाई है। बस चलो, अब बहुत हो चुका।
1: सरू, तुम नहीं जानती मेरे मन में क्या हलचल मच रही है।
0: वो क्या है?
1: सरू, कल रात पड़ोस के घर का कुत्ता रोता था और उसमें वर्षा भी नहीं थी, उसी समय घर के छत पर बिल्ली भी रोती थी।
0: हाँ, और आज उस उल्लू के सुबह सुबह ही दर्शन करने पड़े।
1: हाँ।
0: इसीलिए हमारे नाना जी कहते थे कि ये सब अशुभ शकुन किसी अनिष्टकारी आपत्ति की सूचनाएं हैं, यही ना?
1: तुम तो मेरी सभी बातों को मजाक ही समझती हो। कल मैंने सपने में क्या देखा मालूम है? कल
0: क्या?
1: मैंने सपने में माँ को कुएं में गिरते देखा।
0: वाह वाह।
1: माँ कुएं से पानी उठा रही थी, यकायक रस्सी टूट गई। घड़ा कुएं में गिरते ही माँ भी उसके साथ ही कुएं में गिर गई। इसीलिए मैं डरता हूँ कहीं ये सब अशुभ शकुन माँ पर कुछ असर ना करें।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, तुम्हारे तर्क का भी जवाब नहीं। अजी, तुम्हारे घर में पानी लाने के लिए टूटी हुई रस्सी ही हमेशा इस्तेमाल होती है। हमेशा माँ यही कहती थी कि इस घर में नई रस्सी शायद तभी आएगी जब तक कि शायद कोई कुएं में गिर ना पड़े।
1: ओ, ओ, सरसू।
0: पर सुनो, उसी विचार को तुमने अपनी खोपड़ी में रख लिया है और सपने में उस आपत्ति का साक्षात्कार कर लिया। बस यही है आपके मन का भ्रम।
1: नहीं भाई नहीं, तुम नहीं जानती। तुम्हें तो मालूम है कि माँ के बीमार होने का पत्र पिताजी से आया था और उसमें ये भी लिखा था कि बीमारी और बढ़ गई तो वो तार भी भेजेंगे।
0: ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, इसीलिए साहब को घबराहट हो रही है।
2: माँ, माँ, माँ स्कूल जाने का समय हो रहा है, कुछ खाने को दो ना माँ।
1: सरू अगर माँ को कुछ हो गया तो धत तेरी की छींक दिया। क्यों मेरे शैतान के बच्चे, तुझे एक ही बार छींकना था क्या? चल जल्दी एक बार और छींक छींक छींक, नालायक कहीं का।
2: कोशिश तो करता हूँ बापू छींकने की, लेकिन नहीं हो सकता।
1: नहीं हो सकता, निकम्मा कहीं का। मैं कहता हूँ निकल जा यहाँ से, निकल
0: जा। सोची उस बिचारे पर क्यों बिगड़ते हो?
1: तू चुप रह, तुझे तो हमारे संप्रदाय सभ्यता सभी ठकों से डिग पड़ते हैं। हाय प्रभु, मेरी रक्षा तुम्हें करना प्रभु।
3: ठीक है महाशय, वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे, पर अब क्या तुम तौलिया लेकर नहा कर मेरी रक्षा करोगे? सुनो समय बीता जा रहा है।
1: ठीक है देवी जी, तुम्हारी तो माननी ही पड़ेगी। देखो सरू, एक कप स्ट्रॉन्ग कॉफी का तो बना दो, मेरा तो सर फटा जा रहा है। मैं यूं गया और नहाकर यूं आया।
4: हाय भगवान, मैं मर गया। जल्दी आओ सरू, मैं गिर गया। हाय मेरा हाथ पांव टूट गया।
2: हाय क्यों जी?
4: हाय मेरा हाथ पांव टूट गया।
2: कैसे गिर गए? ओहो मैं समझा कि कोई पुराने पेड़ गिरा। तौबा है, मैं तो तुम्हारी इन सब हरकतों से।
1: अरे देखो तो सही, उस कोने में देखो, उस दरिद्र उजली छिपकली को, वो मेरी बाईं ओर गिरी और मैं उससे बचने के लिए थोड़ा इधर उधर हिलने लगा तो साबुन से पांव फिसल कर गिर पड़ा। ओहो मेरा वो पांव ही टूट गया। हाय भगवान, हाय भगवान, मैं क्या करूं?
3: तुम्हारी अकल का भी जवाब नहीं। छिपकली दाईं ओर पड़े या बाईं ओर, तुमने तो अकलमंदी दिखाने जाकर पांव तोड़वा लिया। ये शकुन का भूत कहीं तुम्हें था ही नहीं।
1: क्या कहती हो जी, तुम नहीं जानती कि छिपकली का शकुन बहुत भयंकर होता है? मेरे नाना जी कहते थे कि छिपकली का शकुन सूर्योदय सूर्यास्त जैसे सत्य होता है।
3: मैं कहती हूँ छोड़ो जी। क्यों जी, मैं पूछती हूँ कि क्या तुम्हारे नाना जी ने जीवन भर तुम्हें शकुन के बारे में ही पाठ पढ़ाया है क्या?
1: जाने दो सरू, अब इस छिपकली के स्पर्श के परिहार के लिए कुछ व्यवस्था करो। हाँ मुझे याद आया, परसों में गाय का घी लाया था ना सरू, उसको डालकर एक दिया जलाओ और उस दिए को भगवान के सामने रखो। तुम नहीं जानती सरू, इससे पीड़ा का परिहार हो जाता है।
3: बड़े आए घी का दिया चलाने वाले, यहाँ तो बच्चों को तेल भी नसीब नहीं और ये चले हैं गाय के घी का दिया चलाने।
1: सरू,
3: वो क्या भगवान एक ही दिया जलाने से संतुष्ट नहीं होते? बस बस बस, जल्दी स्नान समाप्त करो।
1: ठीक है बाबा, करता हूँ। जय गंगा जय।
3: क्यों जी, स्नान कर लिया?
2: ठीक, अब भगवान के सामने दिया जला हुआ रखा है, जाओ।
3: हाँ और कॉफी भी तैयार है।
1: सरू
3: क्या है?
1: अमावस्या परसों ही होने वाली है ना?
3: हाँ तो क्या हुआ?
1: वो इसलिए कहता हूँ, वो बस मनहूस कुत्ता रात भर रोता रहा। हाय भगवान, मेरी माँ की रक्षा करो।
3: मेरी समझ में नहीं आता कि कुत्ते के रोने का और माँ की तबीयत से क्या संबंध है।
1: ओहो सरू,
3: वो मैं कहती हूँ छोड़ो जी, बेकार क्यों सोचते हो? कुछ नहीं होगा माँ को, अगर कुछ होगा भी तो अस्पताल ले जाएंगे, दवा दिलवाएंगे, उससे माँ ठीक हो जाएंगी। जल्दी जलपान कर लो और डाक खाने जाकर ट्रंक कॉल करो, माँ की तबीयत की पूछताछ करो और आते समय बाजार से सब्जी भी लेते आना।
1: अच्छा लाओ कॉफी, मैंने पूजा भी कर ही ली है। ये बिल्ली क्यों मेरे सामने से चली? इसका हमारे घर का दूध ही मुंह लग गया है, मनहूस कहीं की।
5: पोस्टमैन नमस्ते श्रीनिवास जी, आपके लिए तार है।
1: तार? हाथ पांव ठंडे पड़ गए। देखो भाई ये तार मेरा ही है ना, और एक बार देखो तो सही।
5: मैंने अच्छी तरह से देख लिया है, ये तार आपका ही है।
1: ये क्या ही सुबह सुबह मुसीबत। भाई मुझे जरा बता देना ये तार कहाँ से आया है।
5: घटक प्रभा से आया है। अच्छा साहब मैं चलता हूँ, सलाम साहब।
1: हाय भगवान, ये डाकिया क्या लाया सुबह सुबह? माँ की हालत बिगड़ गई होगी, माँ को घटक प्रभा ले गए होंगे। हाय मेरी माँ, हाय मेरी माँ मर गई। ओह सरू,
4: ए सरू जल्दी आओ। हाय भगवान ये क्या क्या तूने, सरू सरू आओ, मेरा सत्यानाश हो गया, मैं जैसा सोचा था वैसे ही हुआ। हाय भगवान मुझे अनाथ बना दिया, मुझे अनाथ बना दिया भगवान।
6: क्यों रो रहे हो?
4: आजा गोपी आजा बेटे, तुम्हारी दादी चल बसी।
6: दादी चल बसी, पिता जी को तार आया है।
0: सच? हाय राम, क्यों जी, क्या ये खबर सच है? हाय राम, ये क्या हुआ? खैर जाने दीजिए ना, धीरज रखिए। देखिए माँ जी की भी तो उम्र काफी थी, भगवान की चाहत के सामने किसका बस चलता है। माँ जी तो बहुत अच्छी थी, मुझे तो बहुत ही चाहती थी। क्यों जी और क्या लिखे है जी तार में?
4: और क्या लिखना बाकी है, आखिर में वो अनिष्टकारी शकुन ने अपना प्रभाव दिखा ही दिया है।
0: वो देखो आपके मित्र रामचंद्र जी आ गए।
4: कोई आया हो तो अब क्या होने वाला है, जो होना था वो तो हो चुका है।
5: क्या हुआ भाभी जी, शिनू को क्या हुआ, ये क्यों रो रहा है?
0: भाई साहब इनके घर से तार आए हैं, उसमें उनके माँ जी के गुजर जाने का समाचार लिखा हुआ है।
5: ये तो बहुत बुरा हुआ।
4: हाँ रामू, अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मैंने माँ के अंतिम दर्शन तक नहीं किए। नहीं
5: रो मत शिनू, रो मत, धीरज रख, लाओ ये टेलीग्राम मुझको दो। प्रमोटेड एंड ट्रांसफर्ड एंड ऑल आर वेल इन। क्या भाभी जी आप भी इस बुद्धू की बातों में आ गई?
0: क्यों?
5: इस तार में ये लिखा है कि तुम्हारे बेटे को इंजीनियर की पदोन्नति मिली है।
0: क्या?
5: हाँ प्रमोशन।
4: प्रमोशन
5: और घटक प्रभा को बदली हो गई है, यानी कि ट्रांसफर। तुम लोग तो बिना तार पढ़े ये सब हंगामा मचा रहे हो। गोकाक के सभी लोग सकुशल हैं, इस तार में ये भी लिखा हुआ है।
0: क्यों जी, बिना तार पढ़े ये सब गड़बड़ी पैदा की गई? मुझे क्या मालूम था रामचंद्र भैया, मैं समझी थी कि ये तार पढ़कर ही मुझे बता रही है।
4: हाँ रामू, सचमुच माँ को कुछ नहीं हुआ क्या?
5: ये क्या कर रहे हो शिनू, गंवार जैसी हरकतें। उठो मुंह धोकर आओ पहले, मैं तुम्हें मानसिक रोग चिकित्सालय ले जाकर तुम्हारे दिमाग का इलाज करवाऊं। तुम तो बहुत भारी शकुन के शीनू हो भाई।
4: रामू ये शुभ समाचार इसलिए आया कि सुबह से मेरी दाई आंख फड़क रही थी।
0: अच्छा जी, तो तुम सदा अपनी ही हांकते रहोगे। आखिर भाई साहब ने ठीक ही कहा है, तुम ठहरे जो शकुन के शीनू।
7: शकुन का शीनू हवा महल के अंतर्गत अभी आपने ये नाटिका सुनी। मूल कन्नड़ लेखक बी आर गुडगुडी, हिंदी रूपांतरकार एस ए हुनगुंड, ध्वनि संयोजक मनोहर सावे, प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम दार भेकर।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। ये है फिल्म धड़कन का दो गाना, स्वर उदित नारायण और अर्लका याग्निक के, गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

ये स्वर थे अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों के। फिल्म का नाम था धड़कन। गीतकार थे समीर और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आवाजें अलका याग्निक और अभिजीत की, फिल्म का नाम जुदाई।

0: किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा। करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
1: चित्रलोक कार्यक्रम में अब लेते हैं एक अंतराल।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था। युगल स्वर रेमो फर्नांडिस और जसपिंदर नरूला के गीत को समीर ने लिखा है और धुन बनाई है जतिन ललित ने।

0: प्यार तो होना ही था, गीता फिल्म का नाम, जिसका दो गाना अभी आप सुन रहे थे, रेमो फर्नांडिस और जसपिंदर नरूला का गाया हुआ। बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा,
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से, मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

और अब सुनिए जतिन ललित का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, आशा भोसले और अभिजीत की आवाजी फिल्म का नाम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

चित्रलोक कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोंसले, आदित्य नारायण और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है रंगीला। इस गीत को महबूब ने लिखा और धुन बनाई ए आर रहमान।

इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है। ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा किया। और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से कहा है कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने, आवाजाही और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा करने और नाविकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का पर्याय है।
1: हम रोड्स, रेलवे, पोर्ट और एयरपोर्ट्स का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। साथ ही शिप बिल्डिंग, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, क्रिटिकल मिनरल्स और बायोटेक जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में नई क्षमताएं तैयार कर रहे हैं। इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड, 2 लाख के अधिक स्टार्टअप और 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ भारत आज ग्लोबल सॉल्यूशंस का हब बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का दृढ़ समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो। और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडप में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। भारत की अध्यक्षता में सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। सम्मेलन का शुभारंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, आर्थिक चुनौतियाँ, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़े हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसी सहभागिता आवश्यक है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील हो। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का प्रयास सदस्य देशों के बीच सहमति कायम करना और साथ ही मौजूदा व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता को मजबूत करना है। भारत का लक्ष्य ब्रिक्स को एक अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए एक रचनात्मक शक्ति के रूप में सुदृढ़ करना है। सुपर्णा के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। 2 दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण कल रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक दिल्ली के मुख्य रास्तों पर यातायात परिवर्तित और नियंत्रित किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू करेगी। अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। भाजपा ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
4: आज IMF ने अपनी रिपोर्ट में 7.8% ग्रोथ रेट को सही पाया है। IMF ने भारत की इकोनॉमी के रिजिलियंस की तारीफ की है। तो कांग्रेस के नेताओं को यह बताना जरूरी है कि जब आप सरकार में थे तो ब्रिक्स के मामले में भारत की आपने क्या स्थिति बना दी थी।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जन विश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज बूथ स्तरीय अधिकारियों को मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग का जीवंत प्रतिबिंब बताया। गुजरात के अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया, संविधान, चुनावी कानूनों और आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही संचालित होती है। भाजपा की पंजाब इकाई भाजपा दा नारा नशा मुकाना सारा के नारे के साथ राज्य में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं की शुरुआत करेगी। चार चरणों में होने वाली ये 13 दिन की यात्रा नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का प्रयास करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 18 सितंबर को पठानकोट जिले के माधोपुर से पहली यात्रा को रवाना करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलडबरू मध्यम स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे सऊदी अरब का तेल निर्यात प्रभावित हो सकता है। सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हौसी के कब्जे वाले प्रमुख बंदरगाह शहर मोखा के हवाई अड्डे पर हवाई हमले किए। उधर ईरान सरकार ने सऊदी अरब और हौसी विद्रोहियों के बीच बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। यूरोपीय आयोग ने आज भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर और इसे लागू करने के लिए यूरोपीय परिषद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किया। इस समझौते को अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया जा रहा है। यूरोपीय परिषद की मंजूरी मिलने पर ये भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा। प्रख्यात तमिल वक्ता सोलोमन पापैया का आज तमिलनाडु के मदुरई में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। श्री पापैया अपनी हास्यपूर्ण शैली और विशिष्ट मदुरई तमिल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और HPV संक्रमण और HPV से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। HPV टीकाकरण पहल फरवरी 2026 में शुरू किए गए राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

इस समय रात्रि के ठीक 9 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, इस वक्त कुछ गीत ऐसे आपके लिए हमने चुने हैं जो सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं, कभी किसी की याद बनकर, कभी किसी को याद कर। तो चलिए, इस वक्त कुछ ऐसे ही भावुक नगमों के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं इस कार्यक्रम का ये पहला गीत। फिल्म का नाम है जवानी दीवानी। युगल स्वर किशोर कुमार और आशा भोंसले के, गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

दोस्तों, कभी कभी हमारी तलाश किसी किसी खास पर आकर रुक जाती है, तो इसी खूबसूरत एहसास से गुथा हुआ था ये गीत, दिल को छू लेने वाला नगमा। हमने लिया था फिल्म जवानी दीवानी से, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोंसले की थी, गीतकार आनंद बख्शी थे और संगीतकार थे राहुल देव बर्मन। हाँ, कभी कभी हम किसी के रंग में पूरी तरह रंग जाते हैं। आइए ऐसा ही एक गीत सुने जहां कोई किसी के रंग में रंग गया है। लता मंगेशकर की आवाज है, फिल्म का नाम है इश्क पर जोर नहीं, गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीत सचिन देव बर्मन का है।

ये आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था इश्क पर जोर नहीं। दोस्तों, किसी की यादों की खुशबू हमेशा हमारे दिल के करीब होती है ना? होती है ना? तो चलिए इस गीत के माध्यम से हम उन पत्रों को, उन खतों को ढूंढते हैं जो हमने मोहब्बत के नाम लिखे थे।

0: ग्यावस थी मोहम्मद रफी की फिल्म का नाम था कन्यादान। गीतकार थे नीरज और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: दोस्तों, नजरों ने जब ख्वाबों को रंग देना शुरू किया तो दिल ने भी मोहब्बत की एक नई कहानी लिख दी। हाँ, आइए सुनते हैं यही खूबसूरत एहसास इस गीत में, जिसे हमने लिया है फिल्म ब्लैकमेल से। आवाज लता मंगेशकर की, शब्दकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में फिल्म का नाम है शर्मिली। गीतकार नीरज हैं, संगीतकार सचिन देव बर्मन हैं। आपने ये गीत सुना है ना, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को। जी हाँ, जिंदगी की खूबसूरती भी कुछ ऐसी ही है दोस्तों, पल भर ठहरती है और फिर याद बनकर रह जाती है। चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

दोस्तों, कुछ रिश्ते और कुछ पल ऐसे होते हैं जिनके बारे में इंसान सोचता तो बहुत है, मगर जिंदगी उन्हें ठहरने नहीं देती। हाँ, जैसे अभी वक्त भी तो नहीं ठहर रहा ना। गुलजार साहब के खूबसूरत बोल और किशोर कुमार की आवाज में हम आपको फिल्म किनारा का ये गीत सुनवाने जा रहे हैं, जाने क्या सोचकर नहीं गुजरा। आइए सुनते हैं ये गीत। संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने।

तो दोस्तों, अब इस खूबसूरत सफर को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज के गीतों की मिठास, या यूं कहें कि कसक, बहुत देर तक आपके साथ बनी रहेगी। फिलहाल आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

उनकी जो दिल की उड़ान को आंखों में भरकर जीते हैं, जिन्हें प्यार है अपनी कला से, और जो फिल्मों में अदाकारी नहीं करते बल्कि उन्हें जीते हैं।

आयुष्मान खुराना को राष्ट्रीय पुरस्कार तो अभी मिला है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें जो यात्रा तय करनी पड़ी उसकी बात करना बहुत जरूरी है। चंडीगढ़ में 14 सितंबर 1984 के दिन सुरीली किलकारी गूंजी निशांत खुराना की, और बाद में माता पिता ने उन्हें नया नाम दिया आयुष्मान।

छोटी उम्र से ही आयुष्मान ने अपना हुनर दिखाना शुरू कर दिया था। उन्हें गाना बहुत पसंद था। अपनी गिटार के साथ वो कहीं खो जाया करते और सुनने वाले उनके कायल हो जाते। वो अपने गाने भी खुद ही लिखा करते। ऐसे में कई बार आसपास के लोगों को लगता कि आयुष्मान गायक या गीतकार ही बनेंगे, लेकिन कॉलेज पहुंचते ही उन्हें एक नई राह दिखी। वो जुड़ गए थिएटर से।

उन्होंने कई नाटकों में मुख्य भूमिका निभाई है। धर्मवीर भारती के प्रसिद्ध नाटक अंधायुग के मंचन में उन्होंने अभिमन्यु का किरदार निभाया था। 5 साल थिएटर को देने वाले आयुष्मान चंडीगढ़ के मशहूर थिएटर ग्रुप आगाज और मंचन तंत्र की नींव रखने वालों में से एक माने जाते हैं, लेकिन थिएटर उनकी मंजिल नहीं थी, ये तो बस एक रास्ता था।

साल की उम्र में उन्होंने एक पॉप रियलिटी शो में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने काफी काम किया, जैसे वो एक चर्चित एफएम में आरजे का काम करने लगे। उनका शो मान न मान मैं तेरा आयुष्मान काफी पसंद किया जाता। देखते ही देखते वो एक बहुचर्चित टीवी रियलिटी शो में आ गए और उन्होंने उस शो को जीत भी लिया। इसी चैनल में उन्हें काम मिल गया वीडियो जॉकी का। आयुष्मान आवाज की दुनिया से निकलकर सबके सामने आ चुके थे और उन्हें लोग काफी पसंद करते थे।

एक पहचान तो मिल गई थी और साथ ही मिल गया था कई टीवी शोज को होस्ट करने का काम भी, लेकिन एक सपना था जो अब भी अधूरा था। इस सपने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक रोज यूं ही रोड से जाते हुए आयुष्मान ने देखा किनारे बड़ी सी होर्डिंग में उनके फेवरेट स्टार शाहरुख खान की आने वाली फिल्म ओम शांति ओम का पोस्टर लगा है। यूं ही उनके मन में ख्याल आया कि एक रोज मेरी फिल्म की होर्डिंग भी यही लगेगी। ये खुली आंखों का सपना था और ये सपना सच हुआ जब 2012 में उन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रखा। उनकी पहली फिल्म थी विकी डोनर।

0: ये गीत फिल्म के लिए सिलेक्ट होते ही पहले ही मीटिंग में आयुष्मान ने विकी डोनर फिल्म से पहली बार प्रोड्यूसर बने जॉन अब्राहम को गाकर सुनाया और जॉन ने इस गाने को फिल्म में आयुष्मान की आवाज में ही रखने का फैसला किया। इस फिल्म और गीत दोनों के लिए ही आयुष्मान को बहुचर्चित फिल्म पुरस्कार मिला। विकी डोनर लीक से हटकर फिल्म थी जिसमें एक सामाजिक मुद्दे को सरल तरीके से लोगों के सामने रखने की कोशिश की गई थी। इसी तरह चुप्पी रखे जाने वाले एक और विषय पर आयुष्मान ने बेहतरीन किरदार निभाया। ये फिल्म थी शुभ मंगल सावधान।
1: हनी हनी कर सया मून पे पहुंच गए जनवरी

आयुष्मान की फिल्मों की संख्या दहाई में है, लेकिन उनके किरदार शतक जमाते हैं। ऐसे चुन चुन के किरदार उन्होंने लिए हैं कि अलग ही रंग नजर आता है, उनका थिएटर का अनुभव नजर आता है एक थिएटर कलाकार की भूमिका में। ये फिल्म थी नौटंकी साला।

किताब को किसी और के नाम से छपवाने वाले और उस किताब के लेखक से प्यार करती बिट्टी को ये बात बताने को बेताब चिराग दुबे के किरदार में जान भर देते हैं आयुष्मान फिल्म बरेली की बर्फी में।

लेकिन सबसे ज्यादा लोगों के दिलों को जीता उनके किरदार प्रेम प्रकाश तिवारी ने, जो अरेंज मैरिज से पत्नी बनी संध्या को स्वीकारने में बहुत देर लगाते हैं। ये कहानी तो मानो हर आम इंसान को छू गई। आयुष्मान का ये किरदार जिस फिल्म में नजर आया वो फिल्म थी दम लगा के हईशा।

आयुष्मान खुराना की बात हो तो उनके बिल्कुल अलग किरदारों की बात न की जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपनी तीसरी ही फिल्म में उन्होंने किरदार निभाया शिवकर बापूजी तलपड़े का, जो भारत के एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भारत का पहला विमान बनाया था, लेकिन वो गुमनाम ही रहे। इस किरदार को निभाने के लिए आयुष्मान ने अपना वजन गिराया और मराठी भी सीखी। ये फिल्म थी हवाई ज्यादा।

दिवस के दिन जन्मे आयुष्मान को हिंदी से बड़ा लगाव है और उसका कारण है उनकी माँ जो हिंदी में एमए है। बचपन से ही आयुष्मान को भाषा से लगाव रहा। वो न सिर्फ अच्छा साहित्य पढ़ा करते बल्कि वो बहुत ही छोटी उम्र से ही लेखन की ओर भी मुड़ गए थे। यही नहीं, उनका एक ब्लॉग भी है जिसे वो हिंदी में लिखते हैं और आज भी जब भी उन्हें समय मिलता है कोई ना कोई कविता, शेर वगैरह उसमें जोड़ते रहते हैं। भाषा

लगाव का आलम तो ये है कि आर्टिकल 15 के शूट के दौरान जब वो कुछ समय के लिए लखनऊ में थे तो उन्होंने उर्दू सीखना शुरू कर दिया था। दरअसल उन्हें लगता है कि इससे उनके लेखन में उन्हें काफी मदद मिल सकती है। जहां बात हो रही है आयुष्मान के शौक की, तो यहां कुछ बातें बताने से हम खुद को रोक ही नहीं पा रहे। जैसा कि आपको पता ही है कि आयुष्मान को गाने का शौक है, लेकिन कई बार उन्होंने गाने के जरिए अपनी छुट्टियों का खर्च भी निकाला है। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कॉलेज के दिनों में वो दिल्ली से मुंबई के लिए चलने वाली पश्चिम एक्सप्रेस में अपने दोस्तों के साथ चढ़ जाया करते और हर कोच में जाकर गाने गाकर परफॉर्म करते। खुश होकर यात्री उन्हें पैसे दे देते और इतने पैसे इकट्ठा हो जाते कि वो सभी दोस्त मिलकर गोवा की ट्रिप के खर्चे निकाल लेते।

जहाँ गाने थिएटर जैसी चीजों में आयुष्मान का मन लगता था, वहीं वो पढ़ाई में भी काफी अच्छे थे। आयुष्मान ने इंग्लिश लिटरेचर में बैचलर डिग्री और मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की हुई है। पढ़ाई के कारण ही तो उन्हें अपनी पत्नी ताहिरा मिली। जी हाँ, ताहिरा आयुष्मान के बचपन के साथी रही हैं। दोनों फिजिक्स के ट्यूशन में साथ पढ़ा करते थे। यहाँ दोस्ती हुई, फिर प्यार और शादी। ताहिरा आयुष्मान के करियर के उतार चढ़ाव में उनके साथी रही और हमेशा उन्हें आगे बढ़ने को प्रोत्साहित

आयुष्मान की फिल्म आर्टिकल 15 उनकी एक बहुचर्चित फिल्म रही। इस फिल्म में उन्होंने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई और इस किरदार के लिए उन्हें काफी सराहना मिली। ये फिल्म सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखती है। इस किरदार के जरिए उन्हें गंभीर भूमिका निभाने में माहिर मान लिया गया है। यूं तो हर भूमिका में आयुष्मान ऐसे ढल जाते हैं कि लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं, लेकिन 2018 में आई एक ऐसी फिल्म जिसने लोगों के मन को जीत लिया। आयुष्मान ने इस फिल्म के लिए पियानो बजाना सीखा और ब्लाइंड पियानिस्ट से मुलाकातें भी की। उनकी इस तैयारी ने उनके किरदार में जान फूंक दी। उन्होंने इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर लिया। जी हाँ, बात हो रही है फिल्म अंधाधुन की।

आयुष्मान इसी तरह अलग अलग किरदारों में ढलकर सभी के दिलों में अपनी जगह बनाते रहें, इस कामना के साथ विविध भारती परिवार की ओर से हम उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था युवा अभिनेता आयुष्मान खुराना पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, संपादन आकांक्षा सिंह का और विविध भारती की ओर से कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। दुनिया के इस आपाधापी में न जाने कितने रिश्ते, कितनी बातें पीछे छूटती जाती हैं। ये जिंदगी अपनी रफ्तार में खींचती हमें उन सभी से दूर ले जाती है जो कभी हमारे दिल के करीब हुआ करते थे। न जाने इस जिंदगी के मन में क्या है, क्यों वो हमें अपनों के करीब नहीं रहने देती। काश जिंदगी के किसी मोड़ पर उससे फिर मुलाकात हो जिसने कहा था छोटी सी

यूं ही चलते चलते कदम उनकी राहों में आ गए, न चाहते हुए भी हम निगाहों में आ गए। कहने को लाख बातें थी, आकर लब पर रुकी। हम कुछ न कह सके, बस उसकी पनाहों में आ गए। प्यार मोहब्बत के किस्से सुनाती रही ये दुनिया, हम इस किस्से को अपना बनाकर ही आ गए।

संजो कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले

मिलने जुलने के सिलसिले बढ़ते जो जाएंगे, हम न रहेंगे, हम आप ही हो जाएंगे। ना मोहब्बत का जब भी लबों पे लाएंगे, हम न इकरार करेंगे, सीधे मुकर ही जाएंगे। क्या फायदा दिल की बातों को होठों से कहने का, हम मुंह को सिलेंगे, पलकें झुकाएंगे। इस पर भी यकीन हमको इस बात का तो है, हम कुछ न कहें फिर भी आप जान जाएंगे।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। एहसासे मोहब्बत का इतना सा फसाना है, धड़कते दिल को उनकी निगाहों से बचाना है। कहना दें वो बात वही जो मेरे दिल में भी महफूज ऐसे रखी है जैसे कि खजाना है। आते ही रहते हैं हमने, कब इनकार किया है, मिलना तो तुमको था, हमने छोड़ा बहाना है।

तुझे देखकर खिली दिल की कलियां, महकने लगी हैं मोहब्बत की गलियां। उड़ती हूँ आसमान में मन की छलांग है, पंख तितलियों से उधार लिए भंवरों से शान है। खुशी से छानती फिरती हूँ दुनिया में, मोहब्बत का पैगाम सुनाती हूँ। अपने ही होठों से अब अपने दिल का राज बताती हूँ।

कह तो दिया था उस दिन तुम्हें, अब फिर से आज क्यों? देखो जी, अपनी मोहब्बत पर हमको है नाज़ियों, करते थे, करते हैं और करते ही रहेंगे, पर दिल की ये बात अब न होठों से कहेंगे। तुम लाख मना लो चाहे, मिन्नतें करो, जो कह दिया सो कह दिया, अब फिर ना।

अब जाएंगे कितनी दूर भाई।

0: तलत अजीज की आवाज में गजल अभी आप सुन रहे थे, इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
1: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे से ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

दीवाना एल्बम से ये गीत सोनू निगम की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। फैज अनवर ने इसे लिखा, साजिद वाजिद का संगीत। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग विविध भारती से।